मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 29वीं तिथि तदनुसार 19 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव व FM पर आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए इस प्रातःकालीन पावन बेला में करते हैं उस परम पिता परमेश्वर की वंदना।

जो पानी से दिए जला देते हैं, जो कड़वे नीम को मीठा बना देते हैं, साईं अपने भक्तों की किस्मत बना देते हैं।

राम राम जो जपे, मिटे पाप सब कोए, भवसागर से पार हो जो सुमिरन प्रभु का होए।

श्वेत वस्त्र धारे माँ, कर्मे वीणा राजती, ज्ञान का प्रकाश दे माता जगत में पूजती, बुद्धि और विवेक दे शारदे वरदान दे, अज्ञान का अंधकार हर ज्ञान का तू दान दे।

0: ये था भक्ति रस कार्यक्रम वंदना। आज के कलाकार थे मनहर उदास, अनूप जलोटा, जफर हुसैन, मनमोहन सिंह और जगजीत सिंह। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। चिंतन का विषय है सही सोच।
1: कुछ बातें सोचने विचारने में बहुत अच्छी लगती हैं, किंतु यथार्थ में हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। कई बार इसके बारे में सोचने पर मन में निराशा भी पनपती है, जिसका कारण है हमारा अत्यधिक अपेक्षाएं रखना और मन में इच्छाएं पालना। हम बहुत कुछ चाहते हैं परंतु बहुत कम पाते हैं। हमारी अभिलाषा अधूरी रहती है तो चाहत मन में दबकर रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद हम इस पर कभी मनन नहीं करते, अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं देते, तभी तो हमें कई मामलों में मात खानी पड़ती है। सबसे पहले अपनी सुलभ साधनों एवं सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ें। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, तेते पैर पसारिए, जेती लाबी सोड़, यानी वही कार्य करें जो आपके सामर्थ्य में है। फालतू के जोड़ तोड़ में पड़े रहने से मानसिक शांति ही भंग होगी और कुछ हासिल होने वाला नहीं। सोच सोच कर रक्तचाप बढ़ाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, बल्कि करने पर बल दें। सिर्फ सोचना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और न ही भावुकता किसी समस्या का अंत है। जॉन कॉलिंस ने ठीक ही कहा था, जीवन में आधी गलतियां तो केवल इसलिए होती हैं कि जहां हमें विचार से काम लेना चाहिए वहां हम भावुक हो जाते हैं, और जहां भावुकता की आवश्यकता है वहां हम विचारों को अपनाते हैं। कोरी भावुकता केवल उत्तेजना के सिवाय कुछ और नहीं है, और उत्तेजित होना मूर्खता की निशानी है। उत्तेजना अभीष्ट की प्राप्ति में बाधा है, स्पष्ट है। भावुकता से उत्तेजना आती है और उत्तेजना से मानसिक व्याधियों का विस्तार होता है। कहना उचित ही होगा कि भावुकता को आप बिल्कुल ही त्याग दें, आप भावुकताहीन हो जाएं और वैचारिकता ही अपनाएं। बिना भावुकता के आप संवेदना रहित हो जाएंगे, संवेदना शून्य मन कठोर बन जाता है। आप कठोर हृदय बन जाएंगे, तब आपको किसी की पीड़ा तड़पा न पाएगी और प्राकृतिक दृश्य रिझा न पाएंगे। आपको कहीं मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी, तब आप एक निर्दयी आदमी कहलाएंगे। इसलिए भावुकता और विचारों में सामंजस्य ही उचित सोच है, एक परिपक्व मानसिकता का परिचायक यही होगा। बिना परिश्रम के कोरी सोच निरर्थक है, केवल सोचना आलसी होने का प्रतीक है, जबकि ध्येय प्राप्ति के लिए प्रयत्न के साथ चिंतन करना आगे बढ़ने का द्योतक है। समय पर सही सोच का जीवन में बहुत महत्व है। विपरीत परिस्थितियों में हमारी सोच जवाब दे देती है, इसलिए हम सही निर्णय नहीं ले पाते, अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाते, अक्सर हम धोखा खा जाते हैं, कोई निर्णय गलत कर बैठते हैं, कुछ ऐसा ही कर जाते हैं जिससे अहित ही होता है, हित नहीं। गुस्से या भावुकता में हम कहीं अपमानित भी हो सकते हैं, हमें मानसिक एवं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए जो भी करें उचित ढंग से सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। जो लोग सिर्फ सोचते हैं और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनके लिए अजस्र धारा में कहा गया है कि यदि भाग्य से ही सब कुछ होने वाला है तो फिर मनुष्य को चेष्टा से क्या, फिर तो श्रवण, दान, उठना, बैठना, बोलना इत्यादि सभी क्रियाएं भाग्य से ही कर लेना चाहिए। इसलिए भाग्य विश्लेषण करने वाले ज्योतिषी भी कर्म की प्रधानता पर ही जोर देते हैं, इसलिए कर्म से ही भाग्य को संबल मिलता है। मनुष्य जीवन के भविष्य के भी दो रूप होते हैं, एक तो निर्माण का और दूसरा विनाश का। अपने अंतःकरण में उपजे विचारों से हम सार्थक जीवन भी जी सकते हैं और इन्हीं विचारों से हम निरर्थक जीवन का भी अनुसरण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यह तय कर लेना चाहिए कि विचार प्रधान है। सब मानवीय क्रियाओं के मूल में विचारों की अहम भूमिका होती है। विचार मूल है, विचार बीज है जिसे तने रूपी जीवन का विकास होता है। इसलिए विचारों का शुद्ध होना अपेक्षित है। आगे बढ़ने के लिए सही सोच को विकसित करना ही होगा, क्योंकि उच्च एवं सबल विचार ही सफलता की सीढ़ी है और सफलता जीवन का ध्येय है।
0: सही सोच।

0: अभी आपने सुना इस विषय पर आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत मोतियाबिंद कारण व उपचार, इस विषय पर एक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरिराज केन।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम एक विशेष विषय पर जानकारी देना चाह रहे हैं जो कि आंखों से संबंधित है। हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर गिरिजेश केन जो कि मुरादाबाद में आई एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद की समस्या क्या है और किस उम्र से सामान्य रूप से इसकी शुरुआत?
2: मोतियाबिंद में एक जो हमारा लेंस होता है आंख में, हाँ, जो कि सामान्य रूप से ट्रांसपेरेंट होता है कांच की तरह, वो लेंस धुंधला हो जाता है, उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। अमूमन तौर पर मोतियाबिंद की उम्र जो है वो 55 से 60 साल है, लेकिन आजकल हमारी फूडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, हमको डायबिटीज़ है, हमको ब्लड प्रेशर है, हम ओवरवेटेड हैं, थायराइड है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, 50-55 साल की उम्र में भी आ जाता है। ये एक सामान्य चीज़ है जो एजिंग चेंज की वजह से भी आता है, बीमारी की वजह से भी आता है, और जो हमारा ट्रांसपेरेंट कांच की तरह लेंस है वो धुंधला हो जाता है
1: जी।
2: उससे हमें कम दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता, कभी पास का साफ नहीं दिखता, तेज़ रोशनी में परेशानी होती है, पास का देखने में दिक्कत होती है, रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, इस तरह की ये सामान्य समस्याएं हैं। और इसका इलाज बहुत अच्छा है। अब आज के टाइम में जो पहले कहते थे एक महीने तक परहेज करना है, हम एक महीने तक नमाज नहीं पढ़ सकते थे, एक पानी नहीं लगा सकते आँख से, अब ऐसा नहीं है। नई तकनीक से आप तीसरे दिन सारा कुछ काम कर सकते हैं आप अपना नॉर्मली
1: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद की शुरुआत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पेशेंट होते हैं वो सामान्य रूप से अपना काम करना जारी रखते हैं और इसमें डिले करते हैं कि चलिए अभी कोई बात नहीं है, अभी तो साफ दिखाई पड़ रहा है, काम चल रहा है। इसका असर क्या पड़ता है उस मोतियाबिंद पे?
2: मोतियाबिंद को यदि हम समय से ऑपरेशन नहीं कराते तो वो आगे चल के काला मोतिया बन जाता है, जिससे कि आँख की रोशनी चली जाती है। पहले ज़माने में, आज से तकरीबन 30 साल पहले, हम लोग थोड़ा वेट करते थे कि मोतियाबिंद पक जाए, हाँ, फिर ऑपरेशन करते थे। तब हमारे पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, उतनी अच्छी दवाइयां नहीं थी। आप ऐसे समझिए कि आज हम 30 साल पहले हम लोगों को चिट्ठी लिखा करते थे, आज हम फेस टू फेस व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं। तो ऐसे ही तरक्की आँख के ऑपरेशन में हुई है। तो अब जब आपको मोतियाबिंद हो जाता है, जब आपको आँख में परेशानी होती है, आप तुरंत ऑपरेशन कराइए, पकने का और उस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए। कोई भी शरीर की बीमारी है, जितने दिन आप उसे शरीर में रखे रहेंगे उतना ही वो नुकसान करेगी
1: जी। आपने ग्लूकोमा का जिक्र किया है जिसे काला मोतिया भी कहते हैं। ग्लूकोमा क्या है और किन परिस्थितियों में ये उत्पन्न होता है और इसमें क्या खास सावधानी बरतनी है?
2: ग्लूकोमा एक इस तरह की बीमारी है जिसमें आँख का प्रेशर जो है हमारा वो बढ़ जाता है
1: जी।
2: आँख का प्रेशर बढ़ने के कारण आँख की जो नस है, जिस नस से जो हमारी आँख में सिग्नल जाते हैं दिमाग में और जो हमें दिखता है
1: जी,
2: वो नस दबने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी रोशनी कम होती जाती है। इस काले मोतिया कह लें, ग्लॉकोमा कह लें, या कुछ लोग संवल वाई कहते हैं इसे, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम होते हैं इसके, इसमें जो आपकी रोशनी चली गई है वो वापस नहीं आती। तो यदि आपको काले मोतिया की शिकायत है या उसकी बीमारी है आपको या किसी ने आपको बताया, तो उसका इलाज करिए और इलाज से वो कंट्रोल बना रहेगा।
1: अच्छा, इलाज इसका डॉक्टर साहब दवाओं का है या इसका ऑपरेशन इसका इलाज
2: है? ये डिपेंड करता है कि आपकी आंख का प्रेशर कितना है। काले मोतिया का इलाज दवाइयों से भी होता है, लेजर से भी होता है और ऑपरेशन से भी होता है। आपका यदि प्रेशर छोटी चीज से कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, और यदि आप प्रेशर कंट्रोल नहीं है, सारी दवाइयों से कंट्रोल नहीं, तो फिर हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और चलते चलते हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि लोग अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकें, इसके लिए कुछ टिप्स अगर बता सकें।
2: आंखें ही नहीं, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, इसी तरह आंखों के कुछ व्यायाम होते हैं, हमें आंखों को गोल गोल घुमाना चाहिए, इस तरफ उस तरफ देखना चाहिए
1: जी।
2: प्लस आंखों को पलकें झपकाते रहना चाहिए, 20-20 मिनट में, हर 20 मिनट में 20 बार पलक झपकाइए आप। प्लस आपको हरे पत्तेदार सब्जी, विटामिन की दार सब्जियां, पीले फल जिसमें विटामिन ए होती है, ये हमें खाना चाहिए, और अपनी आंखों को स्वस्थ रखें ठंडे पानी से 2-3 बार धोएं।
1: डॉक्टर गिरिजेश केन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से हम सभी लोग अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपनी आंखों को हम सुंदर और स्वस्थ रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने के लिए।
0: अभी आपने सुनी कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत मोतियाबिंद कारण व उपचार, इस विषय पर डॉक्टर गिरजेश केन की ये जानकारी। बात कर रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, ये अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर यानी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 302। सवेरे 7 समय रहेगा लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। आज आपको सुनवाए जाएंगे जगदीश फुलारी के कुछ लोकगीत। साथ ही सवेरे 7:31 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें आज होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष। 8:45 पर सुनिएगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

सवेरे 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा उर्दू प्रोग्राम। 9:50 पर आप सुन सकेंगे उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मुन्ने खां का झप ताल में निबद्ध तबला वादन। सारंगी पर साथ देंगे जाकिर खां। सवेरे 10:00 होगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

0: दोपहर 1:15 पर होगा कार्यक्रम परिवार जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे जीवन में पर्यटन, इस विषय पर एक चर्चा। साथ ही आपको सुनवाई जाएगी आधुनिक जीवन शैली में इस विषय पर पारिवारिक संघर्ष को सुलझाना, इस विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार होंगी संगीता चौरसिया। साथ ही आपको सुनवाया जाएगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और दी जाएंगी दांतों की सुरक्षा पर हेल्थ टिप्स। आपके मनोरंजन के लिए होगा एक लोकगीत। समय याद रखिएगा दोपहर 1:15 पर। 2:03 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आपको सुनवाए जाएंगे 70 के दशक के फिल्मी गीत। शाम 5:15 पर युवा साथी सुन सकेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश की पवित्र परंपरा।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।
1: एपिसोड नंबर 302

वानर सभी दिशाओं से ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारी शिलाखंड तथा वृक्ष खेल ही खेल में उखाड़ लाते हैं। नल और नील उन्हें गढ़कर सेतु का निर्माण करते हैं। ये सुंदर रचना देख श्री राम अति प्रसन्न हैं। उस स्थल को अत्यंत रमणीय और उपयुक्त देखकर वे वहां शिव की स्थापना करने का संकल्प करते हैं।

Ô, Kelly Hani Tasha, ô, Rangila Barata, ô, Hitologa.

0: ये था कार्यक्रम लोक रंग। इसमें अभी आपने सुने जगदीश फुलारी के कुछ लोकगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: जिस देश पे हमने जन्म लिया,
1: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
0: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
1: उस धरती का ऋण है हम पर।
0: हमारा कर्तव्य है हम अपने देश की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।

0: Akashwani at 90.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स पर सवेरे के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
5: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
7: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
8: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर है आपका रेडियो साथी अंकुर राजपूत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह का वक्त यानी नई उम्मीदें, नए सपने और नई प्लानिंग्स। सुबह होते ही जैसे सब कुछ बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। सुबह होते ही सब अपनी अपनी मंजिलों की ओर रवाना होने लगते हैं, क्योंकि मंजिल का पाना ही, परिश्रम करना ही, यही एक जिंदगी का रवैया है। क्योंकि जिंदगी कभी आसान नहीं होती दोस्तों। हम जितना भी प्लान बना लें, जितना भी रेडी हो जाएं, ये जिंदगी हमेशा ऐसी मुश्किल चुनौतियों का सामना करवाती है जो हमें कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उस वक्त हमारे पास केवल दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम टूट जाएं और या फिर हम मजबूत बन जाएं। जिंदगी बहुत ज़्यादा टफ है, पर हम उससे भी ज़्यादा टफ बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मजबूत बनने का मतलब ये नहीं होता कि हमें दर्द फील नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि हम दर्द के बाद भी खड़े रह सकते हैं। हम गिरते हैं पर रुकते नहीं। और साथियों, एक बात और, सख्त इंसान वो नहीं होता जो रोता नहीं है, सख्त इंसान वो होता है जो गिरकर भी उठता है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई पल आए तो घबराइएगा मत और रुकिएगा मत।

श्रोताओं, ये तो बिल्कुल सच है कि मुश्किल राहों पर चलने के बाद ही हमें बहार भरे दिन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब तक हम कठिन दिनों से नहीं गुजरते, हमें अच्छे दिनों के बारे में मालूम ही नहीं चलेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, हमें कहते हुए भी बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि ये जो माइक्रोफोन और ट्रांजिस्टर का जो रेडियो का जो ये सफ़र है वो 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बातचीत, जो कि हमने की है रामपुर मिलक तहसील के एक इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता रहे और पूर्व सलाहकार हिंदी अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी से। आइए आपको सुनवाते हैं।

0: चंद्रप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपको हमारा नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: आकाशवाणी लोक सेवा प्रसारक के रूप में 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, आपके क्या विचार हैं इस पर?
1: बहुत प्रसन्नता है। आकाशवाणी जो है जन संचार का शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम है। आकाशवाणी के 90 वर्ष की विराट और सफल यात्रा की सभी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
0: हम चाहेंगे कि एक बार आप अपनी मधुरवाणी में एक बार हमारे श्रोताओं को अपना परिचय अवश्य दें।
1: मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार और पूर्व जो है सलाहकार हिंदी अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार रहा हूं।
0: तो आकाशवाणी ने आम जनमानस के जीवन में किस तरह की भूमिका निभाई है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी की जो है बहुत ही महान

संचार माध्यम के रूप में अपनाया। जहां तक जो है आकाशवाणी ने जो है जनता के लिए क्या किया, तो आकाशवाणी तीन प्रकार के कार्यक्रम जो है प्रसारित करती है, संगीत, समाचार और उच्चारित शब्द। संगीत जो होता है वो मनोरंजन का माध्यम है, मनोरंजन समय का सही उपयोग है और इससे व्यक्ति का तनाव, थकान और अवसाद दूर होता है, उसका मन शांत होता है और वह आनंद का अनुभव करता है। समाचार के माध्यम से जो है हम देश विदेश की घटनाओं की, क्षेत्र की घटनाओं की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। उच्चारित शब्द जो होते हैं वो ज्ञान की जो विविध शाखाएं हैं उनकी जो है जो संगठित और सुसंबद्ध सामग्री है उसको जो है आकाशवाणी प्रसारित

0: मानव अधिकार पर पहली मेरी वार्ता जो है प्रसारित हुई, तब से सतत जो है मैं आकाशवाणी जो है से जुड़ा हुआ हूँ और 150 से अधिक जो है मेरी वार्ताएं जो है हिंदी अनुवाद और कृषि जगत कार्यक्रम में जो है प्रसारित हो चुकी है।
1: बहुत सुंदर सर, आप हिंदी साहित्य से जुड़े रहे हैं तो एक सवाल मन में उठ रहा है कि आकाशवाणी का हिंदी भाषा के संवर्धन में क्या योगदान रहा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए।
0: आकाशवाणी का हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार देश और विदेश में, पूरे देश में और विदेशों में जो है हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है, उनके संवर्धन में जो है बहुत बड़ा योगदान जो है आकाशवाणी का है, क्योंकि अनेक जो है सुप्रसिद्ध और कालजयी रचनाएं जो हैं वो आकाशवाणी की प्रेरणा से ही लिखी गई। मुझे याद आता है डॉक्टर राजकुमार वर्मा का प्रसिद्ध नाटक कौमदी महोत्सव आकाशवाणी के ही लिए लिखा गया और आकाशवाणी को प्रसारित हुआ। इसके साथ साथ धर्मवीर भारती जो बहुत ही हमारे जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कि प्रसिद्ध गीत नाटिका अंधा युग की प्रथम प्रस्तुति भी रेडियो पर ही हुई। मोहन राकेश की बहुमंचित नाट्य रचना आषाढ़ का एक दिन भी जो है वो रेडियो से जो है रेडियो के लिए ही जो है लिखी गई और रेडियो पर प्रसारित हुई। इस प्रकार से अनेक जो है साहित्यकार जो हैं ने जो है आकाशवाणी के माध्यम से साहित्य सृजन ही नहीं किया, साहित्य संवर्धन में उसका उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस कड़ी में मैं भी कहना चाहूंगा कि मैंने भी उन

0: मोनिका युक्ता।
1: जी, आपने इन सभी विषयों पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी, क्योंकि आप भी आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुनी ये बातचीत जो कि हमने की थी रामपुर में मिलक तहसील के एक इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता रहे और पूर्व सलाहकार हिंदी अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपका नाम था श्री चंद्र प्रकाश शर्मा। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है एक गीत का, तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं आइए आप जानते हैं आज यानी 19 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सन 1999 में भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त मैक्सिको में बालकान डिफ्यूजो नामक ज्वालामुखी सक्रिय रहा। सन 2000 में फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार को 7 नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा तख्ता पलट किया गया। 2001 में इसराइल का फिलिस्तीनी मुख्यालयों पर हवाई हमला हुआ जिसमें कि काफ़ी सारे लोग घायल हुए थे। 2002 में पूर्वी तिमोर 4 सदियों की दास्ता के बाद नई सहस्त्राब्दी के पहले नए राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा। जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह भारत की यात्रा पर नई दिल्ली आए थे सन 2003 में। 2006 को आज ही के दिन भारतीय मूल के मलेशियाई उद्योगपति टी रविंद्र चंद्रन ने माउंट

की फिल्म मोनेर मानुस को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा फिल्म दबंग को सर्वाधिक मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार दिया गया। मलयालम फिल्म एदे माइंते माकान अबू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, जबकि अरुणिमा शर्मा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। मलयालम फिल्म एदे माइंते माकान अबू के लिए मलयालम अभिनेता सलीम कुमार और तमिल अभिनेता धनुष संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए। मिताली जगताप और सरन्ना पी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। साथ ही श्रोताओं, आज किन किन लोगों का जन्म हुआ ये भी जानते हैं। 1999 में दीपक पुनिया, जो कि भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं जो 86 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, उनका जन्म हुआ। 1947 में टीसी योहानन, जो कि लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका जन्म हुआ। 1934 में जन्मे पी लीला, जो कि भारतीय तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थीं। 1913 में नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे। 1934 में रस्किन बॉन्ड, जो कि अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक हैं, आपका भी जन्म हुआ। 1824 में नाना साहब सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में शिल्पकार थे। 1881 में कमाल अतातुर्क, जो कि आधुनिक तुर्की के निर्माता थे। 1938 में जन्मे गिरीश कर्नाड, कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता रहे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज जन्मे व्यक्तियों की। आज किन किन लोगों का निधन हुआ। 1997 में सोमभू मित्रा, जो कि फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार रहे। 1996 में जानकी रामचंद्रन, जो कि प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहीं। 1904 में जमशेद जी टाटा, जो कि टाटा समूह के संस्थापक थे। 1979 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी के शीर्ष साहित्यकार रहे। 2004 में ई के नायनार, जो कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी के राजनीतिज्ञ रहे और केरल के मुख्यमंत्री भी रहे। सन 2008 में निधन हुआ विजय तेंदुलकर जी का, जो कि भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी थे। श्रोताओं, ये तो बात रही आज की, यानी कि 19 मई की, और अब समय हो चला है एक फिल्मी गीत का, आपके मनोरंजन का। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। 8 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्व

0: बहुप्रांशी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
1: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
3: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
4: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
1: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आजकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश।

0: जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 tak humne 500 gigawatt clean energy aur 5 million ton green hydrogen produce karne ka target rakha hai. Clean energy investment नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
2: द समिट वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई सीईओज ऑफ ओवर 50 कंपनीज एंड मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द नॉर्वेजियन एंड इंडियन बिजनेस एंड रिसर्च कम्युनिटीज। Early in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Ministry of External Affairs C.B. George said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, as both the countries are leading maritime nations.
4: Recognizing the ambitious maritime Amrit Kaal Vision 2047 of India, both leaders have called for scaling up the blue economy partnership, including in shipbuilding, green shipping, ship recycling, developing port infrastructure, training of seafarers, fisheries, aquaculture and greening of ports.
2: Prime Minister Narendra Modi will attend the 3rd India-Nordic Summit today in Oslo, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy.

0: leadership of Prime Minister Narendra Modi will compensate for the large-scale economic, social and cultural losses suffered by the people of Bastar due to nationalism over the past six decades within the next 5 years. He said that out of nearly 200 security camps set up in Bastar division, around 70 camps will be converted into public service centers over the next 1.5 years and developed as hubs for tribal welfare. Mr. Shah said these service centers will provide facilities related to banking, Aadhaar, ration cards, skill training and all welfare schemes of the central and state government. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: Government has debunked a claim circulating online alleging that the government is going to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. The PIB has advised citizens to stay away from fake claims and always refer to official sources only for verified information. U.S. President Donald Trump has said that he is holding off a planned military strike on Iran after requests from the leadership of Qatar, Saudi Arabia and the UAE, as serious negotiations are now underway. In a post on Truth Social, the U.S. President said he had been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud and UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan to postpone the strike which was scheduled for today. President Trump said a deal acceptable to the United States and countries across West Asia could soon be reached. He added that the proposed agreement would ensure that Iran does not possess nuclear weapons. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs, with Karthik Sharma being the highest scorer with 44 runs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs, riding on Ishan Kishan's 70 and Hendrik Claassen's 47 runs. Ishan Kishan was declared the player of the match. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department IMD has forecast severe heat wave conditions today at places over Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Hot and humid weather conditions are expected to persist during the day over coastal Andhra Pradesh and Odisha. Rajasthan, Vidarbha and West Uttar Pradesh are expected to experience hot night conditions tonight. The weather agency also forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Thunderstorms and lightning are likely today over Bihar, Gangetic, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Telangana, Jammu and Kashmir and some parts of Northeast India. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
2: Thank you, Abhishek. Modi, the first Indian Prime Minister to visit Norway in more than 4 decades, is covered prominently by the dailies. Prime Minister urges peace in Ukraine, West Asia leads the pioneer. While the statesman leads with Prime Minister Modi, pushes tech, green ties in Norway. The Indian Express carries the picture of PM Modi receiving Norway's highest honour. The caption under the picture reads, PM Narendra Modi with King Harald V as he is conferred the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit in Oslo on Monday. The Economic Times in its editorial, Bringing It All Back Home, writes that the repatriation of 1,000-year-old Chola copper plates from Leiden University during Narendra Modi's visit to the Netherlands last weekend is a welcome assertion of India's proprietorial sovereignty. Excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy. The return of Chola plates mirrors that of Piprava, Buddha relic gems and restitution of 657 stolen antiquities from the United States. UPSC to release prelims provisional answers, reports Hindustan Times about the UPSC to release the answer key soon after prelims exams to enhance transparency and uphold the highest standards of to conduct the examination. Aaron Rye runs over away with PGA Championship, first English-born winner in more than a century, states the pioneer. And finally, India's bullet train dream inches closer to reality. The Financial Express says project is being executed with assistance from the government of Japan. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at the third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College, Sandeep Ghosh, for financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत ईएफटीए मुआहदे के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजिमतों की बात कही है। वजीरे आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इकतसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
4: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने बढ़ती हुई तवानाई की जरूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तय अज़्म और काबिले तजदीद तवानाई में तेजी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीकेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
4: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
3: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में

0: आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। सबका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, उनमें तकनीक और इख्तरा, पायदारी, काबिल तरजीह तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकतदारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्याल का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वजीर आजम के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत, पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलाक्वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें की। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निजाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6

0: दहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के आवाम को बड़े पैमाने पर हुए सामाजिक, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में आवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाबतगियों और काले धन को जायज बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मुशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आईएफआर बरकरार रखने की जरूरत खत्म कर दी है। आईएफआर इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कद्र में गिरावट से तहफ्फुज़ के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतल्लिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए, जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर्स में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबार ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर जगह दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफे अव्वल की चह सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुज़ाकरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے. وزیر اعظم مودی تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا ہے. جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی. مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بے ضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے. سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں. اب آپ کو سنوا رہے ہیں 102.9 مارننگ ہٹس.

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अखंड से, आवाज है सपना पाठक और प्रकाश प्रभाकर की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म 1920 हीरोज ऑफ द हार्ट, इस फिल्म से आवाज है जावेद की।

0: 90. ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने वाले हैं। अब
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
2: बस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। जिले में गौशाला के रखरखाव और गर्मी में गौवंश की सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में हर गौशाला के लिए नोडल अधिकारी तय किए गए। बस्ती में गौशालाओं की बदतर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने विभागीय अधिकारियों और सभी शासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में बस्ती कृतिका जोशना ने बताया,
3: हमने सभी गौशालाओं को लेकर के एक विस्तृत बैठक की। इसमें हमने कुछ नए नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। मीटिंग में हमने सबसे पहले तो जितने भी जीओ हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया। इनको ये भी बताया कि जब ये निरीक्षण करने जाएं तो किस प्रारूप पे इनको निरीक्षण करना है, एज वेल एज गौशाला में इनको क्या देखना है। उसी के साथ गर्मी से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
2: राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा में मेधावी छात्रों को प्रशस्त पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को मूर्त रूप अजय प्रकाश लाल व अमित यादव द्वारा दिया गया। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा खाड़ी देशों में मौजूद हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की बचत की गई अपील पर मंडल के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से देश हित में एवं मौजूदा हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की हर एक बूंद की बचत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसको लेकर अपने निजी वाहनों को छोड़ बस टैक्सी व साइकिल से ऑफिस आने की सलाह दी गई। जिसके क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस निमित्त शासकीय वाहन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा अपने आवास से साइकिल द्वारा कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों का संपादन किया गया एवं ईंधन की बचत के लिए मंडल के ग्राम विकास विभाग से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे देश हित में कम से कम वाहनों का प्रयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बस्ती जिले में तहसील जूसों में फरियादियों की लगी भीड़। सदर तहसील में 90 शिकायतों में 6 का निस्तारण मौके पर कराया गया। बस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ शनिवार को विक्रम ज्योत में हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पहले दिन 7 तथा दूसरे दिन 4 सत्र संपन्न होंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रदेश के सम्मुख चुनौतियों एवं निदान के हमारे प्रयास विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती शक्ति से घबराई देश विरोधी ताकतें सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दूसरे सत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी वैचारिक अधिष्ठान विषय पर अपने विचार रखे। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि गौ आश्रय को अब 5 से 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है। लोगों को पशु पालने के लिए निराश्रित पशुओं के देखभाल के लिए जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार गौ सेवा को केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं एक पवित्र के रूप में स्वीकार करते हुए सतत कार्य कर रही है। बस्ती जिले के सलटौआ विकास खंड में गरीबों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली। अब महंगे मैरिज हॉल की टेंशन खत्म होगी। यहाँ वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ मीटिंग और सरकारी आयोजन भी हो सकेंगे। ये बहुउद्देशीय भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब परिवारों के आत्मसम्मान की नई नींव है। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने बताया,
4: मुझे लगता है जनपद ही नहीं प्रदेश का पहला ऐसा विकास खंड होगा जहां ऐसा भवन का निर्माण कराया जा रहा है जहां गरीब परिवार सिर्फ इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट देकर अपने बेटियों की शादी यहां पर ऑर्गेनाइज करा सके।
2: बस्ती जिले की जिलाधिकारी कृतिका जोशना द्वारा जनपद में विभिन्न विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ सफाई, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा मिड डे मील की गुणवत्ता का गहनता से परीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत विकास खंड बनकटी स्थित पीएम श्री विद्यालय द्योमी से हुई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। वही जिलाधिकारी कम्पोजिट विद्यालय डाडीडीहा पहुंची, जहां कक्षाएं संचालित होती पाई गयी। जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर प्रतीक्षा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। बच्चों को परोसी गई रोटियां मोटी एवं जली हुई पाई गई। भोजन की खराब गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापिका अनीता द्विवेदी और रसोईया के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। बस्ती जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर फीटा काट कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जेल में महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की न्यायमूर्ति ने सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौता पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। बस्ती जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी का बुरा हस्त्र होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन की समाप्ति का जनादेश है। बंगाल में गुंडागर्दी, बंगाल में हिंसा का रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो बड़ी मात्रा में इसी बंगाल के रास्ते से देश में हमारी संपत्तियों पर, जिसका अधिकार भारत के नागरिकों का था, उस पर आज बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ केवल हमारे देश के लोगों का कब्जा होगा।
1: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का।
5: सोनभद्र में विगत दिनों आंधी तूफान से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई है। आंधी और तूफान के नुकसान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत आंधी तूफान में हो गई, जबकि दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हुए। आंधी तूफान के चलते अभी भी कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप ही पड़ी है। जगह जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं, जिसे लगातार सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आम के फल से लदे वृक्षों के फल बड़े पैमाने पर गिर गए हैं। जिलाधिकारी ने आंधी तूफान में मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सोनभद्र में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुलाब जामुन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अब तक ऊर्जा के क्षेत्र में पहचान रखने वाले सोनभद्र को अब गुलाब जामुन मिष्ठान के रूप में भी जाना जाएगा। परंपरागत कारीगरों को प्रोफेशनल कारीगर बनाने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार लोन भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके हुनर को बढ़ावा मिल सके। जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में नई उड़ान मिल रही है। जनपद के करीब 2000 युवाओं को ब्याज मुक्त 100% धनराशि दी गई है। सोनभद्र में 5 दिवसीय अंश निर्धारण का विशेष अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में जनपद की चारों तहसीलों को मिलाकर लगभग 20,000 से ज्यादा खाता धारकों के अंश का निर्धारण किया गया। जनपद सोनभद्र जो पूरे देश को विद्युत आपूर्ति करता है, यहाँ की बिजली उत्पादन से देश की राजधानी दिल्ली को रोशनी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य की जनपद के ही 834 मजरों को आज तक आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकी है। नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस तरफ विशेष अभियान के तहत हर हाल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के विशेष निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य की प्रत्येक सप्ताह में खुद मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश से बिजली विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन मजरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो अति दूरस्थ क्षेत्र है। ऐसे में इस अभियान को अमली जामा पहनाना काफी परेशानियों भरा है। सोनभद्र में विगत माह भर के अंदर में 2 दर्जन से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो गई हैं। आए दिन ओवरलोड ट्रकों के संचालन से दुर्घटनाओं का घटित होना जनपद के लिए अब आम बात हो गई है। परिवहन विभाग के साथ साथ खनन विभाग हर हाल में ओवरलोड वाहनों के संचालन को चालू रखना चाहता है। इसके लिए बाकायदा खनन और परिवहन विभाग अंदर खाने से अवैध वसूली करते हैं। जनपद सोनभद्र में प्रारंभ हुए जनगणना के कार्य में सरकारी अमला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 7 मई से प्रारंभ हुई जनगणना के प्रथम दिवस पर ही कुल 19,984 लोगों ने स्वगणना कर पूरे प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक गणना कर प्रदेश का प्रथम जिला बनने का गौरव हासिल किया है। जिलाधिकारी चर्चित दौड़ के कठिन प्रयास से इस अभियान को अमली जमा पहनाया जा सका है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जनगणना उस देश के आगामी विकास की धुरी होती है। जनगणना के आधार पर ही विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है। जनपद में हाल के दिनों में तेज धूप और लू से आम जन जीवन प्रभावित है। तेज धूप का आलम यह है कि सुबह 9 बजे के बाद से लोग घर में सिमट जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है, जो देर शाम होने के बाद ही सड़कों पर रौनक नजर आ रही है। सर्वाधिक परेशानी जानवरों पंछियों को देखने में मिल रही है। हालांकि गौशालाओं में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं, जबकि नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर पेयजल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह शरबत के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: जिले की हलचल समाप्त हुई।
7: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के अंतर्गत प्रमुख वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की गौरव गाथा।

0: क्वांटम यांत्रिकी के विकास में प्रमुख योगदान देने वाले सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिनकी गणना विश्व के महान वैज्ञानिकों में होती है। उनका जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे एक महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। सत्येंद्रनाथ बोस की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई। वे शुरू से ही एक होनहार विद्यार्थी थे और गणित में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से गणित में MSc की डिग्री प्राप्त की और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है, जिसे उन्होंने 1924 में विकसित किया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके इस सिद्धांत को और विस्तार से समझाया और इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम दिया। यह सिद्धांत उन कणों के व्यवहार का वर्णन करता है जिन्हें अब बोसोन कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने जीवन काल में कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन किया। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और वहां विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे। सत्येंद्रनाथ बोस को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारतीय सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई, जो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि और योगदान ने विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोलीं और उन्होंने भारतीय विज्ञान को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनका निधन 4 फरवरी 1974 को हुआ, लेकिन उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। वे भारतीय विज्ञान के एक महान नायक थे, जिनकी विद्वता और अनुसंधान ने विज्ञान की दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
1: अभी आपने सुनी कार्यक्रम गौरव भारत देश के अंतर्गत प्रमुख वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की गौरव गाथा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है उर्दू प्रोग्राम।
2: वो माजी की यादें, वो माजी के साये, वो माजी की यादें, वो माजी के साये, किरण बन के फूटे, घटा बन के छाए। जी हाँ, सामान्य अदब आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रबाब अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है, कुछ सुनहरी यादों के साथ। आज हम और आप जिस जरिए से एक दूसरे से राबते में हैं, एक दूसरे के रूबरू हैं, वो राबते का जो हमारा जरिया है यानी कि हमारा रेडियो, आज हम बात करेंगे उसी की तारीख की, उसी की तारीफ की और उसी की अहमियत की। जी, आज हमारा मौजू है रेडियो के 90 सुनहरे साल। आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो हिंदुस्तान का एक ऐसा कौमी रेडियो नशरिया है जिसके जरिए सिर्फ हिंदुस्तानी ही आपस में नहीं एक दूसरे से जुड़े, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी नशरियात ने पूरे बरसगीर को एक दूसरे से जोड़ कर रखा। और ये लंबा सफर बहुत सी सुनहरी यादें अपने साथ अपने दामन में समोता गया, जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आज उन्हीं यादों को सजोकर हमने अपने स्टूडियो में इनेकाद किया है एक गुफ्तगू का, और इस अहम गुफ्तगू के लिए हमने मदऊ किया है अपने मेहमानों को अपने स्टूडियो में। पहले हम आपसे उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब और जनाब परवेज खान साहब। हम समीम कल्ब से अपने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में और मुबारकबाद देते हैं उन्हें भी कि वो इसी रेडियो के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। ये एक अहम तरीन जरिया है तमाम सामीन और तमाम शायकीन को एक दूसरे से जोड़ने का। मुझे सब आप हमारे साथ हैं आज रेडियो की तारीख पर बात करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे समीन को बताएं कि इसकी तारीख क्या है, इसकी इब्तिदा आकाशवाणी की, ऑल इंडिया रेडियो की, कब से हुई और कैसे हुई।
3: बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रेडियो से मुंसलिक तमाम ही शख्सियात को और अपने तमाम सामईन को मुबारकबाद पेश करूं कि आज ये हमारे लिए खुशी का मौका है जब आकाशवाणी ने या ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी ज़िंदगी के 90 साल मुकम्मल किए हैं
2: जी।
3: और हम 90 साल से एक दूसरे के रابطے में हैं।
2: बिल्कुल।
3: रेडियो की इब्तिदा हुई तो मैं समझता हूँ कि इसके जो मौजिद हैं
2: जी
3: इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी साहब को ये तो अंदाजा था कि वायरलेस सिस्टम के जरिए हम अपनी आवाज और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उन्होंने इस रास्ते में बहुत कोशिश की, बहुत जुस्तजू की, बहुत लगन की। लेकिन शायद आज अगर वो जिंदा होते तो वो खुद भी हैरतजदा होते कि इस कोशिश के जरिए दुनिया में कितना बड़ा इनकलाब आ जाएगा।
2: जी बेशक।
3: रेडियो की जो इब्तिदा है, इन्वेंशन है, वो तो जाहिर
2: जी
3: है
2: हाँ, मार्कोनी साहब का ही है।
3: मार्कोनी साहब के सर जाता है ये सेहरा
2: जी।
3: लेकिन हिंदुस्तान में जगदीश चंद्र बोस
2: जी
3: एक साइंटिस्ट गुजरे और उन्होंने पहले इंडियन इन्वेंटर हैं वो जिन्होंने हिंदुस्तान में इसकी इब्तिदा की। इंडिया में जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने पहली मर्तबा कोई प्रसारण किया। उस वक्त तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा कहा जाता था
2: जी हाँ।
3: और हिंदुस्तान में जहाँ चैनल्स की बात करें, फर्स्ट चैनल जो है एफएम चैनल वो 1977 में चेन्नई में हुआ शुरू
2: जी। उससे पहले 1936 में हम समझते हैं कि इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से मंसूब किया गया और 8 जून को उसकी पहली नशरियात ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। इसी मुनासिबत से हम आज 90 साल का जश्न यहाँ मना रहे हैं और इसको आकाशवाणी का नाम दिया गया 1957 में, जबकि इस नाम की जो इब्तिदा थी जहन में वो मैसूर के कालिम थे एम वी गोपाल स्वामी, जिन्होंने 1936 में ही अपने जहन में इस नाम को पैदा किया था कि कभी इसका नाम आकाशवाणी रखा जाए और वो कौमी सतह पर 1957 में इस नाम से राइज हुआ। परवेज साहब, आप क्या बताना चाहेंगे इस आकाशवाणी की मुनासिबत से, इसकी तारीख या इसकी तारीफ की मुनासिबत से? आप भी रेडियो से जुड़े हुए हैं, आपका इससे काफी पुराना रिश्ता है।
4: जी जी जी, 90 साल पूरे होने पर मैं रेडियो के बारे में और इस आकाशवाणी के बारे में ये कहना चाहूँगा और एक पुरानी बात भी आपको सुनाना चाहूँगा।
2: जी बिल्कुल।
4: कि हमारा ताल्लुक गांव से है
2: जी
4: और रामपुर जिला में वो गांव पड़ता है, लिहाजा 1975 या 1976 की बात है
2: जी,
4: तो उस वक्त उस गांव में एक रेडियो जो जॉली नाम से आया करता था
2: जी, जी,
4: तो
2: जी।
4: मेरे वालिद साहब ने वो खरीदा था और उसकी बॉडी सनमाइका और लकड़ी में हुआ करती थी, तो वो जब बैठक पर बजा करता था वो रेडियो तो पूरे गांव के लोग सुनने आया करते
2: सुनने
4: थे
2: जी।
4: और वो उस वक्त एक उनका मनोरंजन का बेहतरीन साधन था।
2: बेशक।
4: उस रेडियो के जरिए तमाम रंग के प्रोग्राम, तमाम रंग की जानकारियां और ऐसे प्रोग्राम आया करते थे कि लोग फरमाइश किया करते थे अपने गानों की कि हमें ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है। तो जब रेडियो पे नाम आया करता था कि भाई फला जगह से ये शख्स इस फरमाइश है उनकी, तो वो बड़ा खुश हुआ करते थे
2: जी।
4: तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस दौर में जो रेडियो गांवों में बहुत या देहाती क्षेत्रों में या अक्सर आप देख रहे हैं कि कुछ कमी आई है, लेकिन वहीं पर मोबाइल के जरिए और एफएम के जरिए उसको बड़ा लोग इस्तेमाल करते हैं और वो दूर दूर तक सुना जाता है, मैं तो ये मान के चलता हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। मुझे साहब, इस वक्त के क्या आदाद शुमार हैं, कितने ऐसे स्टेशन होंगे जो अपनी नशियात यहाँ दे रहे हैं?
3: बहुत तरक्की की रेडियो ने और उसके मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स कायम किए गए जिनकी तादाद 591 है इस वक्त। 591 ये स्टेशन हैं जो अपनी नशियात देते हैं और ये नशियात 23 जबानों में और 146 बोलियों में नश्र की जाती हैं।
2: ये एक बड़ी कामयाबी
3: है और हिंदुस्तान के 98% लोगों तक रसाई है
2: जी हाँ, जी
3: आकाशवाणी
2: हाँ।
3: की तो जरूर ये एक इनकलाबी कामयाबी है और बड़ा कारनामा है।
2: देखिए, हम समझते हैं कि शायद मैं खुद को तो उसी जुमरे में रखूंगी कि हम लोगों की जो नस्ल थी उसकी तरबियत में भी रेडियो का बड़ा हाथ रहा।
4: बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक की बात नहीं।
3: जी मैंने ये महसूस किया है, मैं एक शेर की जबान में अपनी बात बताना चाहूंगा कि मुझमें हर दौर की तारीख नेहा है लोगों, मेरे किस्से से कई किस्से आया होते हैं।
2: बहुत
3: बात यह है कि रेडियो ने समाजी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी के हर शोबे में अपनी रसाई हासिल की। वो कोई ऐसा शोबा है ही नहीं हमारी जिंदगी का जिसमें रेडियो ने कहीं ना कहीं अपनी खिदमात ना पेश की हों और हमें मालूमात ना फराहम की हों, या हमारे लिए जैसे अभी परवेज भाई ने जिक्र किया कि गांव में बैठते थे, चौपाल में बैठते थे और इंतज़ार रहता था प्रोग्राम का और अपने अपने मतलब के। तो बात मैं गांव से ही अगर करूं कि आज जो साइंस ने नई नई तरक्कियां ज़राअत के शोबे में की हैं, उसमें मालूमात फराहम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया रेडियो होता था, जो किसानों को बताता था आप कौन सी खाद आज दें, कौन सी फसल कौन से मौसम में।
2: और ये खिदमत आज तक आकाशवाणी,
3: और वो खिदमत आज तक अंजाम
2: मुख्तलिफ प्रोग्राम।
3: इसी तरीके से साइंस का शोबा, इसी तरीके से तिब्बी शोबा
2: जी,
3: इसी तरीके से मनोरंजन, हाँ कानूनी शोबा, फिर मनोरंजन के लिए आकाशवाणी के पास कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें हम देखते हैं
2: नई और पुरानी फिल्मों के गीत हैं।
3: हाँ, अगर बात आकाशवाणी की हो रही है तो बिना की गीतमाला के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता।
2: अमीन सियानी साहब का नाम उनके साथ हमेशा के लिए अमर है।
3: कितने ही एंकर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को दर्ज करा लिया तारीख में और उनका नाम हमेशा हमेशा रहेगा जब तक कि आकाशवाणी का नाम रहेगा। उनमें एक नाम अमीन सयानी साहब,
2: अमीन सयानी साहब का,
3: ऐसे ही अजरा कुरैशी एक नाम है जो उर्दू सर्विस में मशहूर एंकर थी और उनकी जो आवाज थी वो एक तरह से ऐसा लगता था कि जादू सा कर रही है समाज।
2: तो अमीन सयानी साहब का तो जब नशियात शुरू होती थी रेडियो सैलून से और वो कहते थे भाइयों और बहनों अपनी मखसूस आवाज में, तो उसकी एक कशिश जो थी वो तमाम लोगों को अपनी जानिब खींच लेती। डॉक्टर साहब, इसी तरह से कुछ और मोतबर नाम जिन्होंने अपनी आवाजों के जरिए, अपनी खिदमात के जरिए आकाशवाणी में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया, जैसे जुबैर रिजवी साहब, मोहम्मद अली मौज साहब, मनदीप कौर, सुरेंद्र राजेश्वरी, असीम सक्सेना, जिन्होंने खासकर हम कहें हमारे रामपुर रेडियो मरकज से अपनी मखसूस आवाजों ऐसी पहचान अपनी खिदमात की थी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। कलियां प्रोग्राम के चीकू भैया, रजनी दीदी बच्चों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। उनके लिए तो ये कहना बजा होगा कि हम भूल सके हैं ना तुझे भूल सकेंगे, तू याद रहेगा हमें हाँ याद रहेगा। परवेज साहब, आप के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहे होंगे जो आपने पसंद किए होंगे या आपके जमाने में आपके बड़ों ने आपको खुसूसन सुनवाए होंगे और उससे आप कहीं ना कहीं मुस्तफीद भी हुए होंगे।
4: देखिए डॉक्टर साहब ने जो अभी बात कही कि आकाशवाणी जो 90 साल गुजर गए उस वक्त टीवी वगैरह नहीं थे, मोबाइल नहीं थे और इतने अखबार भी नहीं थे, लेकिन आकाशवाणी के जरिए तमाम रंग की जानकारियां, तमाम रंग के प्रोग्राम जिसमें युवा वाणी भी हो, कृषि जगत भी हो, कानूनी जानकारी भी हो और तमाम ऐसे अवेयरनेस बच्चों के प्रोग्राम हुआ करते थे, उर्दू प्रोग्राम हुआ करते थे, शेर शायरी का माहौल हुआ करता था। तो ये जो तहजीब और अदब हमने उस वक्त सीखा है वो रेडियो से सीखा है।
2: बिल्कुल।
4: और अब तो चूंकि बहुत चीजें आ गई हैं उससे लोग सीख रहे हैं, लेकिन रेडियो की अपनी जगह एक अहमियत है।
2: सबसे बड़ी चीज ये कि रेडियो से जो चीज भी नश्र होती है वो बिल्कुल सही होती है और उसमें किसी तरह का मिलावट का कोई अंदेशा नहीं।
4: देखिए देखिए आजकल जैसे भ्रामक समाचार होते हैं
2: जी,
4: जो दूसरों पे इतना यकीन नहीं किया जा सकता
2: सोशल मीडिया के जरिए से जो,
4: लेकिन रेडियो पे आज भी यकीन है
2: जी। हाँ,
4: कि भाई ये रेडियो में आया है, ये हमने सुना है, ये खबर आई है,
2: तो मुस्तनद होती है
4: ये। जी जी बिल्कुल, वो आज भी है ऐसा।
2: जी हाँ, इसी तरह डॉक्टर साहब हमारी जुबान उर्दू, इसके फरोग में भी रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। रेडियो से नश्र होने वाली उर्दू सर्विस
3: जी,
2: जिसके तहत उर्दू के अफसाने, उर्दू के ड्रामे और उर्दू की शायरी, ये तमाम चीजें इस तरह से नश्र होना शुरू हुई कि उस वक्त उर्दू जुबान भी पूरे बरसगीर में एक राब्ते की जुबान थी और पसंदीदा जुबान थी। तो ऐसे में उस उर्दू सर्विस ने जो अपना अहम रोल अदा किया उर्दू को फरोग देने में और उर्दू के तमाम असनाफ को सब तक पहुंचाने में, वो भी उसका एक बड़ा कारनामा है।
3: बड़ा कारनामा है और उर्दू सर्विस ने बहुत मकबूलियत हासिल की और वो घर घर की आवाज़ थी, और घर घर की नहीं मर्दो जन की आवाज़ थी, बच्चों की आवाज़ थी, सबके मतलब के प्रोग्राम वहाँ मौजूद थे।
2: जी हाँ, ये तो जाहिर है कि अगर हम बात करें पूरे सगीर की या पूरे वर्ल्ड की, तो बहुत सारी उर्दू सर्विसेज थी, वॉइस ऑफ अमेरिका,
3: बीबीसी लंदन
2: की उर्दू सर्विस,
3: जी जी,
2: और उसके अलावा भी दीगर थी। लेकिन हम फिर वापस लौटते हैं अपने आकाशवाणी की तरफ, तो हमारे आकाशवाणी ने ही जो प्रोग्राम अब तक दिए, जैसे अभी हमने जिक्र किया बिनाका गीतमाला का, इसी तरह से एक प्रोग्राम आया करता था हवा महल,
3: जी जी,
2: उसमें क्लासिकल कहानियों और ड्रामों पर मबनी ये हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत दिखाई जाती थी, सुनाई जाती थी। इसी तरह एक आता था प्रोग्राम छाया गीत, जिसमें फरमाइशी नगमे हुआ करते थे। युवानी जो बहुत पुराना प्रोग्राम है और आज
3: बहुत,
2: तक
3: बहुत मकबूल प्रोग्राम,
2: मकबूल है और आज तक वो उसी तो खूबसूरती के साथ चल रहा है। विविध भारती
3: जी
2: के प्रोग्राम, भूले बिसरे गीत, जिसमें पुरानी फिल्मों से लिए गए वो गीत जो आमतौर पर खासकर हमारी नई नस्ल नहीं जानती, नहीं समझती उन चीजों को, लेकिन उसकी अहमियत समझते हुए इस तरह के प्रोग्राम भी रखे गए। बाल मंडल, बाल सभा, बच्चों के लिए प्रोग्राम, या कलियां प्रोग्राम जो रामपुर से ही नशर होता है। इसके अलावा कृषि से मुतालिक बहुत सारे प्रोग्राम, जैसा भी परवेज साहब ने जिक्र किया, उससे मुतालिक बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। और सबसे खास चीज आकाशवाणी की, यहां से नशर होने वाली खबरें, चाहे वो उर्दू खबरें हों या हिंदी समाचार हो या इंग्लिश न्यूज हो।
3: मुझे खबरें सुनने का शौक बचपन से रहा, शायद मेरे ताया से मुझे मिला। वो एक खास टाइम पर जब खबरों का वक्त होता था तो हम लोगों से कहते थे रेडियो ऑन करो,
2: जी हाँ,
3: वो खबरें सुनते थे। तो उस जमाने में मुझे आज भी नाम याद है, वो कमेंट खबरें पेश करने का जो अंदाज है ना, बाज एंकर्स ने ऐसी छाप छोड़ी है कि वो नहीं मिटती
2: है। अंदाज
3: तो उसमें हिंदी के खबरों में देवकी नंदन पांडे, इतना मशहूर नाम है कि उनकी जो आवाज थी इतनी भारी भरकम आवाज, और उससे लगता था कि ये जो कुछ दे रहे हैं वो मालूमात का एक समंदर हमें बाखबर कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसी तरह से अंग्रेजी में अनुपम गुलाटी और नरोत्तम पुरी के जो ये और खबरें होती थी। तो शायद एक शोभा भी छूट रहा है हमसे, खेल का शोभे में भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मुझे तो खैर क्रिकेट का शौक था, लेकिन मैंने जसदेव सिंह को कमेंट्री करते हुए सुना है बारहा, वो क्रिकेट ही नहीं हॉकी में भी और दूसरे खेलों में भी महारत रखते थे, माहिर वो कमेंट्रेटर थे।
2: उन कमेंट्रियों की भी एक खसूसियत ये होती थी कि जिस वक्त वो कमेंट्री आती थी तो आंखों के सामने पूरा फील्ड,
3: हाँ, मंजर कशी
2: बहुत बेहतरीन
3: लगता था, ये सब हम देख रहे हैं जो।
2: जी परवेज साहब, आपके कौन से पसंदीदा प्रोग्राम रहे जो आपको अब तक याद हो और आप फिर उसे सुनना चाहें?
4: भाई हम तो वो युवा वाणी सुना करते थे, उस वक्त युवा थे तो बहुत सी जानकारियां मिला करती थी।
2: बिल्कुल।
4: और अब तो उम्र के उस स्टेज पर हैं कि तमाम रंग की चीजें आकाशवाणी से जो आती हैं तो सुनते हैं, लेकिन उस वक्त शौक जो था वो युवा वाणी का था।
2: तो हमारे ये जो 90 साल गुजरे, आज के मंजरनामा है उसमें आपको क्या लगता है कि नई नस्ल कितना इस रेडियो को पसंद कर रही है या कितना इससे जुड़ रही है और क्या इसका मुस्तकबिल हो सकता
3: है? वो है ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बात यह है कि रेडियो ने अपनी तरक्की की, लेकिन हमारा साइड बैक ये है कि नई नस्ल के पास अब वक्त नहीं है कि हम रेडियो जैसे जराए का इस्तेमाल करके कुछ सीखें। लेकिन यूरोप में और दूसरे कंट्रीज में आज भी रेडियो उतना ही मकबूल है और वो उनके साथ कार में चल रहे हैं। हिंदुस्तान में एफएम के बाद रेडियो ने बहुत
2: शुरू की है,
3: हाँ, बहुत तरक्की। और मैं इधर देख रहा हूँ कि नई नस्लों में कुछ जौक फिर से

0: मालूमात उन्हें हासिल होती थी कि कौन सा प्रोग्राम किस वक्त आता है, कौन पेश करता है, किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें क्या मौजूआत होते हैं, और वो उसी के मुताबिक अपनी पसंद के प्रोग्राम ढूंढकर उनको सुनने की कोशिश किया करते थे।
1: जी
0: लेकिन आज बदकिस्मती से वो रसाइल भी बंद हो चुके हैं।
1: जी
0: तो हमारा नई नस्ल को यही पैगाम है कि देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से शॉर्टकट्स हैं आपके पास मालूमात पहुंचाने के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम मालूमात बिल्कुल मुस्तनद हों।
1: जी हम AI के दौर में हैं और यहाँ
0: बिल्कुल
1: बहुत सी मालूमात हम तक जो पहुँचती हैं वो गलत होती हैं।
0: गलत होती हैं, ज़्यादातर चंद ही चीज़ें उसमें सही होती हैं, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं,
1: जी
0: मिर्च मसाला लगा कर की जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने चैनल्स को चलाना होता
1: चलाना
0: है।
1: है।
0: उसके मुकाबले अगर आपको सही मालूमात हासिल करनी है, तो फिर रेडियो की तरफ हमें लौटना होगा, और हमें इसकी मकबूलियत के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। तमाम सामीन से भी हमारी गुजारिश है कि आप खुद भी पूरे तवज्जो और पूरे शौक के साथ रेडियो सुनिए, और अपने बच्चों को भी सुनवाइए, उनके अंदर भी इसे सुनने का शौक पैदा करें।
1: जी
0: और अब तो बहुत आसानी है, आपको कहीं जाकर जॉली का, मर्फी का कोई रेडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है,
1: हर मोबाइल में रेडियो
0: हर
1: मौजूद
0: मोबाइल
1: है।
0: के अंदर रेडियो मौजूद है। आप गूगल पर जाइए, AIR, जहां का भी आपको सुनना है, नजीबाबाद, रामपुर, जालंधर, लाइव डालिए, और किसी भी वक्त आप रेडियो की नशियात
1: जी
0: सुन
1: बहुत
0: सकते हैं,
1: सहूलियत है। दूसरी
0: और
1: बात
0: कहीं
1: ये
0: भी आपकी जेब
1: फ्रीक्वेंसी बहुत
0: नहीं।
1: अच्छी हो गई है।
0: फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, हर वक्त रेडियो आपकी जेब में है, जहां आप चाहें, जब चाहें, आप रेडियो सुन सकते हैं। इससे ज्यादा बेहतरीन और मुस्तनद मालूमात आपको कहीं से भी हासिल नहीं हो
1: सही,
0: सकती।
1: बेशक, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और आखिरी बात, अगर वक्त इजाज़त
0: जी
1: दे
0: जी
1: रहा हो तो
0: जी
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो हमारा उर्दू ज़बान से लगाव कम हुआ
0: जी
1: और ख़त्म सा होता जा रहा है, अगर हम रेडियो के प्रोग्राम सुनेंगे तो यकीनन हमें
0: बिल्कुल
1: उर्दू ज़बान से, अपनी मादरी ज़बान से, और एक जो उर्दू एक तहजीब है, उस तहजीब से रूशनास होने का फिर मौका
0: फिर
1: मिलेगा।
0: मौका
1: बिल्कुल
0: मिलेगा।
1: सही,
0: और डॉक्टर साहब, उर्दू के साथ साथ अगर हम इसकी तमाम नशरियात की, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश की खबरें सुनते रहें, तो तीनों ही जबानों के बेहतरीन अल्फाज, तलफ्फुज और उसकी
1: बेशक
0: ग्रामर, उसके बोलने का
1: बेशक
0: अंदाज सब हमारा बेहतरीन होगा, मुस्तनद मालूमात के साथ। तो हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब और जनाब परवेज खान साहब इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। जी तो चाहता है कि रेडियो की बातें करते रहें, अपने माजी में खो जाएं, अपने बचपन को याद करें और उन तमाम प्रोग्रामों की तफसील से बात करें, लेकिन वक्त हमें इतनी इजाजत नहीं देता। इसलिए बस यही कहना पड़ेगा कि बस ए ख्याले यार, बहुत थक गया हूं मैं, यादों का सिलसिला तो कहीं टूटता नहीं। तो अपनी मेजबान रबाब अंजुम को इतने ही पर इक्तफा करते हुए इजाजत दें, अलविदा।
2: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मुन्ने खां का तबला वादन। ताल झप ताल में निबद्ध है। सारंगी पर साथ दे रहे हैं जाकिर खान।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मुन्ने खां का तबला वादन, ताल जप ताल में निबद्ध थी और सारंगी पर साथ दे रहे थे जाकिर खां। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम की, जिसका नाम है आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली फरमाइश के साथ हमारे साथ हैं हमारे आप सभी श्रोता। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, चमनलता मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियांक, शीतल, पूजा, कविता, अंश, गौतम और इनके परिवार के सभी सदस्य, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन, नाजिम अली और इनके परिवार के सभी सदस्य, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और साथ में है असद अंसारी, श्री रुकड़ेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोडीबा, इंगोले सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रामाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजुषा, नामदेव राव, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े, अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम, रोहित सोनू मोनू और इनके परिवार के सभी सदस्य, जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम कामले, तामसा रोड तहसील हंदगांव से श्यामराव पड़घड़े, बेबी बिट्टू पड़घड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया आसमा, सालिया शोएब और मुस्तफा खान, राहू भाई, शाहिद भाई, गांधीनगर अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके परिवार के सभी सदस्य, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती जौंधले और इनके परिवार के सभी सदस्य, जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर और प्रभा जटोलिया, डांडिया खेड़ा से इनके परिवार के सभी सदस्य, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के सभी सदस्य, इसी गीत को सुनना चाहा है रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक फातमा और बीबी अलिसबा शेख ने, गज जुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी और बॉबी खान बॉबी, मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन, इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और अशोक जाटव ने। यह अगली फरमाइश हमारे पास आई है बोराल तहसील मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल, गजनन घायल और इनके परिवार के सभी सदस्य, ताजपुर मोरवा से भाई कारी रॉय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राय, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, डोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी और इनके परिवार के सभी सदस्य, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म बाहर आने तक में अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी ने। सीमांध्र पार्क राजकोट से एस के मोची, संगीत कुमार, वाणी कुमारी, वीरमपुर गुजरात से अजीता कुमारी, सोनाली कौर, ज्योति कौर और संदीप कौर। छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और अशोक, इन्हीं के साथ इनके परिवार के सभी सदस्य। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन और उमेरखेड़ से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान। जेल रोड जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर और खांडवा से संदीप कौर और इन्हीं के साथ हैं दुर्गा कौर। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सरगुजा मेन पार्ट से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छत्तीसगढ़ से मिश्री देवी साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। महाराष्ट्र से कुमकुम, आरती, विद्या, वैष्णवी और इनके परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है काप सहेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा और जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। इन्हीं के साथ कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टू, बिट्टा बजाज और साहिल। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति ठाकुर और इन्हीं के साथ हैं रियांश ठाकुर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आप सभी ने ये पत्र भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव, साथ में हैं तेजल यादव। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। महाराजा रेड्डी श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीतल, शीला, गायत्री। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रीना वेद, महिमा, नीतू और इनके परिवार के सभी सदस्य। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशा, दानिश, आदिल, शफक और इनके परिवार के सभी सदस्य। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारका, वंश और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सुहाग में उदित नारायण को।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। आप सभी ने सुनना चाहा है चोर मचाए शोर का ये गीत, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और अदनान सामी ने। फरमाइश करने वाले हैं आप सभी गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान। इन्हीं के साथ हैं ज़िला अस्पताल के पास से गज़न खान, शमा परवीन, शमशल अली अज़म, गुलफ शाह, शहनाज बाबू अंसारी, रज़िया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना, मुन्नी, पवित्रा, आकांक्षा, आंचल, अजय, आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य। थाना टीम ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा, परवीन और शीबा, इमरान खां, रिहान, इकराम, समीना, आसिफा, शबीना और इनके परिवार के सभी सदस्य। पटियाली रोड गंजुंडवारा से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजवी एम, फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर अल्लाह शेख, शमा परवीन, अलकमर बेगम, मिर्ज़ा नसरीन बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान और आरिश खान, साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम नागर कोहरा ज़िला राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदली जंघेल ने। इन्हीं के साथ हैं धामदा ग्राम सुखली कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, होशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम खरेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत। आवाज़ें हैं अदनान सामी और सुनिधि चौहान की। आपकी फरमाइश आपके रेडियो सेट्स पर।

चोर मचाए शोर के इसी गीत के साथ कार्यक्रम से अपने रेडियो साथी अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
3: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
3: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
3: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं वर्षावन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है। उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
3: जी।
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
3: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षावनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता

0: के अद्भुत भंडार हैं, यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?

0: हाँ, तो वो जामुन का पेड़ था।
1: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जो जो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
2: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं लगी।
5: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और

0: गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
4: हाँ, गौरमा।

0: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ, हम सब तैयार हैं।
1: नहीं कटने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
0: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान।
0: मिट्टी पानी और बयान।
5: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे क्या कर रहे हो?
6: मुंह के ताक रहे हो? चलो शुरू मारो
1: पेड़। अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चिपक जाएंगे पेड़ से।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
6: सुनो, आगे बढ़ो।
1: अरे कहां से
6: आया? मिनट की बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
1: छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर छिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम छिपक जाएंगे।
6: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
6: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 6 आप तक पहुंच रही है।
1: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं। जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी जमते हैं।

0: हाँ मेरे गुजर जाने के बाद शहर तो क्या होश, हाँ मेरे गुजर जाने के बाद चंद चेहरे आंसुओं में तरबतर रह जाए।
1: एक लंबा दौर रहा है आपकी शायरी का, बहुत सारे आपके जो कलाम
0: जी
1: शाया भी हुए होंगे,
0: जी बहुत
1: तो हम उसके बारे में भी जानना
0: जी,
1: चाहेंगे।
0: देखिए ये सबसे पहले मेरी इतरा इंद्रधनुष आई।
1: अच्छा,
0: जिसमें 100 शुआरा को मैंने उर्दू से हिंदी में किया,
1: ट्रांसलेशन
0: हाँ,
1: किया आपने।
0: उनकी मतलब सवाने हया तो उनका फोटो भी।
1: तो इसमें कौन कौन शोरा ऐसे
0: बहुत
1: थे जिसमें आपने?
0: 100 हैं, अच्छा, मुझे याद भी नहीं, रामपुर के ज्यादा हैं।
1: अच्छा,
0: रामपुर के ही सब हैं।
1: अच्छा,
0: कुछ होंगे बाहर के। फिर मेरी एक किताब मेरी अपनी लिखी हुई मेरा वतन आई, जिसमें बहुत सारी शख्सियात में मैंने कैरेक्टर स्केचेस और तस्करे किए हैं। उसके बाद में मेरी हिंदी गीतों की किताब आई घाव शब्दों की।
1: अच्छा,
0: ये स्क्रिप्ट भी हिंदी है। फिर एक मजहबी किताब जमजम फुरात, कायनात और शाहनामा, ये तीन किताबें आई 86, 86 और 94 में। उसके बाद मेरा एक कारनामा है जो अदब गाहे रामपुर के नाम से है, जिसमें मैंने कायम चांदपुरी, कई सौ पुराने कायम चांदपुरी से लेके और सन 70 तक के शायरों का मंजूम तस्करा, और ये काम उर्दू में नहीं हुआ है कहीं।
1: अच्छा,
0: ईरान में हुआ है फारसी में। तो ये मेरा एक कारनामा है। और उसके बाद मेरा एक और कारनामा है आईने मुसद्दस, ये करबला के सिलसिले में शायरी है, मगर मैं इसे अपना कारनामा मानता हूँ। फिर मेरा एक मजमुआ है शेर हुआ से, जिसमें श्रृंगार रस में मेरी जो कविताएं हैं उसमें, लेकिन आप देखिएगा उसमें कि कहीं से उसमें कोई ऐसा सस्तापन नहीं मिलेगा आपको, जिसमें पढ़ने वाले की आगे शर्म से झुके हैं। उसके बाद में दो किताबें मेरी अभी आई, बयां अपना,
1: अच्छा,
0: जिस पर मुझे बिहार एकेडमी ने 7,500 रुपए दिए। फिर एक किताब आई मेरी इतमाम, इतमाम पर भी 5,000 रुपए बिहार उर्दू एकेडमी ने दिए। बयां अपना पे उर्दू एकेडमी लखनऊ ने अवार्ड दिया। तो ये तमाम मेरी किताबें। नसर मैंने बहुत लिखी है
1: जी,
0: बहुत सारे मजमुओं पर मेरे मजामीन हैं, इसमें भी दो किताबें नसर की हैं। तो बहरहाल तो जिंदा थे तो
1: हमारे
0: ये सब काम हो गया।
1: दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपका होना बहुत जरूरी है। होश साहब, इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं और बहुत सारे ऐसे कलाम होंगे जो लोग बार बार सुनना चाहते होंगे, तो आप हर कवि की एक कोई खास एक दो रचनाएं ऐसी हो जाती हैं जो उसकी पहचान बन जाती
0: जी
1: है, तो होश साहब की पहचान?
0: देखिए एक शेर मेरा तो मैं उसे कहूंगा बैन-उल-अक़वामी शोहरत कहाँ मिल गया, कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर,
1: वो तो बता रहा था
0: कई रोज का सफर, जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गया।
1: हाय हाय हाय,
0: जंजीर खींच कर जो
1: जिंदगी को आपने अपने नजरिए से देखा है और अपने शब्दों में उसे ढाला है अपनी शायरी में, तो कौन कौन से ऐसे और मौजूद है जो आपने शायरी के जरिए अपने कलाम में समेटने की कोशिश की?
0: देखिए असल में कोशिश करके शायरी नहीं होती।
1: आप
0: कलम कागज लेके बैठे और ये सोचें कि मैं अब शायरी करूंगा तो वो शायरी होगी, क्योंकि आपका हुनर है, लेकिन उसकी रूह नहीं होगी, उसमें जिंदगी नहीं होगी। हाँ, आप जो शेर समाज से हालात से मुतासिर होकर जो आपके जहन में आया, और ये भी जरूरी नहीं कि आज आपके ख्याल में कोई चीज आई तो आप उसे अभी भी नज्म कर देंगे ना, वो एक कोई खास वक्त होगा जब वो आएगा, जब आप खुद कलम उठाएंगे और वो जो ख्याल आपके जहन में आया है, वो जो पल्ले आपकी लाइब्रेरी रैक्स में रखा है, वो निकलेगा और वो लफ्जों की सूरत में आ जाएगा। मसलन जैसे मसलन मैं 33 में पैदा हुआ और 39 से 42 की जंग मैंने सुनता रहा।
1: जी जी,
0: उसके बाद में आजादी, आजादी से पहले जद्दोजहद थी दोनों तरफ से, उसका जो रद्द अमल हुआ वो भी मेरे सामने हुआ। उसके बाद में मर्जिंग में मेरे सामने, फिर बदहाली का दौर हुआ, बेकारी का दौर हुआ, इसलिए कि स्टेट मर्ज होने के बाद में सारी डिपार्टमेंट बंद हो गए, उनके मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई, उसे छटना ही कहते थे उस जमाने में।
1: अच्छा,
0: तो वो हुआ। तो अब ये तमाम चीजें इकट्ठी होकर उसका रद्द अमल हुआ। तो देखिए मेरा मैं एक शेर कहता हूँ कि हमारे सामने क्यों हादसों का जिक्र करते हो, हमारे सामने
1: क्यों हादसों का जिक्र करते हो,
0: हमारे ऐत की बुनियाद ही तूफान पे रखी है।
1: आए है।
0: तो अगर ये हालात नहीं होते तो मैं ये शेर नहीं कह सकता। तो शायरी जो मतलब तबादात है, और अरब वाले तो कहते हैं कि ये शायर जो है वो खुदा का शागिर्द है, इसलिए कि आप किसी को बहर नहीं सिखा सकते, जो रिद्म है उसका वो आप नहीं सिखा सकते, भले आप उसको हुनर दे दें शायरी का, मगर वो रिद्म अगर नहीं है उसके पास तो वो शायरी नहीं कर सकते। गोशा ही निकाला था फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स कहने का, कि वो अपने ख्याल का इजहार कर दें और इस पाबंदी से बच जाएं।
1: और सब शायरी के सिलसिले में बहुत दूर दूर तक जाना हुआ होगा, तो उसके बारे में भी बताएं कहाँ कहाँ जाना हुआ।
0: मैं जहाँ उर्दू नहीं है बस वहाँ नहीं गए।
1: अच्छा।
0: हाँ, और एक जगह मुझसे रह गई कश्मीर, इसलिए कि वहां से कई दावतनामे आए, और जब कोई दावतनामा आया वहां से तो मैं बीमार हुआ या इतना मसरूफ हुआ कि मुझे माजरत करना पड़ी। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत सारे मतलब ये खतूत मौसूल हुए, वहाँ अपने बहुत मिलने वाले थे शायर, जो कलाम जिनका मैं पढ़ता था वो मेरा पढ़ते थे, उनके तवसुल थे, मगर मैंने कभी पसंद नहीं किया कि मैं अपने वतन के अलावा कहीं जाऊँ।
1: रामपुर को पुराने ज़माने में दारुल सुरूर कहा जाता था, और सही कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक आम आदमी भी शायरी की समझ रखता है, और जो दाद मिलती है उसका एक अपना स्टाइल है।
0: जी जी।
1: तो शायरी के इस रामपुर स्टाइल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, रामपुर ने हमेशा अदब खास तौर पर गजल के लिए अपने आप को यूं कहना चाहिए कि अपने आप को हवाले कर दिया गजल, और ऐसा भी नहीं कि उस तरक्की की राहों को नहीं अपनाया, उसको भी अपनाया, लेकिन गजल से अपना पहलू नहीं बचाया रामपुर वाला। अब जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि अब गजल महबूब से बातें करने के बजाय जिंदगी से बातें करती है, जिंदगी का तस्करा करती है, तो जिंदगी को भी नहीं छोड़ा। रामपुर की अरबगाहों में गजल जिंदा रही और अपनी ताबिंदगी के साथ और अपनी पूरी जिंदगी के साथ। और रामपुर उस जमाने में भी तरक्की पसंद रहा गजल के मामले में, नई गजल आई थी और उसके बहुत सारे अज्जा थे वो चले भी गए, और बहुत सारे जो अच्छे थे खूबसूरत थे वो रह भी गए। मसलन जैसे लफ्ज हैं अल्फाज, मतलब जो गजल में नहीं इस्तेमाल होते थे अब वो भी गजल में इस्तेमाल होते हैं, मगर उसको इस्तेमाल करने का होना चाहिए। अपना एक मिसरा सुनाता हूँ। देखिए, मैंने एक लफ्ज हिंदी का, वैसे मेरी शायरी बहुत हिंदी है, और मैं चूंकि किसी जबान को भी ये नहीं समझता कि किसकी है, ये मेरी है, मेरी सारी हिंदुस्तान की जुबान है। अगर मुझसे आती हो, मैंने भोजपुरी में गीत भी लिखे हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो वो सब जुबानें मेरी हैं। तो मैंने देखिए एक लफ्ज है नयन, अब आप देखिए मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया, एक ही मिसरा मुझे याद है, काजल भरे दुजदीदा नयन याद रहेंगे। पता चल गया आपको कि किस जुबान का लफ्ज
1: है? बिल्कुल बिल्कुल।
0: मालूम होता है कि एक रेला था बहता हुआ चला गया, उसमें सलासत इतनी।
1: कुछ और सुनने का मन है।
0: जी जी, मैं अर्ज करता हूँ। मुलाजा फरमाया कि बादल जब धरती पर मोती बोते हैं, कि बादल जब धरती पर मोती बोते हैं, चट्टानों के सीने जख्मी होते हैं। बादल जब धरती पर मोती बोते हैं, चट्टानों के सीने जख्मी होते हैं। तूफानों का हम एहसान नहीं लेते, तूफानों का
1: हम
0: एहसान नहीं लेते, अपने हाथों अपनी नाव डुबोते हैं।
1: क्या बात है।
0: तूफानों का हम एहसान नहीं लेते, अपने हाथों अपनी नाव डुबोते हैं। एक जगह तालाब की सूरत क्यों ठहरे, एक जगह
1: तालाब की सूरत
0: क्यों ठहरे, बहने वाले पानी दरिया होते हैं।
1: क्या बात।
0: एक जगह तालाब की सूरत क्यों ठहरे, बहने वाले पानी दरिया होते हैं। वो खुद कैसा होगा जिसकी बस्ती में, वो खुद कैसा होगा जिसकी बस्ती में रात सुनहरी चांदी से दिन होते हैं। वो खुद कैसा होगा
1: जिसकी
0: बस्ती में रात सुनहरी चांदी से दिन होते हैं। यार बुरा मत मान मगर ये तो सच है, यार बुरा मत मान मगर ये तो सच है, सब पर हंसने वाले खुद पर रोते हैं। यार बुरा मत मान मगर ये तो सच है, सब पर हंसने वाले खुद पर रोते हैं। बस आप ये खास तौर पर ये मकता भी सुनिए कि दिन भर के गम होश अलमारी में रख, दिन भर के गम होश अलमारी में रखकर चादर तान के हम तो शब भर सोते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। होश साहब, जी तो चाहता है कि बहुत सारी बातें आपसे की जाएं और बहुत सारे कलाम आपके सुने जाएं, लेकिन बात आपकी अपनी जिंदगी की भी बहुत जरूरी हो जाती है। किस तरह से शायरी के साथ साथ घर गृहस्थी का तालमेल आपने बैठाया है?
0: साहब, ये अच्छा आपने सवाल किया और बहुत जरूरी भी था। देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुआ, और इस गुर्बत ने और बड़ा तूफान मचाया जब मेरे वालिद साहब दूसरे लोगों के साथ स्टेट की नौकरी से, नवाब साहब की नौकरी से मतलब निकाल दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए। तो मेरे पन्नी पूरे रामपुर पे, जो दरमियानी तबका था, जो खुशपोश तबका था, लेकिन आप नहीं कह सकते थे कि इसके पेट में रोटी भी है या नहीं है, नहीं, ये आलम था। तो उस जमाने में बड़ी तगोदो के साथ मेरे वालिद, मेरे चचा जो पुलिस में मुलाजिम थे, वालिद साहब अलबत्ता और दादा, ये सरकार के मुलाजिम थे जो बर्खास्त कर दिए गए थे, तो बड़ी जद्दोजहद की। मेरे पास कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमारे रामपुर के एक बहुत ही आला खानदान के एक फर्द थे जकीउल्ला खान साहब, जो स्पोर्ट में डेनमार्क कहाँ कहाँ गए थे, खैर वो हमारे जो स्टेडियम है इसके इंचार्ज थे। तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त काम करते थे, कुछ वैसी सब्जी को मैं भी चला जाया करता था। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि यहाँ कैसे आता हूँ। मैंने कहा साहब ये लड़के हैं, ये मेरे साथ पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि तू उदास उदास से रहते हो। हाँ, मैंने कहा साहब वो अब एक मसला तो यही मेरे सामने है कि मेरे पास मेरी स्कूल की किताबें नहीं। अच्छा अच्छा, तो उनका उसका बंदोबस्त हम कर देंगे। नहीं, मैंने कहा साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं यहाँ के मुलाजमीन में तुम्हारा नाम डाल देते। अच्छा, उस वक्त मेरी उम्र कम थी, और उसके बाद तुम्हें तनख्वाह की सूरत में हम देंगे। मैंने इसे कबूल कर लिया। तो इन हालात से भी गुजरे और कुछ न कुछ मतलब बहरहाल करते ही रहे, जिससे मतलब थोड़ी बहुत आमदनी हो जाए और कुछ गुजर बसर हो जाए। बहरहाल खुदा का शुक्र है हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने, सब कुछ खुद ही किया अपने बचपन से। चूंकि वालिद साहब को नौकरी नहीं रहते और आमदनी का जरिया नहीं आया था, मेरी वालदा खुदा गरी कर रहमत करे उन्हें मरहूम, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने कई काम ऐसे किए जिससे कुछ आमदनी हो जाए, रूई उई औटना और ये तमाम।
1: अच्छा।
0: ये तमाम बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता था कि मुझसे कोई पूछे और मैं उसे बताऊं। इसी तरह गर्ज यह कि वो तालीम भी उस दर्जे तक नहीं पहुंच सके, लेकिन किताबों से चूंकि दोस्ती रही हमेशा और पढ़े लिखों में बैठना उठना रहा, उलमा में बैठना उठना रहा, अपने नौजवान पढ़े लिखे दोस्तों में बैठना उठना रहा, तो कमी महसूस नहीं हुई तालीम की। अल्लाह के बदलते हैं, कोई कमी महसूस नहीं हुई। अच्छा, एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे घर के पीछे हमारे अजीज थे हज़रत क़िबला जलील नुमानी साहब मरहूम, तो वहाँ से आवाज़ें आया करती थी, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। तो मैं एक दिन जाके कोने में खड़ा हो गया, तो उनका अरे भाई यहाँ आओ, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ बैठो। तो वहाँ मैंने बैठना शुरू कर दिया। तो अच्छा, मुझ में ये सलाहियत पहले से थी, मतलब मौजू तबा में पहले ही से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और उसके नतीजे मेरे बच्चे सब मौजू तबा मतलब शेयर करने वाले।
1: अच्छा।
0: और बातों बातों में गिलास ढूंढ रही हूँ मगर नहीं मिलती वगैरह वगैरह।
1: अच्छा।
0: तो पूरे घर का। तो उन्होंने कहा मियाँ कुछ शेर वेर भी कहते हो? तो उस जमाने में मैंने कुछ कतात कुछ कहे थे, तो मैंने उन्हें सुनाया। तो उन्हें यकीन नहीं आया कि ये मैंने कहा, मगर उन्होंने तस्करा भी नहीं किया, मगर मैं भी अंदाजा हुआ उनके चेहरे से कि उन्हें। तो एक दिन वह जब मैं गया तो वो तन्हाई में छह लोग आने वाले थे, तो उन्होंने कहा भाई खुद ही कहते हो? अच्छा, मैंने कहा भाई अच्छा ये मिसरा है, इस पे कहिए। तो मैंने कोई आधे घंटे में वहाँ पाँच छः शेर वो मैंने उसमें गया आपको दो शेर सुनाए भी।
1: जी जी जी।
0: तो वो खड़े हो गए साहब, ये खासतौर पर ये शेर सुन के, आप और जहमत नमक पासी जख्म दिल सुन के मुस्कुराते हैं। तो उन्होंने बड़ा मुझे सराहा और उसके बाद में मैं उन्हें दिखाने लगा, मगर ये कुछ ही दिनों ये सिलसिला बाकी रखा। तो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि भाई अब मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सुना सकते हो।
1: अच्छा।
0: मगर ये इसलाह के लिए मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक मेरा शेर था कि आईने की तरफ गैर की समत तुम यूं न देखा करो, या मेरी आंख से रोशनी छीन लो। गैर की समत यूं तुम न देखा करो, या मेरी आंख से रोशनी छीन लो। तो उन्होंने कहा भाई ये गैर की समत क्या, आईने की तरफ। मैंने साहब आईना बेजान है, वो कुछ भी करे उस पर कुछ भी असर मरतब हो
1: जी जी।
0: तो मेरे सेहत पे उसका क्या असर है? हाँ, लेकिन गैर देखता है तो मुझे जलन होती है। तो उन्होंने माना ही, तो गले से लगा लिया, शायद इम्तिहान मकसूद है उनका। बहरहाल इस तरह शुरू हुई शायरी।
1: बच्चों में भी आपने जिक्र किया कि शायरी का रंग है, तो किस तरह से क्या माहौल रहता है कभी? हाँ। शायराना अंदाज में घर
0: तो
1: में बातचीत होती है।
0: मेरी एक लड़की ने बहुत 52-53 पर अफसाने लिखे।
1: अच्छा।
0: मीना नोमानी के नाम थे
1: जी।
0: मगर उसके बाद शादी वादी होने के बाद में बच्चे माशाल्लाह उसके बच्चे जवान, बच्चों की शादियाँ हो गई।
1: अच्छा।
0: मेरे पोते पोती पर पोते पोती पर नवासे नवासी भी।
1: अच्छा।
0: मैंने तीन नस्लें देखी अपनी।
1: अच्छा।
0: अल्लाह का शुक्र है।
1: बहुत कुछ आपने देखा है और बहुत कुछ महसूस भी किया है, एक लंबा दौर रहा है आपकी शायरी का। लेकिन आज जब हम शायरी की बात करते हैं तो ना तो वैसे मुशायरे रह गए, ना वो महफिलें रह गईं, तो दिल को कहीं कुछ एहसास होता है।
0: बहुत ठेस पहुंचती है साहब वो जमाना याद करके। हमारी शायरी जिंदगी के लिए जरूरी थी। आज की शायरी जिंदगी की जरूरी नहीं है। मंदिर मस्जिद मतलब ये कि बहुत सस्तेपन से शोहरत हासिल करना, हिंदू मुस्लिम या इस तरह गरीबी अमीरी, ये क्या है? माँ को हिल पड़ गए अरे भाई माँ एक बयान हकीकत है, अगर उसकी कहीं तौहीन हो रही हो तो आप उसका तस्करा करें, लोगों को नसीहत दें।

0: भाई माँ माँ बहनों पे सिर पड़े। अब ये तवज्जा शायरी नहीं है, शायरी का तो अपना एक मेयार है। अखबार सामने रखा, अखबार की खबरें पढ़ी
1: जी, उसको शायरी की शक्ल दे दी
0: कर ली। तो मैंने कहा है कि कुछ ऐसा ही पहला मिसरा कि ये अखबार की शायरी, और दूसरा मिसरा है कि सुखन फहमों से अय्यारी न करना।
1: आप जब शायरी करते हैं, जैसा कि आपने बताया, जब दिमाग में जो आया उसको लिख लिया
0: जी,
1: और फिर वो आगे परवान चढ़ती है
0: जी।
1: तो आप कोई कलाम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद पहला श्रोता आपका, पहला लिसनर कौन होता है, किसको सुनाते हैं?
0: साहब मेरे जब लड़कियों की शादी नहीं हुई थी तो मैं उन्हें सुनाया करता था, मगर अब मैं, अब मेरे दामाद हैं जो मेरे शागिर्द भी हैं आज़र नुमानी, अब बहुत अच्छे शायर
1: जी, जी।
0: अब मैं उन्हें टेलीफोन पर सुना देता हूँ।
1: अच्छा।
0: या कुछ और अहबाब भी ऐसे
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: आपने जैसे आला खान आती हैं
1: जी,
0: ये
1: जी।
0: ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे यार भी हैं और मेरे मद्दा भी हैं। इनमें कई मुझसे मोहब्बतों के पहलू हैं।
1: वो सब आपने बहुत कुछ बताया अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी शायरी के बारे में हमारे श्रोताओं को। हमारी दुआ है कि आप की उम्र बहुत लंबी हो और आप यूं ही शायरी करते रहें। बहुत सारी इच्छाएं हम अपने मन में संजोते हैं, बहुत सारी पूरी भी हो जाती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी सी भी रह जाती हैं। तो होश साहब की ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो अभी सामने आनी बाकी है?
0: साहब अब तो एक ही ख्वाहिश है कि बस इज्जत और आबरू के साथ जो आखिरी मंजिल उस पर पहुंच जाऊं, और बाकी तो गालिब का है ना कि बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश
1: पे दम
0: निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इंसान का जो मिजाज है या इंसान की जो तबीयत है वो कभी किसी चीज़ से भरने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिंदगी से भी नहीं भरती।
1: जी जी जी।
0: मौत अगर हजार बरस के बाद आए तो मौत है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आप यकीन जानिए कि मैंने 60 बरस से, जब मैं 60 बरस का हुआ तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे मरने की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मैंने एक शेर भी कहा था कि 60वीं साल में जिस दिन से हुए हैं दाखिल, होश हर लम्हा निगाहों में लहज रखते हैं। तो आज भी मुझे मौत का इंतजार उसी तरह जिस तरह अपने महबूब का इंतजार, लेकिन बस मैं दोस्तों से ये दुआ करता हूँ कि मेरे लिए इज्जत और आबरू की मौत के लिए दुआ करें कि मैं इज्जत और आबरू के साथ इस दुनिया को खैर बात।
1: हम आपकी जिंदगी की बहुत सारी दुआएं करते हैं होश साहब, और चलते चलते आपका पसंदीदा कलाम हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: गजल दिल की रगों से बुन के जब होठों पे आती है, गजल दिल की रगों से बुन के जब होठों पे आती है, मोहब्बत गुनगुनाती है जवानी झूम जाती है।
1: बहुत
0: मोहब्बत गुनगुनाती है जवानी झूम जाती है, किसी पर क्या गुजर जाती है सावन के महीने में। अब ये खालिस गजल है साहब
1: जी, जी, जी।
0: किसी पर क्या गुजर जाती है सावन के महीने में, घटा रुदात अश्कों के वसीले से सुनाती है। किसी पर क्या गुजर जाती है
1: सावन के महीने में
0: घटा रुदात अश्कों के वसीले से सुनाती है, सवेरा सा नजर आता है हर जानिब मेरे घर में, सवेरा सा नजर आता है हर जानिब मेरे घर में, ये तुम आए हो या कोई किरण सूरज की आती है।
1: बहुत सुंदर, बहुत खूब।
0: ये तुम आते हो या कोई किरण सूरज की आती है, जवानी पर उठी हो लाख ऊंची ऊंची दीवारें, जवानी पर उठी हो लाख ऊंची ऊंची दीवारें, मगर पादेब की झनकार कोसों दूर जाती है। जवानी पर उठी हो लाख ऊंची ऊंची दीवारें, मगर पादेब की झनकार कोसों दूर जाती है, कभी यारों को मैंने आजमाइश में नहीं डाला, इसे खास तौर पर कभी यारों को मैंने आजमाइश में नहीं डाला, अगरचे वक्त पड़ने पर नजर अपनों पे जाती है। कभी यारों को मैंने आजमाइश में नहीं डाला, अगरचे वक्त पड़ने पर नजर अपनों पे जाती है, और मोहब्बत से गुरेजा और हम ऐ होश नुमानी, मोहब्बत तो हमें आदाब जीने के सिखाती है।
1: बेशक आप यूं ही जीने के आदाब सिखाते रहें, हम यही दुआ करेंगे, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत, तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जिंदगी के आईने में। कार्यक्रम धरोहर अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन कार्यक्रम सुनने वालों को एमन तंजील का नमस्कार। श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं जब आप अपनी शब्दावली भेजते हैं और हम आपको सुनवाते हैं उस शब्दावली पर आधारित फिल्मी नगमे। शामिल कैसे होना है, बहुत से श्रोताओं को ये बात पता है, लेकिन कुछ श्रोता जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आपको बस पत्र मिला airrampur@gmail.com पर अपने शब्दावली भेजना है, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने अल्फाज और उस पर आधारित गीत फिर आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज की पहली शब्दावली हमारे पास है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान की। लिखते हैं कि दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे मुस्कुरा कर जिया करो, अपनों के संग बैठकर खुशियों के जाम पिया करो, वक्त तो गुजर जाएगा अपनी रफ्तार से, बस हर पल में अपनी मिठास भर दिया करो, आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दो तो जिंदगी में खुशियां तलाश करना आसान हो जाएगा, दुनिया में जीने के लिए मुस्कुराओ क्योंकि दुनिया हंसने वालों को पसंद करती है और उतरे हुए चेहरों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, हकीकत में रिश्ते नाते ही सब कुछ होते हैं, अगर ये रिश्ते टूट जाते हैं तो जिंदगी का मजा ही नहीं रहता है, गम और खुशी का एहसास ही खत्म हो जाता है, इसलिए अपनों के लिए वक्त निकाला करो, अपनों के साथ बैठा करो, कुछ अपनी कहो तो कुछ उनकी सुनो।

वन भवन, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला पत्र हमारे पास है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। लिखते हैं, इंसानों से सीख लो अंदाज जीने का, इंसानियत ही सच्चा धर्म है इंसान का। एक सच्चे इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उनका धर्म और ईमान होता है, और फिर सच्चाई के साथ जीने वाले ही इंसानियत के प्रतीक होते हैं, और इंसानियत इंसानों से ही सीखे जाती है। और जब तक इंसान के दिल में इंसानियत नहीं है, इंसान होने के नाते हम दर्दी नहीं हैं, तो फिर क्या ही फायदा है। इसलिए इंसान का जरूरी है इंसान रहकर जीना।

कार्यक्रम मन भावन इस वक्त आप सभी सुन रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हमें पत्र कैसे भेजना है, तो जल्दी अपने पत्र भेजिए और कार्यक्रम में शामिल होइए। आइए अब कार्यक्रम का अगला पत्र हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। नींद भी कितनी अजीब होती है, जब ये आती है तो सब कुछ भुला देती है और जब ये नहीं आती है तो सब कुछ याद दिला देती है। वो बातें भी याद दिला देती है जिसको हम भूल चुके होते। नींद ना आने पर सारी रात करवटें बदलने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। सारी रात जगने पर सेहत खराब होने का अंदेशा लगा रहता है। डॉक्टरों की माने तो 8 घंटा हर शख्स को नींद लेना ज़रूरी होता है। नींद की हालत में जो ख्वाब आते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। सपने हर इंसान को देखना चाहिए। नींद की हालत में हो या खुली आंखों से, हर सपने को पूरा करने की कोशिश करनी भी चाहिए। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद इंसान रात को बिस्तर पकड़ता है तो सारी दुनियादारी भूल कर दुनिया से बेखबर हो जाता है। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। हमने पूछा कितना प्यार करते हो हमें, आपकी कसम मर जाएंगे आपके खातिर, ये जवाब उनका था।

तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय राठौर, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका राठौर, शिवाय राठौर लिखते हैं कि मत करो किसी से प्यार जिसे तुम पा न सको, मत करो कोई वादा जिसे निभा न सको। प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, क्योंकि जनाब प्यार का पहला शब्द ही अधूरा होता है।

मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी लिखते हैं कि दोस्तों, अगर हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। अब तो साहब यही कहेंगे, जो लोग ये सब कर रहे हैं वो तबाह हो रहे हैं, और तो और हमें ये आज से ही ख़त्म कर देना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो हम अपने घर परिवार को भी देख सकेंगे, इसलिए आने वाली संतान का भी ख्याल रख सकेंगे। हमारा मानना यह है कि तंबाकू गुटखा ना खाएं, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। आपको ये जो जीवन मिला है, इसको खुशी के साथ जीने का, सेहत के साथ जीने का आपका अधिकार है, इसलिए अपने जीवन में इस तरह की चीज़ें करके, इस तरह की चीज़ों का सेवन करके जीवन को दुखियारा ना बनाएं।

वाली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन

करना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडबरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए कुछ जरूरी संदेश।

0: 90.
1: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
2: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
3: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
2: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
1: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
2: जागिए और जगाइए,
3: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए,
1: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
2: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
5: लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
1: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
6: मम्मी मम्मी, कहाँ हो? जरा एक ग्लास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
7: अभी लाई।
8: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे, और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूं इस बचे हुए पानी का?
6: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
8: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
9: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम सुनने वालों को एमन तंजील का नमस्कार। श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, ईमेल के जरिए आप हमें अपनी फरमाइश भेजते हैं और हम आपको गीत सुनवाते हैं। आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला फरमाइशी फिल्मी नगमा हमारे किन साथियों ने सुनना चाहा है। गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम चांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और मोहम्मद मुना। राज पैलेस मवनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। कोरासी बैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू और इनके सभी साथी। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। आप सबकी फरमाइश पर पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है। सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले इमरान अहमद और काप साहड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परवीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद और समस्त फूल वाले परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। आप सभी श्रोताओं से हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार अपना ईमेल भेज दिया करें तो कृपया करके उसके बाद बार बार मत भेजा करें। हमने कुछ श्रोताओं के नाम नहीं पढ़े जो हमें बार बार एक ही ईमेल भेजते हैं, उससे हमें कार्यक्रम के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, दूसरे श्रोताओं के नाम छूट जाते हैं और पढ़ने में भी टाइम लगता है क्योंकि स्क्रीन पर जब बैक टू बैक 18-20 ईमेल सिर्फ एक ही नाम के होते हैं तो अब जो भी श्रोता एक बार से ज़्यादा अपना ईमेल भेजेंगे हम उनके नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। ये वार्निंग।

हमने आपको पहले भी दी थी, लेकिन वही श्रोता दोबारा से हमें उसी तरीके से नाम भेज रहे हैं तो हम उनको शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश के लिए। हमारे पास जो श्रोताओं के नाम हैं वो हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह। पिप्रिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और इनके सभी साथी। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और इनके सभी साथी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पागल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह और राजपाल पंकज। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और इनके सभी साथी। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

गीत आपके नाम कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। लालकुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकी नाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय राठौर, विकास राठौर, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया, रूमा, बॉबी, शमा और इनके सभी साथी। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और इनके परिवार के समस्त सदस्य। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण, राजकुमार और आशीष। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, संदीप सक्सेना, मदिया खान, सुभान खान और फिरोज खान। जिलमबगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। बरेली कैंट चनेटी से रागिनी और मुस्कान। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या और अनु गोस्वामी। आप सबकी फरमाइश पर पेश है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत।

गीत आपके नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अभी आप गीत सुन रहे थे आयशा भोसले मुबारक बेगम और साथियों की आवाज़ों में। फरमाइशें थीं आप सभी की। कड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। जय विहार नजफगढ़ से शाहरुख, फारूख, शबनम और शहनाज। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकाल फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी और हिना कौसर। गणेशपुर गंज डुनवारा एटा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सबकी फरमाइश पर अभी आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फरमाइश है आप सभी की। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और इनके सभी साथी। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल। मोहम्मद सईद नाम से हमारे पास एक फरमाइश आई है लेकिन इन्होंने अपना पता ईमेल में मेंशन नहीं किया है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। डुमराव बिहार से अस्मा परवीन, दुखना रानी, सदफ आरजू और फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफसरी मोगा और अहमद। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता आरती, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

गीत आपके नाम कार्यक्रम में अगला गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हुसैन रजा, साथ में गौसिया फातिमा। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निसा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन और इनके सभी साथी। ज़िला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुरेश चौहान और अनाबिया सिद्दीकी। गांव उगाला ज़िला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी फरमाइश पर ये पेश है आशा भोसले और भूपिंदर की आवाज़ों में ये नगमा।

और अब आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख, फलक फातिमा और बेबी अलिशबा शेख, गंज रुनवारा से मोहम्मद कलीम और बॉबी खान, मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम, अब्दुल सलाम और उमर खेड़ से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान, बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली और अस्मा वली, सदब सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार पुराना। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एक बजने वाला है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको हम बताएंगे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं से कुछ ही देर में यानी कि आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिवार जगत। इसमें हम आपको सुनवाएंगे चर्चा जीवन में पर्यटन विषय पर। वार्ता आप सुनेंगे आधुनिक जीवन शैली में पारिवारिक संघर्ष को सुलझाना विषय पर। वार्ताकार होंगी संगीता चौरसिया। इसके अलावा आप कुछ क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और हेल्थ टिप्स भी सुन पाएंगे। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आप तक पहुंचेगा आज शाम 6:20 पर। कानून और हम ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7:00। सुगम संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 पर। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर अंकिता और द्विता अग्निहोत्री की आवाजों में कुछ गजलें। साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे मैं और मेरी कलम विषय पर कविता अरोड़ा से असीम सक्सेना की बातचीत। मेघावृत शास्त्री का काव्य पाठ आप तक पहुंचेगा। साथ ही कहानी कैनवास आप सुन सकेंगे अंजलि वर्मा से। रात 10:00 आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। श्रोताओं ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब सुनते हैं जरूरी संदेश।
4: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह। अनजान

0: सेटिंग्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
3: चलो,
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को, तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी ट्रिपल एस सी 2024 के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर सिलेक्टेड 932 उम्मीदवारों को तकर्री लेटर तकसीम किए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्री लेटर तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ रियासत को मुख्तलिफ हलकों में आगे बढ़ाने में रियासत के होनहार नौजवानों ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में आज रियासत मुल्क के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है।
1: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: हुकूमत ने कहा है कि मगरबी एशिया तनाजों की वजह से दरामदाद में रुकावट के बावजूद मुल्क की तेल रिफाइनरी फैक्ट्री मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के पास खाम तेल का वाफिर जखीरा है। मगरबी एशिया में हाल के हादसात पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का वाफिर जखीरा है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: दरियसना हुकूमत ने YouTube के उन वीडियो की तरदीद की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 दिनों के तेल का जखीरा बचा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट जांच यूनिट ने दावा को खारिज करते हुए बताया है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिनों के खाम तेल का जखीरा है। दरियसना उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की फराहमी पूरी तरह मामूल पर है। अवामी जुमरे की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वाजे किया है कि रियासत में ईंधन वाफिर मकदार में है और किसी भी तरह की घबराहट या ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक जानकारी सिर्फ सरकारी जराए से ही हासिल करें। जेठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर दारुल हुकूमत लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का इनेकाद हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की जानिब से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारे मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर आज आकाशवाणी लखनऊ में भी बजरंग बली की पूजा के साथ भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ शाम तक प्रसाद तकसीम किया जाएगा। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से 22 मई तक रियासत के बेशतर इजला में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इजला में दर्ज हरारत 47 डिग्री के पार जाने के इम्कान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को पूरी तरह अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान मरकजी वजारत आयुष ने शदीद गर्मी और लू के हालात से निपटने के लिए आवामी सेहत मशावरात जारी किया है।
3: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: دریاسنا محکمہ موسمیات نے آج سے چار دنوں کے دوران ریاست کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کی جبکہ کم سے کم درجہ حرارت میں 2 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آگرہ، اوریا، بلیا، باندہ، بھدوئی، چترکوٹ، اٹاوا، فتح پور، فیروز آباد، غازی پور، حمیرپور، جالون، جونپور، جھانسی، کانپور دیہات، کانپور شہر، کوشامبی، مہوبہ، پرتاپ گڑھ، پریاگ راج، رائے بریلی اور وارانسی کے کئی مقامات پر ہیٹ ویو سے لے کر شدید ہیٹ ویو چلنے کے امکان کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
4: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ 1:15 ہوئے ہیں۔ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

0: परिवार जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से और हमारी साथी की ओर से प्यारा सा नमस्कार और प्रणाम।
1: श्रोताओं, समय कितनी जल्दी निकलता है। आधा साल होने को है, मई का महीना भी खत्म होने को है। देखते ही देखते गर्मियों की छुट्टियां भी आ गई, क्यों सुनीता दीदी?
0: बिल्कुल सही कहा। और भाई प्रेरणा, देखिए जब मैं आ रही थी सुबह तो इतनी तेज़ गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अभी से 10 बजे इतनी तेज़ लू थी, तो लू से बचाव करना बेहद ज़रूरी है धूप से, क्योंकि भाई सेहत है तो सब कुछ है। और जब गर्मी की छुट्टियां हैं तो घूमने भी जाना है, इसलिए सेहत को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो अब समय कितनी जल्दी निकल जाता है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मई का महीना भी ख़त्म होने लगा है और देखते ही देखते गर्मियों की छुट्टियां भी आ गई हैं।
1: और सुनीता दी, मैं आपको बताऊं, मैंने तो अप्रैल से घूमने जाने का प्लान बना रखा है। कब से इंतज़ार कर रही हूँ इन छुट्टियों का।
0: हाँ भाई, कभी काम की व्यस्तता तो कभी बच्चों की पढ़ाई, लेकिन अब तो मेरा मन भी बस यही कर रहा है कि कहीं घूमने निकल चलो। और मुझे एक शेर याद आ रहा है प्रेरणा, आप कहें तो सुनाओ।
1: जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ।
0: जी, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसीलिए देखिए छुट्टियां हैं तो छुट्टियों का लुत्फ़ उठाइए और थोड़ा सा बाहर निकल के घूमना फिरना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी यात्रा केवल घूमना फिरना ही नहीं होती, बल्कि यह मन को सुकून देने और नई चीज़ें सीखने का भी अवसर देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है, जीवन में पर्यटन।
1: तो आइए शुरू करते हैं आज की रोचक चर्चा।
0: पर्यटन यानी नई जगहों की यात्रा करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्यटन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है?

0: प्रेरणा।
1: जी हाँ, पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह हमारे ज्ञान, अनुभव और सोच को भी बढ़ाता है। जब हम नई जगहों पर जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, खान पान, भाषा और रहन सहन को करीब से समझते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। और साथ ही रोज़मर्रा की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव भरी जिंदगी है, थोड़ा सा समय निकालकर यात्रा करने से मन और शरीर दोनों में ताजगी मिलती है। तो थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालें और अपने परिवार के साथ घूमने जरूर जाएं।
1: बिल्कुल, परिवार के साथ यात्रा करने से रिश्तों में भी अपनापन बढ़ता है। बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलता है।
0: और अगर हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों तक सब कुछ मौजूद है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र, कहीं जंगल, तो कहीं भव्य मंदिर हैं और पुराने समय के राजा महाराजाओं के किले हैं, जो कि बहुत ही दर्शनीय हैं और हमें अपने इतिहास का पता चलता है।
1: सही कहा, पर्यटन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार।
0: बिल्कुल, लेकिन यात्रा करते समय हम कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना।
1: मैं तो यही कहूंगी, जिम्मेदार पर्यटक वही होता है जो केवल यादें लेकर आए और गंदगी पीछे छोड़कर ना जाए।
0: बहुत सुंदर बात कही है प्रेरणा आपने। और सचमुच पर्यटन जीवन में नई ऊर्जा, नया अनुभव और नई खुशियाँ लेकर आता है। और ये सब चीज़ें हमारे लिए इतनी अच्छी हैं, फायदेमंद हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि पर्यटक जगहों पर कूड़ा कचरा ना फैलाएं और वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखें, और खुद तो कूड़ा कचरा ना फैलाएं और साथ ही अगर हम देख रहे हैं कोई कूड़ा कचरा फैला रहा है तो उसको टोकें और साफ सुथरा रखें।
1: जी, तो इन छुट्टियों में आप भी थोड़ा समय अपने परिवार और अपने लिए निकालिए, नई जगहों को देखिए, जीवन को नए नज़रिए से समझिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की ये जो भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन शैली है, इसमें हमें समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से परिवारों के बीच दूरियां और छोटे छोटे मतभेद भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल प्रेरणा, इसीलिए ऐसे में ज़रूरी हो गया है कि हम अपने रिश्तों को समझें, एक दूसरे से बात करें और पारिवारिक संघर्षों को प्रेम व समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें।
1: इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझाने के लिए हम आप सभी को सुनवाते हैं संगीता चौरसिया की यह वार्ता, आधुनिक जीवन शैली में पारिवारिक संघर्ष को सुलझाना। तो चलिए सुनते हैं।
2: परिवार जगत के श्रोताओं को मेरा संगीता चौरसिया का नमस्कार। आज मैं आप सभी को आधुनिक जीवन शैली में पारिवारिक संघर्ष को सुलझाना विषय पर विस्तार से बताने जा रही हूँ। आधुनिक जीवन शैली की भाग दौड़, काम का अत्यधिक दबाव और डिजिटल दुनिया में व्यस्तता के कारण आज परिवार में कलह और संघर्ष एक आम समस्या बन गई है। पारंपरिक संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं व स्व के टकराव ने रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। इस संदर्भ में आधुनिक जीवन शैली में पारिवारिक संघर्ष को सुलझाना एक अत्यंत प्रासंगिक विषय है। इसे हल करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आधुनिक जीवन शैली का क्या अर्थ है? व्यस्त जीवन शैली भी इसे कहा जा सकता है। यह पैसा कमाने, पेशेवर और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने, परिवार पालने, दोस्तों से संपर्क बनाए रखने, घर चलाने और कभी कभी आराम करने से भरी हो सकती है। यही कारण है कि बहुत से पुरुषों और महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अक्सर उपेक्षित रह जाता है। वास्तव में उनके स्वस्थ ना रहने के दो प्रमुख कारण हैं, समय की कमी और अपने स्वास्थ्य को कम महत्व देना। कई परिवारों को तनावपूर्ण जीवन जीना पड़ता है, खासकर जब बात कैरियर और परिवार को संभालने की हो। लेकिन स्वास्थ्य ना केवल उनके लिए बल्कि व्यापक समाज और अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। गतिहीन जीवन शैली, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दीर्घकालीन तनाव और अपर्याप्त नींद आम हो गए हैं। ये कारक जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की बढ़ती लहर में योगदान करते हैं। ऐसी स्थितियां कई मामलों में रोकी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। रोकथाम और उपचार रणनीतियों के लिए इन्हें समझना आवश्यक है। आधुनिक जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं। उन्नत तकनीक मानव जीवन को सुविधाजनक बनाती हैं। सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से अप्रिय परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, आधी रात तक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का उपयोग नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं और नींद को बाधित कर सकते हैं। सेल फोन के उपयोग की लत अवसाद के लक्षणों से जुड़ी है। लत एक अस्वास्थ्यकर जीवन शैली माना जाता है। धूम्रपान और अन्य पदार्थों के उपयोग से विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। अनेक प्रकार के रोग जैसे अस्थमा, कैंसर, मस्तिष्क की चोट, यह सब मादक द्रव्यों का सेवन का ही परिणाम है। परिवार में कलह की संभावना तब कहीं अधिक बढ़ जाती है जब परिवार के सदस्य अपनी जरूरतों, अपेक्षाओं या इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। भूमिका आधारित मुद्दे तब उत्पन्न हो सकते हैं जब परिवार के हर सदस्य इस बात पर असहमत हो कि उन्हें परिवार में कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। किशोरों और उनके माता पिता के बीच होने वाले आम संघर्ष आयु संबंधी पारिवारिक समस्या का एक उदाहरण है। इनको हल करने के लिए जो उपाय अपनाए जा सकते हैं, उनमें सर्वप्रथम प्रभावी संवाद कम्युनिकेशन है। मतलब गलत फहमियों को दूर करने के लिए आमने सामने बैठकर बात करना सबसे अच्छा तरीका है। खुलकर बात करें, केवल अपनी बात ना कहें बल्कि दूसरे सदस्यों के दृष्टिकोण भी ध्यान से सुने। सप्ताह में एक दिन निश्चित समय पर बैठक फैमिली मीटिंग करें, जहां खुलकर मसलों पर चर्चा करें। समय का प्रबंधन और क्वालिटी टाइम। परिवार के साथ होते समय फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। कम से कम एक समय का भोजन परिवार के साथ जरूर करें। वीकेंड पर छोटी यात्रा या सैर पर जाएं, जिससे यादें बने और आप तनाव मुक्त बन सकें। स्वकार्यता और लचीलापन। दूसरों का नजरिया समझें। यह स्वीकार करें कि हर व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं। हर बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, बल्कि समझौता करने की प्रवृत्ति अपनाएं। वर्तमान के विवाद में पुरानी बातों को ना लाएं। झगड़ों का बढ़ाने के स्थान पर एकता का भाव रखें। आपसी सम्मान और समझदारी सभी के बीच होनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन और निर्णय का सम्मान करें, एक दूसरे से छोटे छोटे प्रयासों की भी सराहना करें। यदि संघर्ष बहुत गहरा हो जाए और सुलझ ही ना रहा हो तो पारिवारिक काउंसलर या थेरेपी की मदद लेना बेहतर होता है। संघर्षों से पूरी तरह बचा जा सकता है। धैर्य, समझ और सम्मान से उन्हें हल किया जा सकता है। परिवार के साथ समय बिताना, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ पल अपनों के नाम करना ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। संघर्ष को सुलझाने के लिए परिवार के सदस्य मानसिक रूप से त्रस्त महसूस करें तो खुलकर और शांति से बात करना ही समाधान की शुरुआत है। यदि परिवार को खुश रखना है तो अहंकार की आरी से रिश्तों को कटने से बचाएं। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। संघर्ष होना सामान्य है, लेकिन उसे आपसी संवाद, माफी और समझदारी से सुलझाना ही बुद्धिमानी है। रिश्तों में पारदर्शिता और भावात्मक जुड़ाव को फिर से जीवंत करें आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हर मनुष्य अपने कार्य में व्यस्त है, लेकिन फिर भी अगर सभी लोग आपस में मिलकर किसी भी समस्या को सुलझाना चाहें तो आपसी संवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तव में धैर्य, संवाद, सम्मान और सहयोग से ही पारिवारिक संघर्षों को दूर किया जा सकता है। हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए और रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। सुखी परिवार ही सुखी समाज की नींव है। अगर हम अपने समाज को उन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत एक सुखी परिवार से ही करनी पड़ेगी। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में परिवार का बहुत अधिक महत्व है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए इन सभी तरीकों को अपनाकर हम एक खुशी परिवार बना सकते हैं। धन्यवाद।
0: आधुनिक जीवन शैली में पारिवारिक संघर्ष को सुलझाना, ये था विषय वार्ता का और वार्ताकार थी संगीता चौरसिया। श्रोताओं, इस वार्ता से हमने जाना कि पारिवारिक संघर्षों को समझना और उन्हें सुलझाना आज के समय की बहुत ही आवश्यकता हो गई है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि परिवार में कोई चीज़ है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो परिवार के सदस्य मिलकर उसको अगर सुलझा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। क्यों प्रेरणा
1: जी? बिल्कुल, क्योंकि जब परिवार में आपसी समझ और प्रेम होता है तभी घर में सुख शांति होती है।
0: जी बिल्कुल, और इसी सुख शांति को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छोटा और सुव्यवस्थित परिवार।
1: और यही विषय है हमारे आज के 6 संकलित कार्यक्रम का, छोटा परिवार सुख का आधार। तो इस विषय पर बात करेंगी हमारी साथी सुनीता सिंह नुजहत नावेद से। आइए सुनते हैं ये 6 संकलित भेंट वार्ता।
3: श्रोताओं, कहावत है कि छोटा परिवार सुख का आधार होता है। अगर परिवार में 2 बच्चे हों तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा, परवरिश और जो घर में जो आर्थिक रूप से परेशानियां हैं वो भी सब दूर हो जाती हैं। तो छोटा परिवार हमारे आर्थिक रूप से संपन्न होने में मदद करता है। तो ये क्यों जरूरी है, हमने इस विषय पर बातचीत की क्षेत्र में जाकर। तो सबसे पहले

0: पूछते हैं आपसे आपका नाम, आप अपना नाम बताएं।
1: नुसरत नादिर
0: जी। नुसरत
1: जी। नुसरत
0: जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप क्या करती हैं पहले हमें ये बताएं।
1: मैं जो हूँ टीचर हूँ
0: जी,
1: और उसके साथ साथ मेरा अपना अपना जो है ब्यूटी मेकओवर आर्टिस्ट हूँ
0: जी,
1: प्लस घर में हाउसवाइफ सारे काम भी करती हूँ
0: जी जी। और आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं?
1: मैरिड हैं।
0: अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके?
1: मेरे बच्चे 3 हैं
0: जी, यानी कि आपका छोटा परिवार है
1: जी।
0: तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आपके 3 बच्चे हैं और आप एक्स्ट्रा भी काम करती हैं और टीचर भी हैं आप और बहुत सारे और भी अलग से वर्क करती हैं, परिवार की आर्थिक रूप से मदद करती हैं, तो
1: जी।
0: आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी होगी, है ना?
1: जी जी
0: तो आपके नजरिए से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या छोटा परिवार सुखी है?
1: अगर हम बच्चों को अपने तरीके से, अगर हमारी माली हालत ठीक है और सब कुछ है, तो हमारा यह है कि बच्चों को अच्छी से तालीम दे सकते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी तरीके से हर तरीके से, मतलब बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जायज, उनको पूरा कर सकते हैं। और हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं विदाउट प्लानिंग ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो हमारी उससे सॉल्व हो जाती हैं। मतलब अगर हम प्लानिंग से कोई भी काम करते हैं एक्स वाई जेड, इसके अलावा भी हमारा प्लान से जो भी काम होता है वो हमारा बहुत सफल रहता है उस हिसाब से।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ा परिवार जो होता है वो किस स्थिति से परिवार के लिए हानिकारक होता है या क्या उसकी हानि होती है? परिवार में कौन सी परेशानियां बढ़ जाती हैं? मान लीजिए घर में 4-5 बच्चे हैं तो वो किस तरह से परिवार प्रोग्रेस करेगा या फिर?
1: देखिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले बात करी कि प्लानिंग के हिसाब से सही रहता है। अगर आपके अच्छे हालात हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा एक वक्त आपके पास पैसा है, तो वो तो बच्चे अच्छे तरीके से, मतलब उनकी पालन पोषण और हर तरीके से अच्छे तरीके से हो जाता है। ये तो है, जितनी चीज बढ़ती है हमारे पास बड़ी होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बच्चों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है, और छोटी होती है तो छोटी। तो ये हमारी अपनी आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है। और फिर जो है ऊपर वाला हमारा जो है, हमारी इंटेंशन अगर अच्छी है और हमारा हर काम मतलब जायज तरीके से हो रहा है, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से तो उसने तो वादा करा है कि अपने रिस्क तो देता है ऊपर वाला बच्चों को। ऐसा नहीं है, उसने वादा करा है कि मैंने सारे बच्चों को जितने भी दुनिया में पैदा किए हैं उनका रिस्क का भी वादा किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी अपनी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी ख्वाहिशात है ना जितनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे पहले भी फैमिली में बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन उनका जो था इतना रुझान आज के दौर में जो आज प्रोग्रेस कर रही है, उस हिसाब से हमारी पीढ़ी को ज्यादा परेशानियां ये आ रही है कि फैमिली प्लानिंग ही लोगों को इस वजह से करना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी ख्वाहिश है अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, उस हिसाब से थोड़ा दिक्कतें आती हैं अगर फैमिली बड़ी होती है। लेकिन जो है हाँ, और जो जितनी बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, वो तो देखिए पूरी होती हैं, बड़ी फैमिली में भी पूरी होती हैं। बस यही है कि हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं उसके हिसाब से हमारे वो पूरी नहीं हो पाती हैं बड़ी फैमिली में। और छोटी फैमिली में यह है कि अच्छे तरीके से अच्छा खान पान, बच्चे की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका जीवन यापन करने के लिए, तो ये अपने ऊपर जब वो होता है बच्चे का, वो सारी फिलफिल हो जाती हैं। तो इस हिसाब से थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, बड़ी फैमिली होती है तो उसमें यह है कि दिक्कतें तो आएंगी, तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बस वही है कि मेरे हिसाब से कि अगर छोटी फैमिली है तो अपने हम अपनी फैमिली को अच्छे से जो है पूरी कर देते हैं। जो हमारी नीड्स इतनी हो गई है ना, जरूरत समाज की इतनी ज्यादा, तो हमें अपने बच्चे को ये होता है कि पीछे ना रह जाए हमारा बच्चा, जो क्योंकि हमें अपडेट रहना है अपने जीवन में, तो इस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से फिर वही आपकी बात जो जैसे आप कह रही है, छोटा परिवार सुखी परिवार
0: जी।
1: हाँ, और बड़ी परिवार में मतलब ये जरा दिक्कतें होती हैं
0: जी जी जी। मुझे जी, मेरा ये मानना है कि अगर परिवार बड़ा है और कमाने वाला उस घर में मुखिया केवल एक है तो थोड़ी दिक्कतें तो होती है, और अगर मुखिया कमा रहा है परिवार में 2 बच्चे हैं तो वो जो आजकल की महंगाई है उसमें अच्छे से मैनेज कर सकता है।
1: जी जी, हमें अपडेट रहने की वजह से, जो हमारे समाज में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो हमारी जरूरतें हैं, तो वो छोटे परिवार में इजीली पूरी हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं, उनको अच्छी तरबियत दे सकते हैं जिंदगी गुजारने के लिए, उनका अपना लाइफ कैरियर बन सकता है।
0: जी निजत, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं समाज को यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अच्छा है कि मतलब आप अगर अच्छी आपकी अपनी जॉब है

0: या है, तो उस हिसाब से अपनी फैमिली में जो है उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है उसके हिसाब से, क्योंकि प्लानिंग तो हर चीज की जरूरी है। तो इसकी भी यही है कि आपके अगर आपके साथ परेशानियां आए, बढ़ने के लिए चांसेस हैं आगे कि आपका बड़ा परिवार होगा तो परेशानी होगी, क्योंकि आपकी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। छोटा परिवार जिसे कहा जाएगा कि सुखी परिवार है, आप अपने बच्चे की इस हिसाब से अच्छी तालीम भी दे सकते हैं, फैमिली प्लानिंग करके उनकी सारी जो जायज रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी कर सकते हैं। तो छोटा परिवार सुखी परिवार ही होता है।
1: जी बिल्कुल, आपसे बात करने के लिए है और आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, समाज को भी आपने संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये था क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता, विषय था छोटा परिवार सुख का आधार, और हमसे बात कर रही थी नुजहत नावेद। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपको ये भेंटवार्ता ज़रूर पसंद आई होगी। और देखिए, जब परिवार छोटा होता है प्रेरणा, तभी जो है सुख उसी में होता है। अगर बड़ा परिवार होगा तो हर तरफ से आर्थिक तंगी और ना ही उनकी जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकते, ज़्यादा बच्चों में ना ही शिक्षा दीक्षा। तो छोटा परिवार जो होता है वो हर मायने में अच्छा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि परिवार संयुक्त रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बारे में बिल्कुल हमारी श्रोताओं से आप क्या कहेंगी और आगे अब क्या सुनवाना है?
3: मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या आज श्रोताओं से बातें ही होती रहेंगी या गीत संगीत भी होगा?
2: अरे बिल्कुल, गीत संगीत होगा, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

सुबह से मुझको खाना भी तो

श्रोताओं, छोटा परिवार न केवल बच्चों के बेहतर पालन पोषण में सहायक होता है, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त

0: समय, शिक्षा और सुविधाएं भी मिल पाती हैं।
1: बिल्कुल श्वेता, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई आज का हमारा जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम का विषय है वो है छोटा परिवार सुख का आधार। तो इसी अंक में हम आपको एक और भेंटवार्ता सुनवाने जा रहे हैं, जहां हमारी साथी प्रेरणा गुप्ता बात करेंगी राजीव शर्मा से। तो आइए सुनते हैं ये क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
2: हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
3: नमस्कार।
2: राजीव जी, छोटा परिवार सुख का आधार आपकी राय में क्या है?
3: प्रेरणा जी, छोटे परिवार का अर्थ होता है सीमित सदस्य और नियोजित जीवन। जब परिवार छोटा होता है तो माता पिता बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और समय दे पाते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है।
2: राजीव जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज के समय में छोटा परिवार क्यों जरूरी हो गया है?
3: प्रेरणा जी, आज महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जरूरतें बढ़ गई हैं। छोटे परिवार में संसाधनों का सही उपयोग होता है और जीवन अधिक संतुलित व तनाव मुक्त रहता है।
2: क्या छोटा परिवार पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाता है?
3: हाँ, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाता है छोटा परिवार, क्योंकि आपसी समझ, प्रेम और संवाद बेहतर होते हैं। हर सदस्य एक दूसरे को समझ पाता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं।
2: छोटा परिवार अपनाने से आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है?
3: छोटे परिवार में खर्च सीमित रहता है, आमदनी और जरूरतों में संतुलन बना रहता है, जिससे बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित रहता है।
2: तो इस हिसाब से छोटा परिवार बच्चों के भविष्य और महिलाओं दोनों के लिए लाभदायक हुआ।
3: जी बिल्कुल, छोटे परिवार में बच्चों का माता पिता का पूरा ध्यान मिलता है, इससे उनका मानसिक शारीरिक विकास बेहतर हो जाता है। इसी तरह छोटा परिवार महिलाओं के स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत लाभदायक है। इससे उन्हें अपना कैरियर, स्वास्थ्य और परिवार के लिए संतुलित समय मिल जाता है।
2: क्या छोटा परिवार समाज के विकास में सहायक है? और अगर है तो कैसे?
3: प्रेरणा जी, जब परिवार छोटा होता है तो जनसंख्या नियंत्रित रहती है, इससे संसाधनों का दबाव कम होता है और समाज का उचित विकास संभव हो पाता है। समाज के विकास के साथ साथ छोटा परिवार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सहायक है।
2: आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जनसंख्या नियंत्रण से पानी, भोजन और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। राजीव जी, एक बात बताइए, जब छोटा परिवार अपनाने के इतने सारे लाभ हैं, तो फिर परिवार नियोजन को लेकर लोगों में झिझक क्यों होती है?
3: कभी कभी जानकारी की कमी और सामाजिक दबाव के कारण लोग झिझकते हैं। सही जानकारी और जागरूकता से इस झिझक को दूर किया जा सकता है।
2: लोगों में छोटे परिवार के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है?
3: रेडियो, टीवी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों और सामाजिक अभियानों के माध्यम से लोगों को इसके लाभ समझाकर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
2: श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे राजीव जी?
3: प्रेरणा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, छोटा परिवार अपनाएं, सुखी और सुरक्षित भविष्य बनाएं। सीमित परिवार में ही खुशहाल जीवन का नींव रखी जाती।
2: बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। आपने छोटा परिवार सुख का आधार जैसे उपयोगी विषय पर जो जानकारी दी, उसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये था क्षेत्र संकलित कार्यक्रम छोटा परिवार सुख का आधार, जहां हम बात कर रहे थे राजीव शर्मा से। और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की।
1: बिल्कुल प्रेरणा, और देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए दांतों का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। और मजबूत और साफ दांत न केवल हमारी मुस्कान को सुंदर बनाते, बल्कि भोजन को सही तरीके से चबाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने श्रोताओं को कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में, जिसका विषय है दांतों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स। और तो हम बात कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें, खासकर रात में।
1: और अधिक मीठी चीज़ें खाने से बचें, क्योंकि ज़्यादा शक्कर दांतों में सड़न पैदा करती है। और ख़ास तौर पर प्रेरणा, रात को मीठा खाने से ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि और अधिकतर हो सके तो मतलब हम लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि रात में ब्रश करने से जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वो जल्दी से नहीं पनपते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं।
0: जी, और भोजन के बाद कुल्ला करने की आदत जरूर डालें।
1: बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ों को लगातार

0: हमेशा दांतों को साफ सुथरा रखें। अगर कोई समस्या है तो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं और समय समय पर अपनी दांत जो है वो डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, ताकि जो दांत है हमारे समय लंबे समय तक हमारे साथ रहें और उनकी सुंदरता बरकरार रहे। तो अब प्रेरणा बात कर लें पत्रों की।
1: जी
0: बिल्कुल, तो ये प्यारा सा जो खूबसूरत पत्र हमारे सामने है, वो उसको लिखकर भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं जो हमें पत्र लिखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। वो हैं थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां PWD वाले और शाहिदा परवीन उर्फ शिबा, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना भी, आशिफा और शबीना। इन्हें 12 मई का जो परिवार जगत प्रोग्राम की प्रस्तुति थी बहुत ही अच्छी लगी पूरे परिवार को, और ये प्रस्तुति जो थी वो आयशा अनबार और प्रेरणा गुप्ता जी की थी। और कार्यक्रम पसंद करने के लिए और हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से, बहुत मतलब इतनी बारीकी से हमारे श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम को कि वो हर छोटी छोटी चीज़ जो हमारे कार्यक्रम में प्रसारित होती है उसको विस्तार से लिखते हैं। तो इतनी शिद्दत के साथ सुनने के लिए इन आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद हम देते हैं, और हम यही आशा करेंगे कि आप आगे भी हमारे प्रोग्राम को ऐसे ही सुनते रहिए और हमें पत्र लिखते रहिएगा।
1: अपने श्रोताओं को एक बार पता और बता दिया जाए।
0: बिल्कुल, तो क्योंकि हमारे और भी श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमें पत्र लिख सकते हैं, तो उठाइए कागज़ कलम और लिखिए हमारे प्रोग्राम का पता। कार्यक्रम है परिवार जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड नंबर है 2449-01। एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम का पता नोट कीजिए, कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड नंबर है 2449-01। तो सभी श्रोता हमें पत्र लिखें और हम आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार करेंगे, और भी हमें श्रोता पत्र लिखें और हम उनके पत्रों को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे।
1: सुनीता दी, अब हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का समय भी नज़दीक आ रहा है, तो क्यों ना जाने से पहले अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत और सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं प्यारा सा। और आप बात कर रही थी ना कि पर्यटन की, घूमने की,
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक प्यारा सा गीत है जो वही वहां में सैर करा देगा दुनिया की, तो हम सुने प्यारा सा गीत
1: बिल्कुल
0: और अपने श्रोताओं को भी सुनवाएं। आइए सुनते हैं
1: प्यारा सा गीत।

0: दुनिया की सैर कर लो, इंसा के दोस्त बनकर इंसा से प्यार कर लो। इसी गीत के साथ अपनी रेडियो साथी प्रेरणा गुप्ता को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नई उमंगों के साथ। नमस्कार।
1: और साथ ही अपने साथी सुनीता सिंह को भी अनुमति दीजिए और अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो श्रोताओं विदा दीजिए, नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: The Nordic Summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defense and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson in a joint newspaper article stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय

0: प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
5: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
6: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सन 1970 के कुछ फिल्मी नगमे। आइए पहला गीत सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश व साथियों को। फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। इस वक्त आप सुन रहे हैं सुनहरा दौर कार्यक्रम। हम आपको सुनवा रहे हैं 1970 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। आइए कार्यक्रम का अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म शोर से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे सीता और गीता फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार को। आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म है आन मिलो सजना।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। इसमें हम आपको सुनवा रहे थे 1970 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 3 बजे हैं मीडियम वेव पर। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
0: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
1: ख्याल रखने वाला
0: जी।
1: है ना। विषय बता दे।
0: चलिए
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है।
0: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे। वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे।
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं। है ना?
1: सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
0: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: उसको कचोटते रहता है
0: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है। लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोबरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर की बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डटकर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये

0: स्टेटमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
0: योग्यता है।
1: योग्यता है उसकी भी जरूरत, एक एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है, फिर वो मन में जो आपका जुनून जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती है तो वो शक्ति जो है, मातृशक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हाँ हाँ हाँ क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने
0: जब
1: भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के मुंह से।
0: वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना? तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपने संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना।
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल। और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है
0: हाँ
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आंख का तारा कहते हैं, और हर माँ की आंख का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारों की आंख का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए।
1: जी
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है।
1: क्या
0: तो
1: बात।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का
1: तारा
0: तारा है, क्यों
1: है।
0: नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है, इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख कर भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ की आंख के तारे होते, फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
1: मिलती
0: कितनी
1: है
0: मिलती
1: नहीं।
0: है ना।
1: जी।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो हम
0: सही
1: तो
0: कहा।
1: जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो।
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई। हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो
0: कुछ
1: जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है, अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं ना,
0: हाँ
1: कि
0: बिल्कुल
1: अरे माँ तो
0: ऐसे।
1: हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के
0: बिल्कुल।
1: कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और
1: कभी
0: जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर

0: वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है,
1: और
0: या
1: अगर
0: यूं
1: माँ ना हो इस दुनिया में तब तो
0: हाँ
1: और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछतावा हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें, आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।

0: श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोध से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश है, कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझ करके नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी
1: बिल्कुल
0: एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई, देखो दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: मिताली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी हम अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी ने किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरे घर के मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे तो मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया।
0: अच्छा।
1: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल
1: पर
0: जाता
1: ऐसा
0: है।
1: होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो अपराध
0: बिल्कुल,
1: बोध।
0: लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहां भी
1: वो
0: काम आई है।
1: आपका तारा होते हैं ना बच्चे
0: हाँ इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना यह हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपया बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक यह सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर दो नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया, है
0: बिल्कुल सही कहा।
1: ना
0: और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का, ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा, और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी, तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी,
1: और तो अब गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है, दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी, खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना
1: देना ही
0: ही पड़ेगा
1: पड़ेगा।
0: और हमें भी आपको ये गिफ्ट देना होगा।

0: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक
1: बिल्कुल
0: साथी लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
1: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
0: एक गाना सुन के
1: चलो।

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
2: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो, जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
2: जी, जी।
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
2: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
2: जी,
1: अच्छा
2: जी।
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
2: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यों थी, उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
2: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इन्वाइट किया, एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
1: वाह वाह वाह, भाई ऐसा
2: कहां
1: है,
2: कहां से कहां ये बात, देखिए
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां। लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
2: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा। और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
2: सुनाइए।
3: दिल लेके जाते हो कहाँ,

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई,
1: जी
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहां तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया कि
1: जी
0: इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी जी
0: है, तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे। हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
0: इंस्टेंट फूड की तरह।
1: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी हाँ,
1: हाँ
0: इतना पेशेंस रखते
1: जी
0: थे लोग,
1: जी जी
0: और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें
1: और जो
0: किसी गाने
1: इंग्लिश में
0: को।
1: कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था,
0: क्या बात है।
1: जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल। हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहां म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने
1: जी
0: के
1: जी
0: बारे में बताया है।
1: जी कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी। जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए, इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं
1: और
0: और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रही हैं आप?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी,
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि
0: सुना।
1: नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाकया हो तो
1: नहीं,
0: बताइए।
1: क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते हैं, मजा आएगा, मैं कोकिला बन बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट, सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है,
0: और आपकी ये दोस्ती उतनी ही
1: अभी भी
0: कम है?
1: कायम है।
0: अच्छा,
1: जी हाँ
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
1: बिल्कुल
0: फील्ड के
1: बिल्कुल,
0: लोग हैं?
1: वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी, कहते हैं ना, मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूं कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है,
1: जी
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो
1: जी
0: हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो

0: मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: जी हाँ, फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतूर रंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इसे
1: अच्छा,
0: इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है,
0: जी
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी रुक दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा
0: अच्छा लगा।
1: और बहुत, देखिए ऐसा है कि
0: चलो,
1: मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे, वो कानों में
0: बहुत बहुत
1: रस
0: शुक्रिया।
1: हमेशा घोलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है, एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका
1: जी
0: मकसद पूरा होता है।
1: जी
0: और ये आना चाहिए, तभी
1: जी
0: जाके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
0: अच्छा,
1: थी?
0: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रॉ आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी।
1: जी
0: तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मूरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था, वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए। तो
1: जी
0: कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप, रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी, वो
1: अच्छा।
0: भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद
1: जी
0: गाने बजाता है
1: जी
0: ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे,
0: पूछिए।
1: लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे, हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम
0: जी
1: बात करें,
0: जी
1: मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस
0: सबके
1: किस्म
0: मन,
1: की
0: सबके
1: चीज
0: दिल
1: हुआ
0: में ये
1: करती
0: बात
1: थी।
0: होती है।
1: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?

0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं
1: अच्छा,
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते हैं ना टॉप पे रहा काफी दिनों
1: जी
0: तक। और यही नहीं, जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी।
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो
0: जी
1: आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में
0: थे,
1: रेडियो पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना करते
1: जी
0: थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और

0: मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये
1: मौका
0: पॉपुलैरिटी दी।
1: दिए।
0: हाँ,
1: जी
0: तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
1: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
0: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
1: पछतावा तो नहीं होता ना?
0: बिल्कुल नहीं,
1: तो
0: बिल्कुल नहीं।
1: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे
0: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
1: आप? अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं,
0: जी,
1: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
0: मैं बैठ तो नहीं सकती। जरूर, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं। और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
1: वाह, तो कैसा काम चल रहा है ये वाला?
0: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा
0: हाँ,
1: आपको?
0: आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी। और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी, आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं। अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे। और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब
1: सुनाइए।
0: ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे। और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया, सुनिए।

0: कमल बारूर जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं,
1: जी
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं, और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारी हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, और नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी इसी वजह से मैं जहां भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई।
0: वाह,
1: और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो बहुत
1: अच्छी
0: ही
1: बात
0: अच्छी
1: है ना।
0: बात है।
1: और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहां मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना, और बोल है आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूद जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी

0: में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं उसमें से एक कमल जी है, मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते, बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे
1: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का,
0: जी।
1: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की।
0: जी
1: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है, और क्या अभी भी आप इसमें
0: तीस
1: लगे हैं?
0: पैंतीस साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
1: अच्छा,
0: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहां पेश करते थे।
1: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही
0: तो
1: हैं,
0: बड़ी अच्छी बात कही
1: और इंडियन म्यूजिक को,
0: आपने
1: इंडियन आर्ट को,
0: कोशिश
1: फिल्मों
0: तो
1: से।
0: रही है
1: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
0: जी। मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
1: अच्छा, तो कैसे रिस्पांस रहता है लोगों का?
0: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज यू नो।
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूं कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हर एक
0: जी
1: की
0: जी
1: जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो, तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में, उसमें और आगे जा सके।
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहां रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते हैं ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहां तुम्हारी खुशी वहां मेरी खुशी।
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया,
0: जी
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन-कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ, और
1: अच्छा,
0: बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं, तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूँ मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूँ या खुद गाऊँ, अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहाँ मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
0: जी
1: तो वहां कौन सी जगह जहां आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊं कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग तहिती बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहां का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला एलपी म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो एलपी का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सन ने

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में,
1: ढेर सारे
0: तो
1: मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन
0: अच्छा
1: मिला जरूर है मुझे। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुसलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली, और वो भी एक किस्म का वो प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हो?
1: जी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूँ।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था, और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया, और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है, वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्युलॉइड

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आज शाम की सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। साथियों, जिंदगी में हम ना जाने कितने ही लोगों से मिलते हैं। कुछ के तो हमें चेहरे और नाम तक याद नहीं रहते, वहीं कुछ लोग अपने व्यक्तित्व और व्यवहार के चलते हमारे दिल में उतर जाते हैं। बार बार उनसे मिलने को हम उत्साहित रहते हैं। कभी कभी ये लोग दोस्त तो कभी प्यार बनकर हमारी जिंदगी में बहार ले आते हैं। पर सच तो यही है कि कोई भी मौसम हो हमेशा नहीं रहता। जीवन में आने वाला अच्छा बुरा वक्त हमें अपनों की पहचान करा देता है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ चलते हैं, पर जो बुरे वक्त में सहारा दे सही मायनों में वही हमारा अपना है। यही वक्त हमें अपने और परायों की पहचान कराता है, ठीक एक आईने की तरह। कई बार बुरा वक्त हमें इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तकलीफ उस वक्त साथ छोड़कर जाने वाले लोग दे देते हैं। ऐसे में एक तरफ हमारा खुद पर से भरोसा ही उठ जाता है, तो दूसरी तरफ हमारी नजर उस अपने का इंतजार करती है कि शायद वो लौट कर आ जाए। दिल बेकरार होकर बस उसी को पुकारता है।

जब इंतजार के लम्हे कभी न खत्म होने वाले सिलसिले में बदल जाते हैं, तो एक लम्हा, एक वक्त वो भी आता है कि जब दिल को ना किसी की आरजू रहती है और ना इंतजार, दिल पुराने रास्तों को भूलकर नई मंजिलें तलाश करने लगता है। हजारों ख्वाहिशें रही मगर मजबूर ना रहा, बादलों में था घरौंदा पर जमी से दूर ना रहा, जरूरत और चाहत का भेद जानता था दिल, किसी को अपना बना लेने का फितूर ना रहा।

जहन में तेरी यादों के सिवा कुछ भी नहीं, दिल में गुजरी बातों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जहां भी रहो सदा मुस्कुराते रहो, मेरे लब पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। इन्हीं जज्बातों के साथ आज शाम से रेणु तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 5:15 में है। अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जिसे लेके हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी नव्या अग्रवाल
1: और मैं स्वास्तिक मिश्रा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमेशा की तरह इंतजार कर रहे होंगे अपने फेवरेट प्रोग्राम का। तो आइए रोज की तरह आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ।
0: साथियों, हमारा आज का सवाल है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था?
1: सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है?
0: साथियों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे इसके जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
1: वैसे नव्या, आजकल खेल खेलते समय एक चीज़ बहुत नोटिस होती है। पहले लोग खेलों को एंजॉय करने के लिए खेलते थे, लेकिन अब कई बार ऐसा लगता है कि किसी भी हालत में जीतना ही सबसे बड़ा गोल है, चाहे उसके लिए लड़ाइयाँ हों, चीटिंग हो या फिर दूसरों को इल्ज़ाम देना पड़े।
0: और शायद इसी वजह से वर्ल्ड फेयर प्ले डे इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि खेलों की असली खूबसूरती सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि सही और ईमानदार तरीके से खेलने में होती है।
1: मतलब फेयर प्ले का सीधा मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि खेल के दौरान अपने बिहेवियर को भी सही रखना है।
0: बिल्कुल स्वास्तिक, फेयर प्ले में ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और स्पोर्ट्समैनशिप जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। यानी अगर सामने वाला अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ करना, हारने पर अननेसेसरी एक्सक्यूजेज ना बनाना और जीतने पर दूसरों को छोटा महसूस ना कराना।
1: सच बताऊं तो आजकल ऑनलाइन गेम्स में तो लोग छोटी सी हार के बाद ही इतना सीरियस हो जाते हैं कि पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। कभी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो कभी लोग चीटिंग करने लगते हैं।
0: हाँ, जबकि असली खिलाड़ी वही माना जाता है जो प्रेशर में भी अपना एटीट्यूड सही रखे, क्योंकि किसी का करैक्टर इस बात से ज़्यादा दिखता है कि वो हार और जीत को कैसे हैंडल करता है।
1: मतलब फेयर प्ले सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हमारी नॉर्मल लाइफ में भी उतना ही जरूरी है।
0: एग्जैक्टली सौस्तिक, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या फिर रोजमर्रा की छोटी छोटी सिचुएशंस, हर जगह फेयरनेस और ऑनेस्टी लोगों के बीच ट्रस्ट बनाती है। इस वजह से फेयर प्ले सिर्फ एक स्पोर्ट टर्म नहीं बल्कि एक अच्छी हैबिट भी है।
1: वैसे अगर हर कोई सिर्फ ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ खेलना शुरू कर दे तो शायद गेम्स का मजा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाए।
0: और यही इस दिन का सबसे बड़ा मैसेज है कि अच्छा खिलाड़ी वही नहीं है जो सिर्फ जीत जाए बल्कि वो है जो अपने व्यवहार से दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बना दे।
1: दोस्तों, अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। अब साथियों, शुरू करते हैं हमारा दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों, कुछ खास है आज। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी दोस्तों, आज जयंती है नीलम संजीव रेड्डी जी की, एक ऐसे राजनेता जो अपनी सादगी, शांत स्वभाव और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते थे।
1: नीलम संजीव रेड्डी का राजनीतिक जीवन काफी लंबे समय तक सक्रिय रहा। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और अलग अलग पदों पर काम करते हुए प्रशासनिक अनुभव हासिल किया।
0: वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संसदीय कार्यवाही को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का प्रयास किया।
1: उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण तब आया जब वे भारत के राष्ट्रपति बने। वे देश के छठे राष्ट्रपति थे और विशेष बात यह है कि वो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति माने जाते हैं। ये उस समय उनके प्रति राजनीतिक सहमति और विश्वास का भी दर्शाता है।
0: नीलम संजीव रेड्डी की पहचान केवल एक राजनेता के रूप में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी थी जो सार्वजनिक जीवन में सादगी और अनुशासन को महत्व देते थे। उनकी कार्यशैली में संवाद, संतुलन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान साफ दिखाई देता था।
1: उनकी विरासत हमें ये समझाती है कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से भी चलता है जो इसे मजबूत बनाते हैं और जिम्मेदारी और संतुलन के साथ उन संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं।
0: आज उनकी जयंती के दिन उन्हें याद करना केवल एक पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस परंपरा को भी समझना है जो संवाद, अनुभव और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है।
1: दोस्तों, इसी के साथ आज जयंती है नाना साहेब पेशवा जी की। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: नाना साहेब पेशवा का संबंध मराठा साम्राज्य के पेशवा परंपरा से था। वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इसी वजह से उनका राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व भी काफी बड़ा माना जाता है।
1: 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है और कानपुर में हुए आंदोलन में नाना साहिब की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नियतियों के कारण असंतोष लगातार बढ़ रहा था और इसी माहौल में कई क्षेत्रों में विरोध शुरू हुए।
0: नाना साहिब ने इस संघर्ष में नेतृत्व की भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित विरोध का हिस्सा बने। उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाना भी था।
1: उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाएं आज भी इतिहासकारों के बीच में चर्चा का विषय है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वे 1857 के आंदोलन के प्रमुख चर्चों में शामिल थे। उनका नाम उन लोगों में लिया जाता है जिन्होंने उस दौर में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।
0: नाना साहेब पेशवा की विरासत हमें यह समझाती है कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के प्रयासों से जुड़ी एक लंबी प्रक्रिया थी। आज उनकी जयंती के दिन उन्हें याद करना केवल इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि उस संघर्ष और साहस को समझना भी है जिसने आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया।
1: और दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की, एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने उनकी नेचुरल एक्टिंग और अलग तरह से किरदार के लिए जाना जाता है।
0: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यात्रा आसान नहीं थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना अपने आप में एक लंबा संघर्ष था। उन्होंने शुरुआती दौर में छोटे छोटे रोल किए जहाँ कई बार उनका नाम तक लोगों को याद नहीं रहता था,
1: लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी जल्दी सफलता पाने की कोशिश नहीं की। वो अपने अभिनय को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देते रहे और इसी वजह से धीरे धीरे उनके काम से उनकी पहचान बनने लगी।
0: फिल्में जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स और मंटो ने उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में स्थापित किया जो किरदार को बहुत वास्तविक और गहराई से निभाने के लिए जाने जाते थे।
1: उनकी अभिनय शैली की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे अपने किरदार को ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के बजाय उसे स्वाभाविक रखने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि उनके

0: किरदारों में दर्शकों को वास्तविकता और रिलेटेबल महसूस होते हैं।
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि लगातार मेहनत, धैर्य और अपने काम पर भरोसा लंबे समय में बड़ी पहचान बना सकता है। उन्होंने यह दिखाया कि सिनेमा में सफलता केवल बड़े नाम या बैकग्राउंड से नहीं बल्कि प्रतिभा और डेडिकेशन से भी हासिल की जा सकती है।
0: आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें केवल एक अभिनेता के रूप में याद नहीं करना चाहिए बल्कि उस संघर्ष और मेहनत को समझना भी महत्वपूर्ण है जिसे उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे अलग और प्रभावशाली कलाकारों में शामिल किया।

0: मुझे लगता है आज का ये दिन जगदम बाई के नगमे के साथ ही पूरा होगा। क्या बोलते हैं आप लोग?
1: अब क्या

0: दोस्तों कुछ खास है आज, मैं आज बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: साथियों अभी आपने सुना कुछ खास है आज। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट भारत के गलियारे से की ओर, जिसमें हमारा पहला सब सेगमेंट है इमारतें बोलती हैं।

0: दोस्तों, मैं हूं गोलकोंडा किला, दक्कन की उस धरती का प्रहरी जिसने साम्राज्यों का उत्थान, युद्धों की गर्जना और हीरों की चमक सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरा जन्म आज के गोलकोंडा फोर्ट में हुआ, लगभग 13वीं शताब्दी में, जब काकतीय राजाओं ने मेरी नींव रखी। उस समय मैं केवल मिट्टी का एक साधारण दुर्ग था, पर समय ने मुझे पत्थरों का वो योद्धा बना दिया जिसे दुनिया आज गोलकोंडा के नाम से जानती है। मेरी दीवारों ने कई राजवंशों को आते जाते देखा, लेकिन मेरी असली पहचान तब बनी जब कुतुबशाही सुल्तानों ने मुझे अपना गौरव बनाया। उन्होंने मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरी विशाल प्राचीरें, मेरे भव्य द्वार, मेरी मस्जिदें और मेरे महल सब उसी युग की कहानी कहते हैं। मैं केवल एक किला नहीं बल्कि शक्ति, कला और वैभव का जीवित प्रतीक था। कभी मेरी गोद में दुनिया के सबसे अनमोल हीरे जन्म लेते थे। कोहिनूर, होप डायमंड और दरियाए नूर जैसे प्रसिद्ध रत्नों की चमक मेरी ही मिट्टी से जुड़ी है। मेरी पहचान सिर्फ युद्धों से नहीं बल्कि उस दौलत से भी है जिसने दुनिया की निगाहें दक्कन की ओर मोड़ दी थीं। मेरी बनावट अपने आप में चमत्कार है। मेरी ऊंचाई पर बने बाला हिसार तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वहां से पूरा शहर दिखाई देता है, मानो समय स्वयं नीचे बह रहा हो। मेरी दीवारें इतनी मजबूत बनाई गईं कि दुश्मनों के लिए मुझे जीतना आसान नहीं था। पर मेरी सबसे अद्भुत विशेषता है मेरी आवाज। मेरे मुख्य द्वार फतेह दरवाजा पर यदि कोई ताली बजाए तो उसकी गूंज मेरे सबसे ऊंचे भाग तक सुनाई देती है। यह केवल वास्तुकला नहीं बल्कि उस युग की बुद्धिमता का प्रमाण है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के मेरे निर्माताओं ने ध्वनि के संदेशवाहक बना दिया था। मैंने युद्धों की आग भी देखी। 1687 में जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने मुझ पर आक्रमण किया, तब मैंने महीनों तक संघर्ष किया। मेरी दीवारों ने तलवारों की चोटें और तोपों की गरजना सहन करी, पर अंततः विश्वासघात ने मेरे द्वार खोल दिया। उस दिन मैं हार गया, लेकिन मेरी आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। आज भी जब सूर्य की किरणें मेरी पत्थर की दीवारों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने गौरवशाली अतीत को फिर से जी रहा हूं। शाम होते ही मेरे आंगन में होने वाला लाइट एंड साउंड शो मेरी कहानी को फिर जीवंत कर देता है, मानो इतिहास खुद अपनी आवाज में बोल रहा हो। मैं गोलकोंडा हूं, शक्ति, वैभव और स्थापत्य कला का प्रतीक। मैं यह याद दिलाता हूं कि पत्थर केवल इमारतें नहीं बनाते, वे सभ्यताओं की स्मृतियां भी समझोते हैं। मैं सिर्फ एक किला नहीं बल्कि दक्कन के गौरव का जीवित इतिहास हूं। जो भी मेरे प्राचीरों के भीतर कदम रखता है वह केवल खंडहर नहीं देखता, वह उस युग की महत्वाकांक्षा, संघर्ष और वैभव को महसूस करता है। मैं गोलकोंडा हूं, समय की धूल में भी अडिग इतिहास की गूंज बनकर आज भी खड़ा हूं।
1: साथियों, इमारतें बोलती हैं, मैं बस इतना ही।

0: अगर आप किसी ऐसे शहर की तलाश में हैं जहाँ प्रकृति सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा हो, तो हम आपको गुवाहाटी जाने की सलाह देंगे। ये सिर्फ असम का सबसे बड़ा शहर नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत का वे द्वार है जहाँ से एक अलग दुनिया की शुरुआत होती है। ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल किनारों पर बसा ये शहर मानो पहाड़ों, बादलों और संस्कृति के बीच सांस लेता है, शांत भी, रहस्यमय भी और हर पल जीवंत भी।
1: गुवाहाटी की सुबह किसी साधारण शहर जैसी नहीं होती। यहाँ सूरज धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के पानी पर अपनी रोशनी बिखेरता है और नदी का शांत बहाव पूरे वातावरण को एक अलग ही सुकून से भर देता है। घाटों के पास चाय बेचते लोग, मंदिर से आती घंटियों की आवाज और सड़क किनारे खुलती छोटी दुकानों की हलचल, ऐसा लगता है जैसे शहर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी है जो बड़े शहरों की भागदौड़ में कहीं खो चुकी है।
0: अगर इस शहर की आत्मा को महसूस करना हो तो कामाख्या मंदिर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीलांचली पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही परंपराओं और रहस्यों का प्रतीक भी है। मंदिर तक पहुंचने वाली घुमावदार सड़कें, रास्तों में दिखते हुए साधु संत और ऊपर पहुंचकर दिखाई देता पूरा गुवाहाटी, ये अनुभव सिर्फ धार्मिक नहीं भावनात्मक भी बन जाता है। ऊपर से बहती ब्रह्मपुत्र को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे शहर और नदी का रिश्ता सदियों पुराना हो।
1: लेकिन गुवाहाटी सिर्फ मंदिरों और इतिहास तक ही सीमित नहीं है, यह शहर लगातार बदल भी रहा है। नई सड़कें, चमकते कैफे।

0: व्यस्त बाजार और युवाओं से भरी यूनिवर्सिटीज यह दिखाती हैं कि गुवाहाटी अब सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता आधुनिक शहर भी है। फिर भी यहाँ की सबसे खास बात यह है कि आधुनिकता के बीच भी इसकी पहचान कहीं खोई नहीं है।
1: फैंसी बाजार की गलियों में घूमते हुए आपको इस शहर की असली धड़कन महसूस होगी। यहाँ दुकानों की भीड़, मोलभाव करते हुए लोग और सड़क किनारे मिलते स्थानीय व्यंजन शहर को अलग ऊर्जा देते हैं। शाम के समय जब बाजार रोशन होता है तब लगता है कि पूरा इलाका उसकी उत्सव से
0: अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए तो उमानंद द्वीप की ओर निकल जाइए। ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच स्थित यह छोटा सा द्वीप शहर के शोर से बिल्कुल अलग महसूस होता है। नाव से वहां तक का सफर अपने आप में खास है। चारों तरफ फैली नदी, दूर दिखाई देती पहाड़ियां और ऊपर खुला आसमान। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय धीरे चलने लगा हो। गुवाहाटी की खूबसूरती सिर्फ उसकी जगहों में नहीं बल्कि उसके मौसम में भी छिपी है। बारिश के दिनों में यह शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। पहाड़ियों पर उतरते बादल, पेड़ों पर गिरती बूंदें और मिट्टी की भीनी खुशबू पूरे वातावरण को किसी फिल्मी दृश्य जैसा बना देती है। शायद यही वजह है कि आने वाले लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि एहसास लेकर लौटते हैं।
1: और फिर आता है यहाँ का स्वाद, आसामी थाली, तिलांगी मछली और बांस की खुशबू वाले पारंपरिक व्यंजन, पिट्ठा और शाम की गर्म चाय। यहाँ का खाना बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं होता लेकिन उसमें घर जैसा अपनापन होता है। गुवाहाटी में खाने सिर्फ स्वाद नहीं होता, ये आपको यहाँ की संस्कृति से जोड़ता है।
0: त्योहारों के दौरान यह शहर और भी रंगों से भर जाता है। बिहू के समय ढोल की गूंज, पारंपरिक नृत्य, रंग बिरंगे कपड़े और लोगों के चेहरों पर दिखाई देती खुशी, यह सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। यहाँ त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं।
1: गुवाहाटी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह शहर आपको जिंदगी धीरे जीना सिखाता है। यहाँ की ब्रह्मपुत्र की तरह जीवन में भी जल्दबाजी नहीं ली जाती है।
0: यह शहर अपने अतीत को साथ लेकर आगे बढ़ता है बिना शोर किए, बिना अपनी पहचान खोए। और शायद इसी वजह से जब आप गुवाहाटी से लौटेंगे तो आपके पास सिर्फ तस्वीरें नहीं होंगी, आपके भीतर इस शहर की शांति, इसकी हवा, इसकी आवाजें और इसकी यादें हमेशा के लिए रह जाएंगी।

0: और दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे अगले पड़ाव का। तो चलिए जानते हैं आज के सवाल का सही जवाब। हमारा आज का सवाल था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था?
1: और इस सवाल का सही जवाब है अप्सरा रिएक्टर। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी।
0: पुंजाजी नवकार, दिनेश वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, प्रकाश निषाद बालू, अशोक सिंह, राष्ट्रपाल गजभिय, सुदर्शन शाह, मोहम्मद रफीक पनवार, राणा तलत, अजीत कसाना, रामकुमार रेवार, दिग्दर्शन गौर, नवी हसन अब्बासी, लालगिरी गोस्वामी, तुलसी मस्कीन, नजमल होदा, जगदीश धाकड़, निसाल सलमानी, बी कमल, महबूब दुकानदार, देवशंकर तैमूरिया, बी आई धाकड़, अभिजीत गवांकर, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, विजय सिंह महोबिया, विनोद मुनात, धीरज भाई रबारी, सुरेश जायसवाल, गजानन येले, राधेश्याम पांडे, हीरामणि वर्मा, सुनील पाठक, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, विजय सुरालकर, रवि कुमार राहुल, मोहम्मद अफसल ताज, राजवीर सिंह यादव, इरशाद अहमद, आकाश रस्तोगी, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद सैयद अब्बासी, गुरमीत सिंह मीता, जाकिर मंसूरी, आमिर हुसैन, हाजी गफ्फार खान, शाहजी बोडके, शहरून नूर अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, फागुराम यादव,

0: तो दोस्तों, आज के युववाणी प्रोग्राम में बस इतना ही। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा।
1: आप हमें बता सकते हैं हमारे पते पर। हमारा पता नोट कर लीजिएगा साथियों, पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। हमारा ईमेल एक बार फिर सुन लीजिए, patramila@rampur.gmail.com।
1: आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी बता सकते हैं साथियों। हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर है 9410087876। हमारा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए साथियों,
0: 9410087876। और अब इसी वादे के साथ कि कल शाम रोज की तरह फिर से आपसे मुलाकात होगी, अब दीजिए स्वास्तिक
1: और नव्य को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। आप सभी को हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

अभी वसाती सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का। ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।

0: सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आप सुनिए सूचना खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संभल जनपद संभल से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी नूरी उर्फ सुखी पुत्री अकरम निवासी मोहल्ला बूढ़ा सराय तरीन थाना हयात नगर जनपद संभल विगत 9 मई से लापता है। नूरी की आयु 13 वर्ष कद 4 फीट 5 इंच इकहरा पतला शरीर रंगोरा चेहरा लंबा और आंखें काली हैं। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इनके विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें। दूरभाष संख्या है 9359301741। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल चाहता है।

दिल चाहता है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत। आवाजें हैं शंकर महादेवन, अलका याग्निक और साथियों की। फिल्म का नाम है कुछ ना कहो।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 6:20 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है किसान साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को आपकी बहन ममता
1: और आपके भैया हरदेव की
0: राम, राम राम। हमें उम्मीद है कि सभी भैया बहन अच्छी तरह से होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ खेती को जो स्वास्थ्य है उसकी भी ध्यान रख रहे होंगे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने ममता बहन। हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को खेती बाड़ी को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारे खेत इस समय देखी जाए जो जुते भी पड़े हैं, कुछ खेतन में गन्ना है कि गन्ना की फसल है ना, और कुछ खेत खाली पड़े हैं, तो खाली पड़े हुए खेतन की जानकारी लेना बहुत जरूरी है इस समय।
0: बिल्कुल हरदेव भैया, क्योंकि खाली खेत में इस समय जो बात करी जाए मृदा की जांच की, तो वो बहुत जरूरी है। इससे पता चल जाता है कि हमारी मृदा में मौजूद जो पोषक तत्व है उनकी स्थिति कैसी है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, जैसे हमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, बाकी बढ़ाने के ताई हमें कौन कौन सी जो है उपाय करना चाहिए, और उन्हीं पोषक तत्व को जो है उचित मात्रा में हमें उपयोग करने पड़ता है आगे चल के, और उसकी उर्वरा क्षमता हमें बढ़ानी पड़ती है अगर हमें सही जानकारी हुई अपनी मिट्टी की। तो
0: बिल्कुल हरदेव भैया, उर्वरा क्षमता बढ़ जाता है हमारी भूमि की जब हम मिट्टी की जांच करवा लेते हैं, सही पोषक तत्व को उसमें डालते हैं। और हरदेव भैया एक बात और खास चाह है कि कम लागत आता है, पैदावार भी अच्छी मिलते हैं, जिससे कि हमारी भूमि है उसको स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। और जब सेहत अच्छी है तो हरदेव भैया बात का है कि उत्पादन भी अधिक मिलता है।
1: बिल्कुल सही बात कही ममता बहन आपने। बात करें हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो भैया बहनों जिस तरह से हम अपने बच्चन को टीकाकरण को कार्ड आप देखते होंगे बनवातेंगे और उसमें सब जानकारी जो है दी जाते हैं, देखी हुई आपने, बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी हमारे घर का बनातेंगे है ना, कितने समय में किस उम्र में कौन सा टीका हमें लगना चाहिए और किस तरह की बीमारी से हमें बचाव जो है करना चाहिए, ये सब जानकारी होतेंगी।
0: और तो हरदेव भैया देखी जाए जो ये हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है तो बच्चा के कार्ड की समान है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात,
0: क्योंकि जब हमारी खेती है उस तरह से हम उसकी देखभाल करेंगे, उसके सब पोषक तत्व उनकी जांच होगी, तो हमें जो उर्वरक है उनको कम डालने पड़ेगा और उससे पैदावार अच्छी मिलेगी। और बहनों भैया बहनों जो आप जल्दी से हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवाएं, जिससे आपको खेती से अधिक आय की प्राप्ति होगी और कम लागत आएगी और आपकी जो भूमि की उर्वरा क्षमता है वह बरकरार रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने ममता बहन। जैसे हमारे किसान भाई बहन अपने बच्चन को स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं, वैसे ही हमें अपनी मिट्टी की जो है हमारे खेतन की मिट्टी है खेत है उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेना चाहिए, ताकि समय समय पर मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिलता रहे और कम रासायनिक खाद को प्रयोग करके जो है अच्छी लागत यानी कि कम लागत लगा के और अच्छी पैदावार मिले।
0: बिल्कुल भैया, तो भैया बहनों आज हमारे कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता है जिसको विषय है संतुलित उर्वरक प्रबंधन एवं रासायनिक उर्वरकों के विकल्प। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह और आपसे जानकारी जुटा रहे हैं हमारे भैया विक्रांत चौधरी। तो भैया बहनों सुन लेते हैं जा भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों हम सभी देखते हैं कि अपनी फसल में अच्छी से अच्छी पैदावार हो उसके लिए जरूरी है कि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाए। चूंकि जितना अधिक हम रासायनिक विकल्पों की ओर बढ़ेंगे उतनी अधिक लागत होगी और साथ साथ असंतुलन भी इससे हमारी कृषि में हो सकता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती। लेकिन अगर हम उर्वरकों को सही मात्रा में प्रयोग करें, जांच करें मिट्टी की, और भी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ रोल है उर्वरकों का और किस प्रकार से विकल्प ढूंढा जा सकता है जो रासायनिक तत्व हम खेतों में खेती के दौरान प्रयोग में लाते हैं उनका, इसी विषय पर एक विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच स्टूडियोज में हैं केवी के धमोरा रामपुर से डॉक्टर नरेंद्र गंगवार जी। डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: डॉक्टर साहब सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं उर्वरक हैं जो खेती किसानी में उपयोग में लाए जाते हैं।
3: देखिए तत्वों की बात करें तो पौधों के लिए

0: कम से कम 17 ऐसे पोषक तत्व तो होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से हमारे जो किसान भाई खेत में देते हैं उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर, जिंक, इनको अप्लाई करते हैं और कभी कभी कुछ सूक्ष्म तत्वों को भी वो डालते हैं। बाकी तत्व भूमि से, जल से स्वयं पौधों को प्राप्त होते हैं। लेकिन बात है संतुलित उर्वरक प्रबंधन की, तो संतुलित का अर्थ ही होता है कि हम खेत में पोषक तत्वों का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि पौधों की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो आवश्यकता भी पूरी हो जाए
1: जी,
0: और मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे, उसकी संरचना ठीक बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें विदेशी चीज़ों से जो एक्सपोर्ट हमें मिल रहा है उन पर हमें कंट्रोल करना है। ऐसे में हम देखते हैं कि खेती किसानी में उपयोग होने वाले फर्टिलाइजर्स पर बहुत अधिक हमारी निर्भरता विदेशों से आने वाले सामान पर भी है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में एक विकल्प ये भी खोजा जा रहा है कि कम से कम ऐसी चीज़ों पर निर्भरता हमारी घटे जो सीधे सीधे विदेशी एक्सपोर्ट पर आधारित है। खेती किसानी में जाहिर है कि फर्टिलाइजर्स में ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों से प्राप्त होती हैं, आप फील्ड में भी अनुभव कर रहे होंगे, तो आप कैसे देखते हैं कि इन फर्टिलाइजर्स को, इन उर्वरकों को किस प्रकार से जो हमारे देशी माध्यम हैं या ऐसे कुछ विकल्प हैं जिनको लेकर कार्य किए जा सकते हैं, किसानों को बताया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है। एक तो विकल्प की जहां तक बात है तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मन मर्जी से उर्वरकों का प्रयोग ना करें
1: जी।
0: और ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही अनुकूल है कि आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा लें, तो मिट्टी की जांच करा करके आपको ये पता चलेगा कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा में आवश्यकता है
1: जी,
0: कितना आपको देना है। और ये निर्धारण जब हो जाएगा तो आपकी जो डोज है जो आप मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो नियंत्रित हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हमारे फास्फोरस धारी उर्वरक हैं जिनका आपने जैसे अभी जिक्र भी किया कि बाहर से हमको मंगाने पड़ते हैं, तो फास्फोरस धारी जो उर्वरक हैं चाहे वो DAP हो या NPK हो, ये जो उर्वरक हैं इनकी निर्भरता हमारी दूसरे देशों पर रहती है, तो ये महंगे भी होते हैं
1: जी।
0: तो दो चीज़ें हो गई, एक तो महंगे भी हैं और दूसरे पर निर्भरता है हमारी, और तीसरा इनका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस आपकी ज्यादा मात्रा में आप दे रहे हैं तो उससे उत्पादन की लागत भी आपकी बढ़ रही है
1: जी,
0: दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ रही है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो विकल्प हैं वो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है
1: जी,
0: कि आप इस समय पे अपने खेतों में ढैचा की बुवाई कर लें, सनई की बुवाई कर लें, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी बनी रहेगी और पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी, मिट्टी की संरचना भी ठीक रहेगी, और जो मिट्टी के जो दूसरे गुण हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण जिनको हम लोग कहते हैं वो भी ठीक होते हैं। क्योंकि जो जैविक गुण हैं वो तभी अच्छे होते हैं जब मिट्टी के अंदर जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। तो जब ढेंचा आप खेत में हरी खाद के रूप में मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, जब ये सड़ता है तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल पैदा होते हैं, वो जो अम्ल बनते हैं वो जो ऐसे उर्वरक जैसे मैंने फास्फोरस की भी जो बात की है, फास्फोरस धारी जो उर्वरक हैं उनको उस रूप में बदलने में भी सहयोग करते हैं जिसमें पौधा ग्रहण करता है, तो एक तो ये भी फायदा है। तो इसलिए रासायनिक उर्वरकों का विकल्प के रूप में किसान भाई इस समय ढैंचा की फसल जरूर रोएं
1: जी,
0: एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे हमारे जैव उर्वरक हैं,
1: बायो फर्टिलाइजर
0: जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा एटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, ग्लूकोन एसिटोबैक्टर है, राइजोबियम कल्चर है, इन सब के प्रयोग को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ साथ में जो जैविक हमारे खाद हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट है, इनका प्रयोग भी बढ़ाने की आवश्यकता है
1: जी।
0: तो इनका प्रयोग भी किसान भाई करेंगे, जैसे जैव उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, हरी खाद का प्रयोग करेंगे और साथ साथ में आप सही समय पर आप खाद का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी डोज सही मात्रा में खेत में जाएगी जिससे आपकी लागत भी घटेगी और साथ साथ में जो मिट्टी की संरचना खराब हो रही है वो नहीं होगी और हमारी जो निर्भरता जिसको आपने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भर हैं वो निर्भरता भी हमारी कम होगी
1: जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि NPK का और जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनका ध्यान तो किसान भाई रखते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं पहचानने में और उनकी कमी पूरी करने में वो चूक कर जाते हैं, तो ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म कैटेगरी में आते हैं
0: जी,
1: और उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया। किसान भाई यूरिया, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, NPK या पोटाश

0: देते
1: जी
0: हैं, और कभी कभी वो सल्फर भी दे देते हैं,
1: जी
0: या कभी कभी जिंक भी कुछ किसान भाई अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे हमारे तत्व हैं, इनकी जो बचते हैं,
1: जी
0: जैसे आपका कैल्शियम है,
1: जी
0: मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, बोरोन है,
1: जी
0: मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, सोडियम है, कोबाल्ट है,
1: जी
0: सिलिकॉन है, ये जो तत्व हैं इनकी किसान भाई पूर्ति सामान्यतया नहीं करते हैं।
1: जी
0: और ये पूर्ति सामान्यतया तभी अच्छे से हो सकती है जब आपके खेत में जैविक खादों का प्रयोग आप बढ़ाएंगे, और जैविक खादों की जैसे मैंने बात कही, उसके साथ साथ में हरी खाद को आप बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ में जो खलियां हैं हमारी,
1: जी
0: जैसे कि नीम की खली है, हमारी सरसों की खली है, इन खलियों का आप प्रयोग बढ़ा सकते हैं। तो जो कार्बनिक हमारे जितने भी स्रोत हैं, उन स्रोतों को हमारे किसान भाइयों को बढ़ाने की जरूरत है। उससे हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी भी पूर्ति होगी,
1: जी
0: बाहर से उनको देना नहीं पड़ेगा, और उनकी लागत भी घटेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि यदि खेतों में एनपीके की मात्रा की आवश्यकता नहीं भी है, उसके बावजूद भी किसान लगातार, या तो कंपटीशन के चलते कहिए या अन्य जानकारी के अभाव में कहिए, खाद डालता रहता है और ये नहीं देखता कि जो है एक तरह से हानि ही हो रही है। धन की तो हानि हो ही रही है, इसके अलावा खेती की भी हानि है, मिट्टी की भी हानि है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे वो मिट्टी की जांच करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और जितने बाकी तत्व हैं उनको भी पूरा करें समय से?
0: बिल्कुल, मिट्टी की जांच बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया, कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही पोषक तत्वों का निर्धारण होना चाहिए।
1: जी,
0: और ये कार्य इस समय चूंकि गेहूं की कटाई हो चुकी है, खेत किसान भाइयों के खाली पड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया उपयुक्त समय है। आप अपने खेतों से मिट्टी का सैंपल लें, और सैंपल को लेकर के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो कृषि विभाग के पास भी है,
1: जी
0: कृषि विभाग में रामपुर में या अन्य जनपदों में जहां भी हमारे किसान भाई रहते हैं,
1: जी
0: हर एक जनपद में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, तो किसान भाई उन प्रयोगशालाओं पर लेकर के जाएं सैंपल को और अपने सैंपल की जांच करा लें, जिससे धान की रोपाई से पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे खेत के स्तर क्या है, हमें किस तत्व को कितनी मात्रा में देना है। दूसरी बात, सैंपलिंग का जो तरीका है वो थोड़ा मैं किसान भाइयों को बताना जरूर चाहूंगा। सैंपलिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको अपने खेत की मिट्टी का ये देखना जरूरी है कि आपका खेत कितना बड़ा है, उसका आकार कितना बड़ा है।
1: जी।
0: जैसे मान लीजिए बड़ा खेत है, तो हो सकता है उसमें मिट्टी दो प्रकार की हो, खेत ऊंचा नीचा ढहान का हो सकता है, हो सकता है कुछ खेत में पेड़ लगे हों, तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। और सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं कि जहां पे खेत में पेड़ हो उसके नीचे से आप सैंपलिंग ना करें, मेड़ के पास से सैंपलिंग ना करें, या आपने उर्वरक खेत में दिया है तो उसके बाद सैंपलिंग नहीं होनी चाहिए।
1: जी, जी, जी।
0: उसके साथ साथ में मान लीजिए कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे खेत में ही गोबर का किसी खाद का गड्ढा बना दिया, तो उसके पास से भी सैंपलिंग ना करें। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें और एक खेत से कम 7-8 जगह मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करें। और सैंपल कलेक्शन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसलिए है कि वो पूरे खेत को रिप्रेजेंट करता है सैंपल। यदि आपकी सैंपलिंग ही गलत हो गई तो रिजल्ट निश्चित रूप से गलत होगा। तो इसके लिए ध्यान रखने की बात यह है कि एक किसान भाई बाल्टी साथ में रखें, एक फावड़ा, एक खुरपी और एक प्लास्टिक की पॉलिथीन की शीट साफ सुथरी, जो किसी उर्वरक से संदूषित ना हो,
1: जी
0: उसको ले लें और आप खेत में बी आकार का गड्ढा बनाएं। बी आकार का गड्ढा बना करके उसमें खुरपी से मिट्टी लेकर के बाल्टी में रख लें, और जब आपने 7-8 जगह से जब मिट्टी को ले लिया तो उसको उस प्लास्टिक की जो सीट है उस पर आप पलट दीजिए, और पलटने के बाद में हाथ से अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लीजिए, फिर उसका ढेर बना लीजिए और उस ढेर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसके 2 हिस्से आमने सामने के हटा दीजिए, जो 2 हिस्से बचते हैं उनको फिर ढेर बना दीजिए, और फिर इस प्रक्रिया को तब तक आप करते रहिए जब तक आधा किलो मिट्टी आपके हाथ में ना रह जाए। जब आधा किलो मिट्टी आपके हाथ में आ जाए तब आप उसको एक साफ सुथरी प्लास्टिक की या कपड़े की जो थैली है उसमें आप रख करके और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेज सकते हैं, और उस पर अपना पूरा पता, नाम, खेत की पहचान ये लिखना ना भूलें, जिससे कि आपका सैंपल मिक्स ना हो जाए
1: जी,
0: और आपको रिजल्ट मिल जाए समय से, और उसके अनुसार आप खेत में पोषक तत्वों का प्रयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कुछ आधुनिक तकनीकें जैसे ड्रिप इरिगेशन हुआ या फर्टिगेशन हुआ, इनके माध्यम से भी किसान भाई लाभ उठा रहे हैं, और इसके अलावा जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता है, किसानों में भी जागरूकता है, अधिक से अधिक मात्रा में ऐसे खेती की जा रही है जो कि जैविक खेती के रूप में कहलाई जाए, कम से कम उनमें फर्टिलाइजर्स का या अन्य कीटनाशी आदि चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। कैसे उन तक आप

0: की बात पहुंचे कि कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज करके या कम से कम लागत में उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कैसे कर पाएंगे?
1: बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, कम से कम लागत में।
0: जी
1: इसका बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि आपने कहा प्राकृतिक खेती की तरफ भी हमारे किसान भाई बढ़ रहे हैं।
0: जी
1: प्राकृतिक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित भी है कि हमको बाजार की चीजों पर निर्भरता कम से कम करनी है, बाजार पे निर्भरता हमारी ना रहे, तो उसके लिए हम घर पर ही कुछ ऐसे चीजों को बना सकते हैं जिससे खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति भी आराम से हो सकती है।
0: जी
1: प्राकृतिक खेती की बात करें तो उसमें ढैंचा का उपयोग बाकी में भी कर सकते हैं, प्राकृतिक में भी करना ही है आपको।
0: जी
1: साथ साथ में आप उसमें घनजीवामृत, जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। घनजीवामृत और जीवामृत का प्रयोग करने से क्या होगा कि खेत के अंदर सूक्ष्म जो जीव हैं, हमारे बैक्टीरिया हैं,
0: जी
1: उनकी संख्या बढ़ती है और वो संख्या कई प्रकार से अपना रोल प्ले करती है खेत में। जैसे आप एक देखते होंगे कि जो सूक्ष्म जीव हैं, दही हम जमाते हैं एक भौने दूध में और एक
0: जी
1: चम्मच या आधा कटोरी कह लें, अगर हम दही डाल देते हैं तो वो आधा कटोरी दही क्या करता है, एक स्टार्टर का काम करता है और
0: जी
1: पूरे
0: जी
1: भगोने
0: जी
1: को जमा देता है।
0: जी जी जी
1: इसी प्रकार से खेत के अंदर होता है कि जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो आपके खेत में बहुत सारी मात्रा में फास्फोरस अघुलनशील अवस्था में पड़ा रहता है।
0: जी
1: जो अघुलनशील अवस्था में पड़ा हुआ है उसको घुलनशील अवस्था में ला करके पौधों को देने का काम करते हैं। तो ये जो जीवामृत है, घन जीवामृत, इनका
0: जी
1: प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में जो हमारे कीट लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनके लिए भी जो इसमें सुझाए गए हैं उनको आपको इस्तेमाल करना है। जैसे आपका अग्नास्त्र है, आपका नीमास्त्र है,
0: जी
1: इनका आप प्रयोग करेंगे। तो कहने का अर्थ ही हुआ कि हमें कीट बीमारियों के लिए रासायनिक दवाओं की तरफ जाना पड़ता है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों की तरफ जाना पड़ता है।
0: जी
1: तो यदि हम घर पर ही घनजीवामृत बना लें, घर पर ही जीवामृत बना लें, घर पर ही अग्नास्त्र बना लें और नीमास्त्र का प्रयोग करें, तो हमें बाजार पर निर्भरता ही खत्म हो जाएगी
0: जी
1: और हम प्राकृतिक खेती के विकल्प की ओर आसानी से जा सकते हैं। और
0: जी
1: इससे हम सबका फायदा होगा, किसानों का तो फायदा होगा ही, साथ साथ में समाज के सभी अंगों का
0: जी
1: फायदा होगा। क्योंकि आज हम सब लोग देख रहे हैं इस चीज को कि बीमारियां सभी में बढ़ रही हैं।
0: जी जी जी
1: बीमारियों के बढ़ने में एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हम जो रासायनिक उर्वरक या रासायनिक दवाइयों का खेतों में जो ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं उसका अवशेष प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित
0: कर रहा
1: कर
0: है।
1: सकता
0: बिल्कुल
1: है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप और आपकी टीम, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम, सभी लोग फील्ड में रहते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं इस बारे में। किसान भाई आप तक कैसे पहुंचे, कैसे वो इस संबंध में जानकारी लें और कैसे उन तक ये संदेश अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, किस प्रकार से वो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग इस्तेमाल शुरू करें और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम से कम करें?
1: देखिए, मैं तो अपने किसान भाइयों से सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस समय आपके खेत जितने भी खाली पड़े हैं उसमें आप हरी खाद की बुवाई जरूर कर लें
0: जी
1: और उससे पहले आप मिट्टी की जांच के लिए सैंपलिंग ले लें। सैंपलिंग करके मिट्टी की जो प्रयोगशाला है वहां पे आप भेज दें तो आपके खेत की जांच भी हो जाएगी, ढैंचा बोने से हरी खाद का आपके खेतों को मिल जाएगी। और साथ साथ में जो आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हर जनपद में है,
0: जी
1: किसान भाई वहां के संपर्क में रहें। तो जो और तरीके हैं, जैसे घनजीवामृत की हमने बात की है, जीवामृत बनाने की बात की है, वो बनाने का तरीका प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग भी किसानों को देते हैं और
0: जी
1: विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं वो गांव गांव जाकर के भी उनको जानकारी देने का काम करते हैं। उस माध्यम से भी किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। और ये जो विषय है एक जन जागरण का विषय है,
0: जी
1: किसान भाइयों को जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि जागृत नहीं होंगे तो होता क्या है, प्रैक्टिकली हम लोग बहुत खेतों में देखते भी हैं कि कई बार क्या होता है, किसान भाई एनपीके या डीएपी उर्वरकों को
0: जी
1: फसल की बुवाई के उपरांत
0: जी
1: ऊपर से डाल देते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि ये उर्वरक जड़ के पास में रहते हैं तब तो पौधा इनको ग्रहण करता है।
0: जी
1: यदि ये जड़ के पास में नहीं रहेंगे तो आपने ऊपर से डाल दिया तो उसका जो नाइट्रोजन तत्व है वो पौधे को मिल सकता है,
0: जी
1: बाकी फास्फोरस और पोटेशियम तत्व पौधे को नहीं मिलेगा। इस तरीके से भी किसान भाई उर्वरकों की बचत कर सकते हैं और उर्वरकों का जो संतुलित उपयोग है वो करने में कामयाब होंगे।
0: जी किसान साथियों, आप थे डॉक्टर नरेंद्र गंगवार जी। बहुत ही विस्तार से और सार गर्भित तरीके से आपने विस्तार से बताया किस प्रकार से उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, रासायनिक विकल्पों पर कम से कम जाना है और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना है। डॉक्टर साहब, आप समय निकालकर आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता संतुलित उर्वरक प्रबंधन एवं रासायनिक उर्वरकों के विकल्प। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह धमरा रामपुर, और आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे विक्रांत जी। और ममता बहन, अब हमारे किसान भाइयों और बहनों को आप काची सुन पा रही हो।
3: भैया बहनों, अब समय भी चलो किसान भैया के मनोरंजन को, तो सुन लेते हैं जो लोकगीत जिसके बोल हैं, हमको गोटे वाली चुनरी इसको मधुर स्वर से सजाओ है राधा रानी ने।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना प्यारा सा लोकगीत। और साथियों, अब हम बता दें कुछ सूचना। साथियों, महीने के पहले बुधवार को हम आपको सुनवाएंगे सफल सफल कृषक से बातचीत, और दूसरे बुधवार को सुनवाएंगे सफल महिला कृषक से बातचीत, और साथियों तीसरे बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी, और चौथे बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप पर बातचीत, और अगर पांचवा बुधवार है तो साथियों सफल कृषक से बातचीत।
1: इसी तरह से भैया दिन करें बुधवार की बात, तो इस दिन आप सुन सकेंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष पहले बुधवार को, और दूसरे बुधवार में सुनेंगे कृषि पत्रिका खेत खलियान, और तीसरे गुरुवार को सुनेंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष तीसरे गुरुवार को, और चौथे गुरुवार को महीने के सुनेंगे कृषि पत्रिका खेत खलियान। इसी तरह से अगर पांचवें गुरुवार महीना में पड़ जाता है तो सुन सकेंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
0: और साथियों, इस महीना जो शुक्रवार आ गए तो पहले शुक्रवार को हम आपको सुनवाएंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम, और दूसरे शुक्रवार को साथियों हम सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, बस जुड़ी समस्याएं और उनसे जुड़े समाधान, और साथियों तीसरे शुक्रवार को सुनवाएंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम, और चौथे शुक्रवार को हम सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, उससे जुड़ी समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान। अगर साथियों पांचवा शुक्रवार है तो हम आपको सुनवाएंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। और साथियों, हमारा मोबाइल नंबर जो है बाको आप नोट कर लें, 0595-23-24-326, जहाँ पर आप हमें फ़ोन कर सकतेंगे, और हमारो व्हाट्सएप और एसएमएस नंबर है
1: 9410087-6876। एक बार फिर से बता दें व्हाट्सएप नंबर 9410087-8776।
0: और साथियों, हमारा मेल एड्रेस जो है आप नोट कर सकते हैं, और मेल हमें कर सकते हैं। मेल तो साथियों आप कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। और सोशल मीडिया भी जो है बापू हम होंगे, और बापू हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते।
1: इसी तरह से पत्राचार के द्वारा भी हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901।
0: तो साथियों ये तो रही कार्यक्रम से संबंधित सूचना।
1: और भैया बहनों, अब क्षेत्र संकेत कार्यक्रम को समय हो चलो है, तो आज हमारे हरदेव भैया की बातचीत हुई है श्री हेमंत भैया से, जो युवा किसान हैं, ग्राम गौशलपुर ब्लॉक नवाबगंज बरेली से हैं। सुन लेते हैं काका बातचीत करी खेती बाड़ी से जुड़ी भाई। तो भैया बहनों आपो सुनो और हम सुन लेते हैं जा बातचीत।
2: किसान साथियों राम राम। साथियों आज हम आए हैं ग्राम गौसलपुर जो कि नवाबगंज ब्लॉक जिला बरेली में है, और हमारे यहाँ भैया हैं जी। आपका परिचय?
3: हेमंत कुमार, गौसलपुर नवाबगंज बरेली।
2: बरेली। हेमंत भैया, हमारी गेहूँ की फसल तो उठ चुकी है, और आज हम बात कर रहे हैं हरी खाद पे आपसे। क्या बताओ आगे हरी खाद जो होता है
3: भैया? हरी खाद मतलब ऐसी फसल जिसे खेत में उगा कर बाद में उसी खेत में पलट दिया जाता है ताकि मिट्टी की ताकत बढ़े। जैसे ढेंचा, सनई, यूरिया, ये फसलें खेत के लिए प्राकृतिक खाद का काम करती है।
2: अच्छा अच्छा हेमंत भैया, जाकू का काट के घर ना लाते क्या?
3: नहीं भैया, ऐसे खेत इसे खेत में ही ट्रैक्टर या हल के द्वारा पलट देते हैं। कुछ दिनों बाद वो सड़कर खाद बन जाती है और मिट्टी में मिल जाती है।
2: अच्छा अच्छा भैया, एक बार बताओ हेमंत भैया, लोग कहते हैं कि जैसे जमीन की ताकत बढ़ती है, कैसे होता है?
3: देखिए, लगातार रासायनिक खाद डालने से जमीन की सख्त और कमजोर होने लगती है। हरी खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाती है जिससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और पौधों को पोषण भी अच्छा मिलता है।
2: अच्छा अच्छा, एक बार बताओ हेमंत भैया, कौन कौन सी जो है फसलें हरी खाद के लिए सबसे ज्यादा बोई जाती है?
3: हमारे इलाके में तो ढेंचा सबसे ज्यादा बोया जाता है, इसके अलावा सनई और मूंग भी लोग इस्तेमाल।

0: बिल्कुल भैया, हरी खाद मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है, इसलिए बाद वाली फसल में यूरिया कम डालनी पड़ती है। 20-25% तक रासायनिक खाद कम लगती है।
1: अच्छा, जो तो भैया बहुत बढ़िया बात है कि 20-25% खाद जो है कम लगती है, लेकिन कुछ किसान भाई कहते हैं कि इससे समय खराब होते हैं।
0: शुरुआत में ऐसा लगता है फायदा लंबे समय तक मिलता है, अगर किसान एक सीजन में 40 दिन खाद को दे दे तो अगले कई साल मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है, उपज भी बढ़ती है।
1: अच्छा, मिट्टी में क्या फर्क दिखाई देता है भैया, कि क्या अंतर आता है मिट्टी में हरी खाद कम से?
0: सबसे बड़ा फर्क ये कि जमीन मुलायम हो जाती है।
1: अच्छा,
0: खेत में दरार कम पड़ती है, पानी जल्दी सूखता है और जड़ों में विकास अच्छा होता है।
1: अच्छा, जिन खेतों में भैया ज्यादा पानी भरो रहता है वहाँ भी फायदा करती है जो फसल?
0: हाँ, क्योंकि मिट्टी की बनावट सुधरती है, पानी का संतुलन बेहतर होता है, ज्यादा पानी या कम दोनों हालत में खेत थोड़ा संभल जाता है।
1: अच्छा, ज्यादा पिए या कम पानी पिए दोनों हालत में खेत संभल जाता है। अच्छा, एक बार बताओ भैया, क्या हमारे जो छोटे किसान भाई हैं क्या इसे आसानी से कर सकते होंगे?
0: क्यों नहीं, ढेंचा का बीज बहुत महंगा भी नहीं होता है, बस थोड़ी समझ और समय चाहिए, इंसान को इससे ज्यादा फायदा होता है, खर्चा कम हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा भैया, इसमें कोई दिक्कत तो ना आती है क्या, जैसे कोई दिक्कत, जैसे बीमारी उमारी कोई?
0: अगर समय पर खेत में न पलटो तो पौधे सख्त हो जाते हैं और जल्दी गलते नहीं है। अच्छा, इसलिए सही समय पर जुताई जरूरी है और खेत में थोड़ी नमी भी रहनी चाहिए ताकि पौधे जल्दी चढ़े।
1: हाँ, जो बात आपकी सही है। अच्छा, एक बार बताओ हेमंत भैया, खेत में पलटन के बाद कितने दिन के बाद हम जो है अगली फसल बो सकते हैं?
0: करीब 15-20 दिन बाद तब पौधे गलने लगते हैं और मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं।
1: अच्छा, हमारे कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भैया जिन खेतों में हरी खाद होती है तो वहाँ कीड़ा मकोड़ा भी कम लगता है, क्या जवाब सही है?
0: कुछ हद तक हाँ, मिट्टी में अच्छे जीवाणु रहते हैं जिससे खेत का वातावरण अच्छा रहता है, कई बीमारियां भी कम देखने के लिए मिलती है।
1: अच्छा, आजकल जो लोग जैविक खेती की बात करते हैं क्या उसमें हरी खाद कितनी जरूरी है भैया?
0: बहुत जरूरी है भैया, जैविक खेत की नींव ही जैविक पदार्थ है, हरी खाद से खेत प्राकृतिक तरीके से ताकतवर बनता है, इससे रासायनिक खाद पर निर्भरता घटती है।
1: अच्छा, यानी कि जैसे गेहूँ धान को फायदा मिलता क्या, गेहूँ धान के अलावा और फसलों में फायदा मिलता है क्या?
0: जी हाँ, बहुत अच्छा फायदा मिलता है, खासकर धान से पहले अगर ढेंचा पलट दिया जाए तो धान की फसल ज्यादा हरी भरी रहती।
1: अच्छा, अगर कोई भी हमारे जो किसान भाई है पहली बार करना चाहता है तो उसे आप भैया क्या सलाह देंगे?
0: मैं यही कहूंगा कि पहले एक छोटे खेत में करके देखे, ढेंचा बोए 40 दिन बाद पलटे, फिर अगली फसल में फर्क खुद ही दिखाई देगा।
1: अच्छा अच्छा भैया, लगभग कितना खर्च आता है करण से?
0: बहुत ज्यादा नहीं, बीज जुताई का खर्च मिलाकर भी रासायनिक खाद से कम पड़ जाता है।
1: अच्छा,
0: और फायदा लंबे समय तक मिलता है।
1: अच्छा, लेकिन भैया आजकल जो जमीन की उर्वरक क्षमता हम देख रहे हैं कम हो जा रही है, उसमें हमारी जो हरी खाद है कितनी मदद कर सकती है?
0: काफी मदद कर सकती है, लगातार रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की जरूरी सूक्ष्म तत्व खत्म हो जाती है, हरी खाद उन्हें वापस संतुलित करने में मदद करती है।
1: अच्छा अच्छा, हमारे जो पशुओं का गोबर है और हरी खाद, अगर दोनों में से देखा जाए तो कौन सी चीज अच्छी है?
0: दोनों अपने अपने जगह पर जरूरी है, अगर दोनों मिल जाए तो और अच्छा है, गोबर खाद भी मिट्टी सुधारती है और हरी खाद भी, दोनों साथ इस्तेमाल करने से खेत बहुत उपजाऊ बनता है।
1: तो हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो इस समय हरी खाद करने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ लोगों ने कर भी रखी है, तो उन्हें आपका संदेश देना चाहेंगे कि हरी खाद कितनी जरूरी है।
0: भैया, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी किसान भाई हरी खाद का प्रयोग करें और अच्छी फसल उठाएं और रासायनिक का कम उपयोग करें।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी हेमंत भैया आपने, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हमारे किसान भाई जो है हरी खाद का प्रयोग करेंगे, और आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भैया बहनों, अभी आपने क्षेत्र संकेत कार्यक्रम में श्री हेमंत भैया से जो बातचीत करी हमारे हरदेव भैया ने, वो सुनी। और अब हरदेव भैया अपने पशुओं के संबंध में भी कुछ बातचीत कर ली जाए।
1: बिल्कुल सही बात कर रही हो ममता बहन। देखो, गर्मी को समय चल रहा है और इस समय जो है लू चल रही है ना। तो जब गर्मी ज्यादा पड़ने लग रहा है और लू चलने लग रहा है, तो हमें अपने साथ साथ अपने पशुओं को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो खुले में पशु जो है बांधे, लेकिन ऐसी जगह बांधे जहाँ छाया हुए, हरे भरे वृक्ष की छाया हुए, ठीक है, कीचड़ वगैरह ना हुए। ऐसी जगह हम बांधे, पानी की व्यवस्था बढ़िया हुए, ताजा पानी हुए, है ना।
0: बिल्कुल हरदेव भैया, गर्मियों में इंसान के साथ साथ जो पशु है ना, उनको भी लू लगन को खतरा ज्यादा रहता है। अगर समय रहे ध्यान दे दो जाए तो पशु बीमार भी ना होते हैं और जो उनकी उत्पादन क्षमता है उस पर भी कोई असर ना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। जब हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तो दूध उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और हमारे जो पशुओं के लाभारी हैं वे स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए हमारा तो सभी किसान भाइयों और बहनों से जय कहना है कि भैया देखो, जो गर्मी के मौसम में अपने साथ साथ अपने पशुओं को ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो कहूँ रोड पर, जैसे हम दोपहर में देखो रामपुर अपनी आकाशवाड़ी आए तो जो गर्म हवा एकदम लग रही, तो बस अच्छी है कि हम बस से चले आए, है ना। इसी हिसाब से हमारे पशुओं को जो है गर्म हवा लगती है, तो आप उन्हें ऐसी जगह बांधें जहाँ छायादार वृक्ष होए, है ना, ठंडक महसूस हुए पशुओं को, ताकि लू ना लगे।
0: तो अगर सावधानी बरतन के बाद भी कोई पशुओं को लू लग जाता है तो बहुत तेज सांस चलने लगता है, मुंह से लार टपकने लगता है, खाना कम कर देते हैं खानों और सुस्त हो जाते हैं। कई बार पशु खड़े भी ना हो पाते हैं अगर लू लग जाते हैं, तो शरीर को तापमान बढ़ जाता है और दूध देने वाले जो पशु हैं उनके दूध में कमी हो जाता है। इसलिए इसकी पहचान कर सकते हैं और समय रहते उसकी ध्यान दे के अपने पशुओं को बचा सकते हैं।
1: तो बिल्कुल सही बात की आपने ममता बहन। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें अपने पशुओं को बचाना जरूरी है, और उम्मीद करता हमारे किसान भाई बहन इन बातों को ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को स्वास्थ्य को अच्छी तरह ध्यान रखेंगे।
0: हाँ भैया, और अब बता दें अपने जो भैया बहन है उनके लिए कल के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। कल चर्चा में सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और विश्व मक्खी दिवस पर चर्चा, और साथ ही सुनेंगे परिचर्चा और लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे और सुनेंगे मौसम की जानकारी।
1: और साथियों, आज हम बता दें कल के मौसम की जानकारी। अधिकतम जो तापमान है वो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड
0: और न्यूनतम तापमान है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा की बात करें तो 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल सकती है,
1: और आर्द्रता साथियों 56% और 56 से 73% रह सकती है।
0: हाँ भैया बहनों, ये तो ही कल के मौसम की जानकारी। और हरदेव भैया, आप देख रहे हो हमारे कार्यक्रम में ज्यादा समय ना है, जो अपने भैया बहनों से और बातें की जाए।
1: हाँ बिल्कुल, उम्मीद करता साथियों हमारे कार्यक्रम में आपको पसंद आ हुए, और इसी बात के साथ आपके भैया हरदेव की
0: और अपनी बहन ममता की स्वीकार करें राम राम, राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। आज इस कार्यक्रम में संपत्ति खरीद के कानूनी पहलू के विषय में आपको जानकारी दे रही हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा। आपसे भेंट कर रहे हैं अवधेश कुमार गौतम।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम कानून और हम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के आज के अंक में हमारा विषय है संपत्ति खरीद के कानूनी पहलू, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज में हाजिर हैं सर्वेश कुमार शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विभिन्न नेशनलाइज बैंकों के पैनल में शामिल हैं। वकील साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
1: सर, जैसा कि हमारा विषय है संपत्ति खरीद के कानूनी पहलू, संपत्ति की जब हम बात करते हैं, विशेषतः अचल संपत्ति की अगर हम बात करें, तो अचल संपत्ति की कानूनी परिभाषा क्या हो सकती है?
2: उसके शब्द से ये परिभाषित है कि अचल संपत्ति यानी कि जिस संपत्ति को

0: हम चला ना सकें, वो चल ना सके, लेकिन इस समय वर्तमान परिवेश में तो विदेशों में हाउस भी पूरे शिफ्ट किए जा रहे हैं। वैसे तो संपत्ति हमारी चार हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति का आपने डिस्कस कर दिया, मूर्त संपत्ति जिनको छुआ जा सके,
1: जी
0: भौतिक रूप से देखा जा सके, और अमूर्त संपत्ति वो जिनको छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट या गुडविल है।
1: संपत्ति खरीदने से पहले किसी आम नागरिक को किन मूलभूत कानूनी बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए? दोनों ही प्रकार की संपत्तियों के बारे में बताइए, कृषि और अकृषि भूमि दोनों के बारे में बताइए।
0: इसमें मैं सबसे पहले कृषि भूमि की बात करना चाहूँगा कि आमतौर से जो हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और अधिकतर कृषि भूमि लोगों के पास है, तो सबसे मेन तो है कि कृषि कार्ड बनता है, और कृषि कार्ड के लिए उसमें खसरा, खतौनी और हिस्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके भी यहाँ पर हम लोग सर्च कर कर रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर बैंक का फील्ड ऑफिसर जाकर उसका भौतिक सत्यापन करता है भूमि का और फसल का, कि कौन सी फसल है, और फसल के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कि इन्हें ऋण किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएगा और कितनी मात्रा में दिया जाएगा, धनराशि क्या होगी उसकी। ये तो रही बात कृषि भूमि के, कृषि भूमि की बात करें तो उसमें प्लॉट आता है, मकान आता है, और मकान में भी एक वो जो नया मकान बना हुआ है, एक वो मकान जो पैतृक मकान होता है। तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन हैं कि जो आपको देखनी अत्यंत आवश्यक हैं कि खरीद से पूर्व में, जैसे प्लॉट है, मकान है और पैतृक मकान है, कि उसकी पिछले 30 साल की फ्लोप टाइटल, उसकी चैन क्या है, यानी कि ए से बी के पास कैसे आई, बी से सी के पास कैसे आई, और ये देखने के लिए हमें रिकॉर्ड रूम में या रिकॉर्ड लेवल पर जाकर देखना पड़ता है। कृषि अगर उसमें हमें जो हम प्लॉट खरीद रहे हैं उसमें घाटा संख्या खुली हुई तो खतौनियाँ मिल जाती हैं, और यदि वो शहर की आबादी के बीच में है तो वहाँ पर हमें नगर पालिका या संबंधित प्राधिकरण है वहाँ जाकर उसका असेसमेंट निकलवाएंगे कि वो टैक्स किस किस के नाम पर रहा है, इस मकान में कौन रहा है और इसका कब्जा किसका है, ये हमें नगर पालिका से जाकर पता लग जाता है।
1: सर, धारा 143 और धारा 80 का क्या मतलब होता है?
0: सर जब अभी जो भू-राजस्व अधिनियम था पहले 1950, उसमें धारा 143 थी, और अब जो वर्तमान में राजस्व संहिता 2006 है वो धारा 80 है। तो इसका मतलब ये है कि जो कृषि भूमि है उसमें से यदि कोई व्यक्ति प्लॉट बेचता है, वो व्यक्ति का जो उसको पहले कृषि से अकृषि भूमि घोषित कराना पड़ेगा, यानी कि उसका जो टाइटल है लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा। लैंड यूज चेंज करने के बाद में ही हम उसमें प्लॉट काट सकते हैं, कॉलोनी काट सकते हैं, संबंधित जो प्राधिकरण है, जो संस्था, उससे लेआउट पास कराने के बाद।
1: संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया क्या होती है और रजिस्ट्री प्रक्रिया में कौन से ऐसे संस्थान हैं जो इसमें शामिल होते हैं?
0: संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में सबसे पहले तो ये कि जो हमारे तहसील स्तर पर उपनिबंधक कार्यालय होता है, और उपनिबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री से पहले हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है, जो सर्किल रेट होता है संबंधित जगह का, चाहे वो प्लॉट हो, मकान हो। वैल्यू निकालने के बाद उसमें स्टाम्प दे होता है, और महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है कि 10 लाख तक यदि उसकी वैल्यू है तो उस पर 1% की छूट दी जाती है। तो हम जो स्टाम्प ड्यूटी निकलती है उस स्टाम्प ड्यूटी पर 10,000 तक की छूट मिल जाती है, 10 लाख पर 1% 10,000 की छूट महिलाओं को मिल जाती है। फिर लिखने के स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद में हम रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। किसी भी दस्तावेज का पंजीकृत कराने के लिए 2 गवाहों का होना अत्यंत आवश्यक है, और बेहतर हो कि एक गवाह क्रेता की तरफ से हो और एक गवाह विक्रेता की तरफ से हो।
1: जी सर, खरीद विक्रय पत्र यानी कि सेल डीड और अधिकार प्रमाण पत्र टाइटल डीड दोनों में क्या फर्क है?
0: सेल डीड तो ये मानो कि आप जैसे हमने जिसे साधारण भाषा में बैनामा कहा जाता है, और अधिकार पत्र फर्ज करो कोर्ट से कोई सेटलमेंट हुआ है, मेरे फैमिली में हम 4 भाई हैं, एक मकान था, उस 4 भाइयों में आपस में बंट गया, तो टाइटल जो है वो स्वामित्व को निर्धारित करता है, वो
1: अच्छा
0: स्वामित्व हमें जो है उससे मिल जाता है, वो खतौनी में भी स्वामित्व मिलता है और बैनामे से भी मिलता है और हमें कोर्ट से भी मिलता है। कभी कभी कुछ ऑक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, नीलाम होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें स्वामित्व मिलता है।
1: हम भूमि की अगर बात करें तो रजिस्ट्री पहली एक प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्री क्या मालिकाना हक को कंफर्म करती है या मालिकाना हक को दर्ज कराने के लिए कुछ अलग प्रोसीजर होता है?
0: रजिस्ट्री की प्रक्रिया तो यह है कि जैसे हमने बैनामा रजिस्ट्री में करा लिया, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उसका म्यूटेशन होता है, यानी कि दाखिल खारिज जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ, कि एक नाम का दाखिल होगा, दूसरा नाम खारिज होगा। मान लिया
1: अच्छा
0: ए ने कोई संपत्ति विक्रय की तो उसका नाम तो खारिज होगा,
1: जी
0: और बी ने वो क्रिया की तो उसका नाम दाखिल होगा। तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया से म्यूटेशन भी बोलते हैं, नामांतरण
1: जी
0: प्रक्रिया बोलते हैं,
1: जी
0: और यदि वो नगर क्षेत्र के अंतर्गत है तो उस बैनामा जो हमने कराया मकान का प्लॉट का, हम नगर क्षेत्र में नगर पालिका संबंधी जो प्राधिकरण हमारे

0: कि इसका हाउस टैक्स पहले मिस्टर ए के नाम था,
1: जी
0: अब ये चूंकि मैंने किराया कर लिया, अब ये मेरे नाम कर दिया जाए, तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया में आता है। यहाँ पर संपत्ति में पजेसन सबसे बड़ी चीज़ है,
1: जी
0: 75% मालिक वो जिसका कब्जा है, लेकिन जब हम बैनामा कराते हैं, खरीदते हैं, तो हमें उस पजेसन के साथ साथ हमें जो है वो भूमि के अधिकार भी मिल जाते हैं, तो वो 100% माना जाता है कि हम इसके पूरी तरह से मालिक हो गए।
1: मालिक हो गए हैं। इनकमरेंस सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है सर?
0: सर,
1: ये
0: इनकमरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है सब रजिस्ट्री ऑफिस से, जिसे हम फॉर्म 29 बोलते हैं, फार्म भर के देना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म सी उसमें धनराशि जाती है, रसीद कटती है। तो वो इनकमरेंस सर्टिफिकेट हम अगर कृषि भूमि के लिए लेना तो आवश्यक है, तो वो 12 साल का होना चाहिए, जैसा सामान्य भाषा में कहा जाता है कि 12 साल बनाया, तो 12 साल तक इस भूमि पर किसका कब्जा रहा है, क्या कोई उस व्यक्ति ने उस 12 साल के अंदर किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया, कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया, कोई उस पर कोई विवाद तो नहीं है। तो इनकमरेंस सर्टिफिकेट हमारा रजिस्ट्री ऑफिस से जारी होता है, इसे NEC बोलते हैं, नॉन इनकमरेंस सर्टिफिकेट। यदि हमने रजिस्ट्री ऑफिस में रिसर्च की है तो वहाँ पता लगेगा कि इस ज़मीन पे किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है, या उसने इसका कोई एग्रीमेंट कर रखा है, या उसने कोई इसमें पूरक डीड कर रखी है, या कोई पूरक पत्र कर रखा है, या कोई शुद्धि पत्र कर रखा है। तो इनकमरेंस सर्टिफिकेट से एक तरह से ये माना जाए कि वो रजिस्ट्री ऑफिस की NOC है, उसमें आ
1: जी
0: जाता है कि अगर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जो हमारे लिए आवश्यक है, तो वहाँ से पता लग जाती है।
1: कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनका क्रय विक्रय डायरेक्ट रूप से नहीं किया जा सकता, जिसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कौन सी ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनकी खरीद फरोख्त में विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है?
0: ये प्रश्न गौतम जी आपका बहुत अच्छा है। आमतौर से लोगों के मन में कई भ्रांतियाँ रहती हैं, मैं आप बताऊंगा कि जैसे कि हम सामान्य तौर पर SC to SC की परमिशन जो है वो ये तो SDM देते हैं, कि और यदि किसी सामान्य व्यक्ति को किसी SC की भूमि परचेस करनी है तो वो तब तक नहीं परचेस करेगा, उतनी करेगा जितनी कि 20 बीघे से ज़्यादा हो। मान लें मेरे पास 18 बीघे भूमि है, मुझे 2 बीघे बेचनी है, तो मेरे पास 20 बीघे तब होगी जब मैं 4 बीघे खरीद लूँगा किसी SC से SDM की परमिशन लेकर। अब मेरे पास होगी 22 बीघे, तो उसमें से फिर मैं 2 बीघे बेच सकता हूँ DM साहब की परमिशन के द्वारा।
1: जी
0: और अब यदि किसी को इससे ज़्यादा खरीदनी है सामान्य व्यक्ति की भूमि, तो इसे हम सीलिंग एक्ट के रूप में लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति मतलब पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे, हमारे यहाँ 12.5 एकड़ भूमि, लगभग 80 80 बीघा भूमि वो यहाँ पर अपने पास में धारण कर सकते हैं। अब यदि इससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए 50 एकड़ तक की परमिशन DM साहब देते हैं, उसमें वो कंडीशन ये है कि वो कोई रजिस्टर्ड फर्म हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, या LLP हो, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप ट्रस्ट, या ट्रस्ट हो, कोई समिति हो, शिक्षण संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो 100 एकड़ की भी कम पड़ जाती है, तो उसके लिए फिर हमें 100 एकड़ की परमिशन जो है वो तक की कमिश्नर साहब देते हैं, और 100 एकड़ से यदि अधिक कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी परमिशन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होती है। दो, तीसरा विषय रहा कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग है और नाबालिग का संरक्षक उसकी माता जी होती हैं, तो नाबालिग की संपत्ति भी विक्रय अगर करनी है तो हमें डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश हमने डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन नहीं ली, और तो फिर वो बच्चा जो है जिसके नाबालिग के हिस्से की संपत्ति विक्रय की गई है, वो बालिग होने के 3 साल के अंदर अंदर चैलेंज कर देता है कि ये जो संपत्ति जो है वो इस जो विक्रय की गई थी उस समय ये सोच के विक्रय की गई थी कि उससे प्राप्त होने वाली आय मेरी शिक्षा, मेरे स्वास्थ्य पर काम आएगी, और वो काम में नहीं आती है, तो इस बच्चा उसे चैलेंज कर सकता है कि 3 साल के अंतर्गत बालिग होने के बाद में।
1: हम बात कर रहे हैं क्रेता के द्वारा सावधानियों की और ज़रूरी जानकारी की, लेकिन अगर विक्रेता के द्वारा कोई फ्रॉड किया जाता है कुछ फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर, तो उस केस में कानूनी उपाय क्या हो सकते हैं? विक्रेता के द्वारा जो फ्रॉड किया गया है उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है, और जो खरीदार है जो इस चीज़ से पीड़ित हुआ है उसके लिए क्या उपचार हो सकते
0: हाँ,
1: होंगे?
0: बिल्कुल सही बात है। वैसे तो प्रॉपर्टी लॉ में ये एक्ट प्रोविजन बिल्कुल स्पष्ट है कि क्रेता सावधान, यानी कि जो संपत्ति हम क्रय कर रहे हैं उसके कानूनी पहलों पर हमें देखना है। लेकिन यदि कोई विक्रेता इंस्टेंसली, यानी कि जानबूझकर और कोई ऐसा धोखा करता है, तो जब वो बैनामा लिखा जाता है, नहीं सीलडेड लिखी जाती है, तो उसमें एक लाइन लिखी जाती है कि किसी कारणवश यदि ये संपत्ति आपसे चली जाती है तो जो धनराशि आपने मुझे दी है वो धनराशि लौटाने के लिए मैं लायबल हूँ। एक प्रश्न आपने इसमें बीच में रखा कि यदि कोई फ्रॉड करता है हमारे साथ, मान लिया कोई वो मालिक ही नहीं है, उसके बाद भी विक्रय कर देता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो इस समय पहले CRPC थी, अब जो नया कानून आया उसमें उसके खिलाफ, पहले 420 का मुकदमा होता था, वो अब यहाँ पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उससे हम, सरकार हमें पैसा दिलाएगी, साथ ही साथ उससे जो है सजा का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया है BNS के द्वारा।
1: सामान्यतः जब संपत्ति खरीदी जाती है तो संपत्ति की खरीद में काफ़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और नॉर्मली किसी सामान्य इंसान के पास उतनी पूंजी इकट्ठी नहीं होती है और वो लोन का सहारा लेता है और बैंकों की तरफ रुख करता है। बैंक लोन किस आधार पर उसकी संपत्ति खरीदने के लिए करती है, और एक अधिवक्ता की इसमें क्या भूमिका होती है?
0: बिल्कुल सही बात है आपकी। हम बहुत कम लोगों की जानकारी कि बैंक मकान या भूमि खरीदने के लिए भी लोन देता है। सामान्यतः जारी जानकारी यह है कि अगर मैंने प्लॉट ले लिया तो मकान बनाने के लिए बैंक लोन देगा।
1: जी
0: तो इसके लिए यह है कि आप व्यक्ति, आप बैंक जाइए और बैंक जाकर के मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है। तो बैंक क्या करता है कि कोई भी लोन देने से पहले तीन चीज़ें देखता है, पार्टी, प्रॉपर्टी और पेपर। पेपर की इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी उसके पैनल के अधिवक्ता की है। प्रॉपर्टी कैसी है उसकी जिम्मेदारी उनके वैल्यूअर की है, वो मौके पे जाएगा, देखेगा कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। और पार्टी कैसी है यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है बैंक के प्रति, समाज के प्रति, कि वो धन लौटाने की स्थिति में है या नहीं है जो हम पैसा देंगे। तो
1: जी
0: बैंक जब ये श्योर हो जाता है कि जिस व्यक्ति को हम धन दे रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी भी सही है, पार्टी की नेचर भी सही है और पेपर भी सही है, तब वो लोन देते हैं। अब इसमें अधिवक्ता की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास लेकर आता है एक बैनामा, सेल डीड लेकर आता है कि वकील साहब, पहले वो बैंक जाएगा, बैंक से हमारे पास आएगा, तो फिर हम उससे कहेंगे भाई देखो सबसे पहले तो अगर प्लॉट है तो उसके 30 साल का हमें रिकॉर्ड चाहिए और मकान है तो हमें इसका असेसमेंट चाहिए, पैतृक भूमि आई है तो कैसे आई है, क्या सेटलमेंट से आई है या वसीयत से आई है, अगर वो वसीयत से आई है तो वसीयत क्या कोर्ट से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद और कुछ चीज़ें पेपर निकलते हैं, जैसे NEC निकलवानी पड़ती है या INOC आपने बोला। और एक बात कई बार ये आती है कि जो बैनामा हमारे सामने है मूर्त रूप से,
1: जी
0: क्या ये वास्तव में फ्रॉड तो नहीं है,
1: जी जी
0: तो उसकी जांच करने के लिए क्या है कि हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हैं और सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के बाद हम मिलान करते हैं कि ये वही कॉपी है जो रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है। तो ये कन्फर्म होने के बाद फिर हम करते हैं। एक हमें फिजिकली भी उस बैनामे को देखना चाहिए, कहीं ऐसा होता नहीं कि उसने किसी की जमानत उस पर ले रखी है और उस
1: जी
0: पर न्यायालय की मोहर लगी हुई है।
1: यदि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका दाखिल खारिज नहीं हो रखा है और सिर्फ उसकी रजिस्ट्री ही उपलब्ध है और फिर से कहते हैं उसकी रीसेल होती है, तो ऐसे केस में वो रजिस्ट्री कितनी ऑथेंटिक मानी
0: हाँ,
1: जाएगी?
0: उसमें अभी के प्रोविजन है कि जो पहली रजिस्ट्री में जिसमें गाटा संख्या खुली भी नहीं है, तो गाटा संख्या खुली होती तो दाखिल खारिज हो ही जाता।
1: जी
0: अब उस समय अब बैंक ने नियम बना दिया कि हमें तो गाटा संख्या चाहिए जिससे कि 30 साल की चैन मिल जाए, तो आप इसके पूरक पत्र तैयार करा सकते हैं। जो बैनामे के समय जो पार्टी थी वही पार्टी कहेंगे कि दिनांक इतने के हमने जो बैनामा कराया था उस बैनामे में गाटा संख्या लिखने से रह गई थी, लिहाजा इस बैनामे में इस गाटा संख्या को मेंशन कर दिया जाए। तो फिर उस पूरक पत्र के आधार पर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा और जो व्यक्ति उसे खरीदेगा उसका भी दाखिल खारिज हो जाएगा, इसकी 30 साल की हमें चैन भी मिल जाएगी। यदि इनके समय इसकी डिक्लेरेशन कराना पड़ा धारा 80 के अंतर्गत, तो वो डिक्लेरेशन भी धारा 80 के अंतर्गत हो जाएगा।
1: श्रोताओं, आशा करते हैं कि संपत्ति खरीद के कानूनी जो पहलू पर जो आज चर्चा हुई वो आपके बहुत काम आएगी, और इसी भाव के साथ हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे।
2: संपत्ति खरीद के कानूनी पहलू अभी आपको बता रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा। आपसे भेंट कर रहे थे अवधेश कुमार गौतम। कानून और हम कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें, गीत गाता चल जो हमारा व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, आजकल किसी कारणवश हम व्हाट्सएप पर आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारा अपने श्रोताओं से अनुरोध है कि गीत गाता चल कार्यक्रम के लिए वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है गीत आपके नाम AIR Rampur@gmail.com। श्रोता इस ईमेल आईडी पर गीत सुनने के लिए हमें मेल कर सकते हैं। सुगम संगीत में 7:01 आप सुनेंगे डॉक्टर अंकिता और द्विता अग्निहोत्री की आवाज में गजलें।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपए से लेकर 92.21 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
4: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
1: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
6: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांव को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज सुगम संगीत में कलाकार हैं डॉक्टर अंकिता और द्विता अग्निहोत्री।

अंकिता के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं देविता अग्निहोत्री की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज कलाकार थी डॉक्टर अंकिता और दिविता अग्निहोत्री। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, वैसे तो गीत गाता चल कार्यक्रम आधारित है व्हाट्सएप पर किसी वजह से हम आपके साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमारा श्रोताओं से अनुरोध है कि वो अपने गीत की फरमाइश हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com। और अब आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख, फलक फातिमा और बेबी अलिजबा शेख, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, बॉबी खान, फिल्म सिटी मुंबई से मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन, पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून, कपसिड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा, जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव, कुजागिरी कॉलोनी कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा और मानसी मालोदे, मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, राजद्वारा कोटी अफसराला से रूमा खान, बॉबी खान, मदिया खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, वाडे खामगांव से अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाडे परिवार, दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। आप सभी के लिए ये गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है मजदूर।

आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म मजदूर में। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आंधी फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। उमर खेड़ से फराह खान, आयशा खान और सरोज खान। बाटापारा छत्तीसगढ़ से

सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी और अंकिता जोशी, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, उमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह, गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और ओम कुमार, वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार, गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, छत्तीसगढ़ रायगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, लड्डू और टुक टुक, उमरखेड़ से सिराज खान और शबाना खान, बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली, आसमा वली, जालंधर से अजय देव और संदीप, दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा, अंतरा सिंह, टोंडी लोहारा से शंकर देव और प्रभा, दिल्ली से लाल बाबू, दिव्या भारती, उमाराज, मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद मेहरा, आभा सिंह सांगा, मिथुन सांगा, राधिका, आप सभी के अनुरोध पर ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है आंधी।

कौन थी इस फिल्म में? अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को गीत गाते चल, ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये गीत अनवर और आशा भोसले की आवाजों में। बोल लिखे हैं निदा फाजली ने, संगीत खयाम का है और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ये श्रोता। बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तन्नु करमरकर, चंद्रनगर कॉलोनी से कौशल्य जोशी, प्रमिला जानी, सोनाली जोशी, आशा शर्मा, संबल से छोटे अंसारी और आसमान सारी, बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरुलाल, अविराज सिंह, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंदे जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर, पद्मटा के नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी, मजार चांचामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता रहमीन और आशु भाई, आप सभी के पसंद पर अनवर और आशा भोसले की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

आहिस्ता आहिस्ता इस फिल्म में अभी आपने सुना अनवर और आशा भोसले को। गीत गाता चल इस

मैं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान और पैराडाइज कॉलोनी से शाहिद भाई, आसिफा और परवीन, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा, गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े, नई बस्ती पते खालसा अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, राबिया सिद्दीकी, बिटी अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेश टोम, प्रभा जाटव, देव शंकर देव और आशु, लोहारा छत्तीसगढ़ से राधिका, दीपिका और देव तुषार। ये श्रोता हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव, इंदिरा विहार दिल्ली से बीबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म का नाम है घर।

और अब ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, भीगी पल के फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है। ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। दंत्री की भट्टापरा छत्तीसगढ़ से ही रमणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव खबरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अयाना सिंह। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बीबी गर्वी और हिमाक्ष। राजकोट से प्रेमा रानी, डॉली, सुरेश डोकर। गंजनवाड़ा से मास्टर फरद शेख, चमनपुरी मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी। ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। आप सभी के लिए ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म का नाम है भीगी पलकें।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कर्मनिशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, दंतरी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और बली भाई अंसारी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर, वीरमगांव राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, सहारनपुर से एसके दुकार, सरगुजा से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छत्तीसगढ़ से मिश्री देवी साहू, मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटव, आप सभी के अनुरोध पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

हमारे कुछ और श्रोता भी हमसे जुड़े हैं। जेल रोड जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर और खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर।

ये श्रोता हैं स्टेशन रोड जल जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पू भाटिया और सोनू भाटिया।

मोहम्मद रफी के गए। आप तो ऐसे न थे फिल्म के इसी गीत के साथ। आज का गीत गाता चल कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाथा चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 हुआ चाहते हैं, कुछ ही देर में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन

0: 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतरबैंकीय विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3

0: दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए. वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे. और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे. हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है. और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है. नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड.
1: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
4: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
3: This is Suparna Bhatia from Rome.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business Reform Summit in New Delhi. Mr. Goyal said the present global situation and geopolitical uncertainties should be viewed as an opportunity for India to strengthen supply chains.
5: That we will convert the current situation and the risks associated with the geopolitics around the world into an opportunity for faster reform, into preparing ourselves for greater resilience, make our supply chains stronger, and use every bit of opportunity that the world provides, that India is offering to the world. For example, the 38 countries which are now one after the other coming within the framework of free trade agreements.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Mr. Shah was addressing the media in Jagdalpur. He said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development.
6: बस्तर के सभी नागरिकों को
7: आई वॉन्ट टू अश्योर ऑल द सिटीजन्स ऑफ बस्तर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी नीड टू लिव इन फियर. अ न्यू डॉन हैज अराइव्ड हियर. इवन दो इट हैज टेकन सो मेनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज नाउ बीइंग पेव्ड. द ट्राइबल यूथ एंड वुमेन हियर शुड नाउ मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आर विद यू.
6: भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है.
1: Earlier, the Union Home Minister chaired the 26th meeting of the Central Zonal Council in Jagdalpur. Chief Ministers of Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand, along with senior police and administrative officials, attended the meeting. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on the 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across states to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju has said that India remains one of the safest and most inclusive homes for minorities. Mr. Rijiju stated this while addressing the Conference of State Minorities Commissions organized in New Delhi today. Mr. Rijiju said, when we look at neighboring countries in the Indian subcontinent, we often see minority communities facing existential challenges and seeking refuge in India. He said, from Afghanistan to Sri Lanka, minorities from across the region have looked towards India as a place of shelter, security and dignity. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the new News on Air app. Welcome back. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suomoto case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. Trinamool Congress candidate from West Bengal's Falta Assembly constituency, Jahangir Khan, announced the withdrawal of his nomination ahead of by-election on the seat on Thursday. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. This will be Putin's second visit to India in less than a year. Defense Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defense Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart, Ong Yu Baek. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has reiterated India's steadfast commitment to equitable, inclusive and people-centric health care under the guiding principle of health for all. Addressing the plenary session of the 79th World Health Assembly in Geneva, Mr. Nadda said, India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. The India Meteorological Department has warned of severe heatwave conditions in northern India. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heatwave to severe heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. Meanwhile, the weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahe and Lakshadweep till the 21st of this month. In cricket, the Indian men's squads for upcoming one-off test and three-match ODI series against Afghanistan were announced today. Shubman Gill will continue to lead India in both formats. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the test team, replacing Rishabh Pant, who has also been dropped from the ODI squad. Shreyas Iyer returns to the ODI side as vice-captain. Spinner Manav Suthar and pacer Gurnoor Brar have received maiden test call-ups, while Prince Yadav has been included in the ODI squad for the first time. Pace spearhead Jasprit Bumrah and senior all-rounder Ravindra Jadeja have been rested for the series. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
8: जनरल मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
8: जनरल मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनरल मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
8: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी जरूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखुसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीरे आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वज़ीरे आज़म के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
9: वज़ीरे आज़म 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि यह दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली कलीदी शराकतदारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनअती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकतदारियों का ऐलान किया जाएगा क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तिसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
8: वजीर दाखिला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा 5 बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
10: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
8: इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर अहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے.

0: गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानो सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, जबकि प्रिंस यादव को पहली मर्तबा ओडीआई टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच 6 जून से मुलानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून से धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में ओडीआई मैच खेले जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 221 रन का निशाना रखा है। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जनूबी खत्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई भी की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका।

0: साहित्यिक पत्रिका के सभी सुधी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज साहित्यिक पत्रिका के पहले पृष्ठ पर आपके लिए है एक भेंट वार्ता, मैं और मेरी कलम। कविता अरोड़ा के साथ भेंट करता है असीम सक्सेना।
1: कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, तरंगों ने छुआ आकाश और आकाश से जो तरंगें निकली वो आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं के घर तक पहुंची। ये सफर धीरे धीरे 90 साल पूरे कर रहा है। वो 90 साल जो गरिमा से भरे रहे, वो 90 साल जो गौरवशाली हैं, वो 90 साल जो बहुत इतिहास अपने भीतर समेटे हैं, जिनमें प्रेरणा है, जिनमें उद्देश्य है, जिसमें समर्पण है और जिनमें संरक्षित करने की क्षमता भी है। आकाशवाणी इन 90 वर्षों में अपने श्रोताओं के साथ लगातार आगे बढ़ता रहा, साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति को सहेजते हुए। आकाशवाणी के साथ हमारे साहित्यकार जुड़े और पूरे मन से जुड़े, उनकी प्रतिभा को हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया, उनकी संवेदनशीलता श्रोताओं तक पहुंची, उनकी भावनाएं श्रोताओं तक पहुंची और उन्होंने से एक नाम आज हमारे साथ है। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आकाशवाणी रामपुर के लिए समय निकाला है। हम उनसे सीधे सीधे आपको मिलवाते हैं और उन्हीं से उनका परिचय आपसे करवाते हैं। स्वागत है आपका कविता जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिचय एक छोटा सा है कि मैं कविता हूँ, कविताएं करती हूँ। उस्ताद रशीद खान साहब, जो कि संगीत की दुनिया में एक बेहतरीन नाम है, पद्म विभूषण, उनकी एकेडमी में एज ए डीन मैं काम करती हूँ। और अभी तक जो है कि साहित्यिक यात्रा मेरी शुरू हुई है, पर कहीं ना कहीं

0: उसमें आकाशवाणी का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है।
1: कैसे जुड़ाव हुआ आकाशवाणी से? क्योंकि आप जैसे जो साहित्यकार जब किसी संस्था से जुड़ते हैं तो उस संस्था के लिए भी बड़ी गरिमा की बात होती है।
0: मेरा बचपन जो है रेडियो और ट्रांजिस्टर से जुड़ा रहा है। एक ऐसा दौर था, एक ऐसा जुनून था कि पिताजी तो बड़ा रेडियो बजाते थे और हम छोटा सा ट्रांजिस्टर लेके और छत की बन्नी पर वो गाने सुना करते थे। वो दौर जो था, छतों वाला दौर था, उस समय ज़्यादा ये टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, दूरदर्शन उस समय लॉन्च ही हुआ था और टीवी एक आध घरों में हुआ करते थे और हम जो वो बन्नी पे ट्रांजिस्टर रख के सुना करते थे तो जो शामें हुआ करती थी वो बहुत खूबसूरत हो जाया करती थी।
1: कविता जी, किसी साहित्यकार ने कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और आपकी कल्पनाएं आपको एक लंबी यात्रा की ओर ले जाती हैं, आपकी संवेदनशीलता को वो प्रभावित करती हैं, वो भावनाएं आपकी लोगों तक पहुंचती हैं। तो उस दौर की कोई कविता जो आपने उन भावनाओं को समेटते हुए लिखी हो, हम जरूर चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
0: मैंने आपसे कहा कि ये एक खूबसूरत दौर है कि कविताएं जो हैं बचपन से आपके साथ चलती हैं और मैं समझती हूँ कि मेरी कलम आज भी आकाशवाणी को ही रचती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम छत पे चांद देखते थे तो एक छोटी सी लाइन आती है मुझे कि मैं थी छत थी इमली थी, इमली पे अटका चांद सलोना। उसी में पंक्तियां आती हैं कि छत की बन्नी पर ट्रांजिस्टर, नगमा को ही पुराना
1: क्या
0: था।
1: बात है, क्या
0: तो
1: बात
0: ये कल्पनाएं जो है कहीं ना कहीं चांद से रिलेटेड है और चांद को लेके मैं एक रचना आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। जैसे अब दौर बदल चुका है तो गांव की कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लोग शहर चले जाते हैं, तो मेरे साथ यह रहा है कि मैंने चांद से भी खूब बातें की हैं और मैंने आकाशवाणी के गीत सुनते हुए चांद से बातें की हैं कि तुम मेरे गांव हो आना, वहां तुम्हें मेरा बचपन मिलेगा। तुम मेरे गांव हो आना, वहां तुम्हें मेरा बचपन मिलेगा, खेतों के हरेपन में मुरझाया मन खिलेगा। कि तुम मेरे गांव हो आना, वहां तुम्हें मेरा बचपन मिलेगा। तुम मेरे गांव हो आना, वहां तुम्हें मेरा बचपन मिलेगा, खेतों के हरेपन में मुरझाया मन खिलेगा। मेरे गांव से लगकर एक दरिया बहता था, छत से लगती इमली के पीछे एक चांद रहता था। मेरे गांव से लगकर एक दरिया बहता था, छत से लगती इमली के पीछे एक चांद रहता था। हवाएं चटकारे लेती इमलियों के तो वो मुंह बनाता था, हवाएं चटकारे लेती इमलियों के तो वो मुंह बनाता था। हवाओं के खिसकने तक पत्तियों में सरक जाता था, जब कभी बारिशों में भीगता तो बादलों के कंधों पर छींकता। उससे जरा गहरी छनती थी, उन दिनों चांद से मेरी खूब बनती थी। उस रोज छत पर गई थी लगाकर गले उसे छोड़ आने को, बक्सा बांध लिया था मैंने गांव से शहर जाने को। जिक्र छेड़ा ही था कि चांद थर थर आया, झट से इमली की ओट से बाहर निकल आया। सुनकर दिल उसका हो गया थोड़ा, उस रोज चांद ने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। जिद में वो मेरे साथ शहर चला आया, शहर में चांद अश अश था, शहर देख के बहुत खुश था। दिनों तलक वो सोचता रहा मैं आऊंगी छत पर तो छुपकर मुझे परेशान करेगा, छेड़ेगा सतरंगी शहर के किस्से। यूं ही कई बातें बचा रखी थी उसने मेरे हिस्से, मगर वो मासूम है, जानता नहीं यहाँ चांद से बतियाने की फुर्सत नहीं होती, शहर के माचिस नुमा घरों में छत ही नहीं होती।
1: क्या बात है, शहर के माचिस नुमा घरों में छत ही नहीं होती। कविता जी ने कितनी खूबसूरती के साथ इन भावनाओं को समेटा है और इस तरह से समेटा है कि श्रोता तक आसानी के साथ, कुछ कठिन लफ्ज नहीं है, सीधे सीधे भावनाओं का जुड़ाव है। तो कविता जी को कविता से मिलना कैसा लगता है?
0: कविताएं लिखना भी एक कहीं ना कहीं अपने आप को सांस लेने जैसा ही है। कविताएं ऐसा नहीं है कि मैंने अलंकार छंद साहित्य के अलावा जो जीवन की वास्तविकता है, आसपास का माहौल है, जो आसपास में घटित हो रहा है, वो कविताओं में मेरे ज़्यादा आया है। तो मेरे लिए कविताएं करना जीना जीने जैसा ही है।
1: कविता के कुछ विषय कवि के हृदय के बहुत करीब होते हैं, तो कविता जी के आसपास कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर मुखर हो उठती है उनकी कलम?
0: मैं वैसे तो समाज की

0: भी संवेदनात्मक चीजें हैं, जैसे बहुत सारा कहीं कोई घटनाएं ऐसी होती है जो मन को छू जाती हैं, आक्रोशित
1: जी जी
0: उसमें
1: जी
0: भी स्वर निकले हैं। और लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता है वो है प्रकृति, उसके नजदीक मैं बहुत ज्यादा हूँ। लेकिन आक्रोश और जो जीवन की समस्याएं हैं वहां पर भी कलम चलती
1: आप बधाइयों से ताल्लुक रखती हैं, जन्म
0: जी
1: आपका
0: जी
1: बधाइयों हुआ, उसके
0: जी
1: बाद फिर सफर जिंदगी का चलता रहा। तो जो पहली कविता रही, वो पहला श्रोता कौन था, कैसा रेस्पॉन्स मिला आपको, कुछ यादें हैं?
0: जी बिल्कुल यादें हैं। और जैसे कि हम लोग कई बार कविताएं लिखते थे और एक दौर में जीते थे, तो जब कॉलेज में भी पढ़ते थे तो बहुत सारा रचनात्मक कार्य होता था, वहाँ पे भी कई कविताएं पढ़ी जाती थी। तो बचपन की रचनाएं हैं कि पिताजी हमारे उस समय जो भावुक करने वाले जो कुंवर बेचैन जी उस
1: जी
0: समय राइटिंग करते थे, तो उन्हीं के गीत से हमने अपने जीवन की शुरुआत की। बदरी बाबुल की अंगना जइयो जइयो बरसियो, तो बाबुल छोड़ा जो अंगना तेरा मन तड़पा रोया मेरा
1: क्या
0: काहे
1: बात है,
0: विदेश ब्याई। तो ये इस तरह की रचनाओं से जब शुरुआत हुई तो मैंने देखा जब मंच पे ये रचनाएं पढ़ती थी तो हर तरफ आंखों में आंसू होते थे और लोग कहते थे कि ये रचना बार बार पढ़ी जाए। तो मैं समझती हूँ वो मंच पे अभी भी सुनी जाती है पहली रचना।
1: और बड़ा संतोष मिलता है और बड़ा अपनापन सा महसूस होता है लोगों के साथ इस तरह से जुड़कर। आजकल की जो स्थिति है कविता जी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मंच अलग हो गया है और साहित्य, जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, उसकी अगर बात करें तो इन दोनों कविताओं में कुछ फर्क आपको लगता है?
0: जी बहुत फर्क है, क्योंकि जब मंच पे ऐसा नहीं है कि मैंने मंच किए हैं, मैंने मंच किए हैं और मंच पे मैं कुमार विश्वास जी के साथ भी पढ़ा है, संतोष आनंद जी के साथ
1: जी
0: भी पढ़ा है, राहत इंदौरी साहब के साथ भी पढ़ा है। तो वो मंच बड़ा अच्छा खूबसूरत होता है, आपका जरिया होता है कि आप एक साथ ऑडियंस से जुड़ जाते हैं। लेकिन मंच पे थोड़ा सा इस समय जो है साहित्य नहीं उतना बचा है ना चाहूंगी, लेकिन किताबें जो हैं कहीं ना कहीं आपको मानसिक सुकून देती है। आप साहित्य रचते हो तो आप बहुत कुछ पढ़ते हो।
1: तो इन 90 वर्षों में आकाशवाणी और साहित्य का जुड़ाव आपने किस नजरिए से देखा?
0: कि ये जो आकाशवाणी है कि इसने मेरे बचपन में वो रंग भरे जिससे मैंने हाथ में कलम थामी, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उसी आकाशवाणी पे, कभी सपने में नहीं सोचा था कि जब आप छतों पे ये रेडियो सुनते कभी जाके और उस मंच पे अपनी बात कहेंगे, तो ये एक सुखद आश्चर्य है। लेकिन ये जो साहित्य रच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर के जो कार्यक्रम हैं जो अब लोग भूल रहे हैं, आज मैं आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आई हूँ तो खत देखे मैंने, तो मैं बहुत
1: जी
0: आश्चर्यचकित हुई। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं ये खत कोई लिखता भी होगा, लेकिन आज जो खतों का अंबार यहाँ लगा था उसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। ये परंपरागत जो सहेजने की जो परंपराएं हैं, सहेजने की प्रक्रिया आकाशवाणी दूरदर्शन जो कर रहा है, ये बहुत अनमोल है। बहुत सारे साहित्यिक चर्चाएं होती है, बहुत सारे साहित्यकारों पे हम काम करते हैं, ये सब जो संरक्षण है मैं समझती हूँ आकाशवाणी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं करता।
1: कविता जी, लेकिन चलते चलते आकाशवाणी, इससे जुड़े प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार और आकाशवाणी के श्रोता, इनके बीच जो समन्वय है, इस समन्वय के बारे में आपके विचारों का स्वागत
0: देखिए
1: है।
0: बहुत सारी साहित्यिक यात्राएं लोग करते हैं और जिसमें बड़े बड़े लेखक हुए हैं जिसको आप आए दिन जिस तरीके से चर्चाएं रखते हैं, काव्य गोष्ठियां रखते हैं, कहीं ना कहीं साहित्य प्रेरित होता है। और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जो नाम हैं मुंशी प्रेमचंद जी से लेकर हम बहुत सारा साहित्य रचते हैं, तो ये एक पुल है जो एक जरिया है जो जनरली लोगों तक, जो आम लोगों तक जो कि रिक्शा चलाने वाले से लेकर उसको जो पढ़ता नहीं है उसको भी साहित्य सुनाता है। तो मैं समझती हूँ इससे खूबसूरत कोई बात नहीं है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं आप सुन रहे हैं साहित्य तो कहीं ना कहीं आप रिच हो रहे हैं।
1: कविता जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, अपना वक्त दिया। आपसे कविता के संबंध में, साहित्य के संबंध में, आकाशवाणी के 90 सालों के संबंध में बहुत सारी बातें हुई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं और मेरी कलम, अभी आपने कविता अरोरा के साथ की गई ये भेंटवार्ता सुनी। भेंटकर्ता थे असीम सक्सेना। और अब आइए सुनते हैं मेघाव्रत शास्त्री से उनकी काव्य रचनाएं।
3: कुछ पंक्ति

राग हैं, हम चमन उनको करेंगे। आज पावन इस धरा पर निर्दोष मारे जा रहे, आज पावन इस धरा पर निर्दोष मारे जा रहे।

करेंगे, एकजुट होकर सभी को आज बढ़ना चाहिए, एकजुट होकर सभी को आज बढ़ना चाहिए।

छटा का सार तुमने पा लिया है, चांद सूरज की छटा का सार तुमने पा लिया है। आंख है चंचल तुम्हारी जो सभी को खींचती है, आंख है चंचल तुम्हारी जो सभी को खींचती है। ऐसे गीत लिखूं मैं मोहन बांसुरिया जिनको गाए, ऐसे गीत लिखूं मैं मोहन बांसुरिया जिनको गाए। दर्द

हो दुखियों की, आंसू बाले नैनों की, फिर प्यास बुझेगी सदियों की, आंसू बाले नैनों की, फिर प्यास बुझेगी सदियों की, प्यास बुझेगी सदियों की।

बच जाए, छा जाए गीता का ज्ञान। लाज द्रौपदी की बच जाए, छा जाए गीता का ज्ञान। मंत्र मुग्ध जन जन हो जाए, ऐसा जादू कर जाए। मंत्र मुग्ध जन जन हो जाए, ऐसा जादू कर जाए। ऐसे गीत लिखूं मैं मोहन, बांसुरिया जिनको गाए। ऐसे गीत लिखूं मैं मोहन, बांसुरिया जिनको गाए। कंस अनेक रहे भारत में, दुर्योधन की कमी नहीं। कंस अनेक रहे भारत में, दुर्योधन की कमी नहीं। स्वार्थ बेलियां फूल रही हैं, बेल प्यार की जमी नहीं। स्वार्थ बेलियां फूल रही हैं, बेल प्यार की जमी नहीं। ज्ञान ज्योति की जगमग छाए, संकट सारे टर जाएं। ज्ञान ज्योति की जगमग छाए, संकट सारे टर जाएं। ऐसे गीत लिखूं मैं मोहन।

इस महान विश्वसुत सस्य श्यामला धरती है, भारत देश महान विश्वसुत सस्य श्यामला।

अर्जुन भीम पुनः जन्मे अबो, अर्जुन भीम पुनः जन्मे अबो, कूच दुशासन कर जाए। ऐसे गीत लिखूं मैं मोहन, बांसुरियां जिनको गाए। ऐसे गीत लिखूं मैं मोहन, बांसुरियां जिनको गाए। भारत देश महान विश्वसुत, सस श्यामला धरती है। भारत देश महान विश्वसुत, सस श्यामला धरती है। गंगा यमुना की धारा

0: मेघावृत शास्त्री से अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ। और अब साहित्यिक पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर अंकित है ये कहानी कैनवास। कहानीकार हैं अंजलि वर्मा।
1: उफ, फिर वही कैनवास, वही दीवार, वही स्थान। वर्षों हो गए, कुछ भी तो नहीं बदला। फर्क पड़ा तो बस कैनवास पर पड़ी धूल और मुझ में, बाकी सब सामान्य ही तो है। ऐसा लगता है कैनवास का जो चटकीला रंग है ना, वो अपने ऊपर धूल का प्रभाव रखना ही नहीं चाहता। मानो या ना मानो, ऐसा लगता है कि किसी कलाकार ने अपने जीवन के प्रथम काल को चटकीले रंगों से भरकर स्वयं को जीवित रखने का अनवरत प्रयास किया हो, और करे भी क्यों ना, उसे अपने अधिकार जो पाने हैं। मैं कोई साधारण कैनवास नहीं हूं। मैं दूसरे कैनवासों से बिल्कुल अलग हूं। ये कहना कितना आसान है, मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। उतना ही कठिन है हृदय की वेदना को स्वयं में समाहित कर लेना, लोगों का अपने सामने से मुंह मोड़ लेना। वक्त ने तो तुम्हें भी नहीं बख्शा, अब तुम अनजान हो, कुरूप भी। अरे, कैनवास पर पड़े फीके रंगों में वो चटकीलापन कहाँ चला गया? माँ, ओ माँ, कैनवास के पीछे रहने वाली छिपकलियां अब दिखाई ही नहीं देती, एकदम गायब हो गई। बचपन में वो मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय बनी हुई थी। एक गोरी बहुत सुंदर, दूसरी चितकबरी गंदी सी, ठीक मेरी तरह। क्या इसीलिए इनसे बचपन से ही मुझे लगाव था? आखिर

जब देखो कैनवास के पास खड़ी हो जाती हूँ, ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। तुम्हारी ये भावनाओं का समुंदर में खोने की आदत आखिर कब जाएगी? याद रखना, हमेशा प्रकृति जब तुमसे कुछ छीन लेती है तो दूसरी तरफ वो तुम्हें अपूर्व शक्ति भी बढ़ा देती है। तुम मेरी नज़र से देखो तो तुम आज भी वही सुंदर सी अपेक्षा हो। जिसका मन सुंदर होता है ना, उसकी सुंदरता में कभी कमी नहीं पड़ती, माँ ने उसे पुकारते हुए कहा। अपेक्षा कातर स्वर में बोली, माँ कहना कितना आसान है, पर माँ जो सहता है वही समझता है। तुमने तो कितनी सरलता से कह दिया, लेकिन मेरे मन की पीड़ा को कौन समझ पाया है? सब समझेंगे बेटा, सब समझेंगे। तुम अपने हृदय के कैनवास पर सुंदर चटकीले रंग भरो, अपने मन को सुंदर बनाओ। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, वे फीके रंग चटकीले रंगों से दब जाएंगे। माँ, क्या रंगों का खेल वास्तव में इतना सरल है कि पुराने रंगों को नए रंगों से दबा दिया जाए? क्या मेरे दिल में उठता ज्वारभाटा इतनी आसानी से शांत हो जाएगा? क्या सचमुच में हृदय का कैनवास बदलेगा? अर्पिता ने उल्लसित होकर कहा, मुझे आज भी याद है वो दिन माँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरा तेज ज्वर से कांपना, छोटे छोटे दानों का भी निकल आना। तुम भी तो माँ कितना घबरा गई थी। तुम बोली, ये तो माता निकल आई है, ना जाने किसकी खोटी नजर मेरी फूल सी बेटी को लग गई। कौन कौन से उपाय नहीं किए थे माँ तुमने मेरे चेहरे पर पड़े दागों को छुपाने के लिए? अरे माँ जरा देखो तो दरवाजे पर, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। अरे सुमी, बहुत दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ, कैसी हो? बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। अपेक्षा बेटा देखो तो कौन आया है। सुमी, तुम्हारी सहेली। अपेक्षा हर्षित होकर बोली, अरे वाह सुमी, कैसी हो? आज अपेक्षा की याद कैसे आ गई? नीले कपड़ों में तो तुम बिल्कुल परी लग रही हो, परी। सुमी ने अपेक्षा को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी याद तो आ ही रही थी, साथ ही तुमसे कुछ हेल्प भी चाहिए थी। तुम मेरी मदद करोगी ना? अपनी दोस्त से तो कुछ भी मदद मांगी जा सकती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? सुमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुमी, मैं कुरूप किस दिन किसके लिए काम आ सकती हूँ। ऐसा क्यों कहती हो अपेक्षा, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे हृदय में सातों रंगों का भंडार है। अपेक्षा ने हंसते हुए कहा, अब ज्यादा मस्का मत मार, ये भी खूब रही, तुमने तो मेरे हृदय को इंद्रधनुष बना दिया। अब जरा ये तो बता, कैसी है, क्या बात है, क्यों आई है? अपेक्षा, तुम्हें वो स्कूल टाइम की सुनैना याद है ना, जिसकी बड़ी सुंदर सुंदर सी आंखें थी? अरे वही जो कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। हाँ हाँ, याद आया याद आया, वही ना घमंडी लड़की, जिससे हम लोग कोई भी मदद मांगते थे तो वो कितनी चालाकी से टाल देती थी। कुछ भी हो, वो थी बहुत श्याणी। अपेक्षा, छोड़ो इन बातों को, फिलहाल वो बहुत तकलीफ में है और आज उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? अपेक्षा ने पूछा। गांव गई थी, पता नहीं किस जगह का गंदा पानी पी लिया, ना जाने क्या खाया, उसे पीलिया हो गया। डॉक्टर कहते हैं पीलिया की थर्ड स्टेज है, ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, वो भी 2 यूनिट। उसे किसी भी हाल में ठीक करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, सो मैं तुम्हारे पास चली आई। तो इसमें इतने घबराने की क्या बात है, तू रही बिल्कुल जल्दी की जल्दी। अरे मैं हूं ना ओ नेगेटिव, किस दिन काम आऊंगी? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, ओ माँ, कैनवास पर नए रंग भरने का समय आ गया है। माँ अब ये रंग तो मैं जरूर ही भरूंगी। सुमी, तू मुझे बस ये बता कहाँ चलना है और कब चलना है। अब तू सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। चंदनगढ़ जाने के लिए इस समय तो बस एक ही बस है, कहीं वो भी छूट ना जाए। इस समय चंदनगढ़ जाने वाली ये आखिरी बस है, वरना फिर सुबह तक इंतजार ही करना पड़ेगा। तब तो जल्दी करो सुमी, देर ना हो जाए। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। ये लो अपेक्षा, आ गया चंदनगढ़, यही स्वास्थ्य केंद्र में सुनैना भर्ती है। चलो सुमी, जल्दी करो, देर ना हो जाए। अपेक्षा फुर्ती दिखाते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए,

0: पर सुनैना को कुछ नहीं होना चाहिए। हल्के हल्के सुनैना को होश आने लगता है। सुमी सुमी, तुमने तो मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना कोई अपना भी नहीं करेगा। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। सुमी सुनते ही मुस्कुरा दी, बोली, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिसने किया है वो तुम्हारे पास लेटी है। अगर आज ये नहीं होती तो बस भगवान ही मालिक था। अरे, ये तो अपेक्षा ही है ना, जिसके लिए मैं कभी कोई किसी भी काम नहीं आई, हर पल उसे घृणा की दृष्टि से ही देखा। ईश्वर का विधान तो देखो, जिसे मैं घृणा करती थी उसी ने मुझे जीवन दान दिया। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं इससे नजर मिला पाऊं। इसके हृदय का कैनवास कितना विशाल और चटकीला है, काश मैं इसके जैसी बन पाती।
1: अभी आपने अंजलि वर्मा की कहानी कैनवास सुनी। आज का साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका, ये आकाशवाणी रामपुर है। 10 बजे हैं, कुछ ही देर में अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़ करके खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं
2: जी,
1: लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
2: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेन तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का यह खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गाँव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गाँव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नौगढ़ वर्णतांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिया में, जैसे मूसाखाण बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लका लाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरा लाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश वैष्णवी जैवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरुजी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो

0: तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहाँ पर अच्छा किया।
1: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कोई कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है। एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी है उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में।
0: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौरुष अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नवगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहाँ हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्स्ट लाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन के इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं। कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा, जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़। आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं एक दो साल ट्रेनिंग के बाद, या प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है, इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था राम सिंह, ये चोरापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरई गांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमार भी चिरई गांव का ही है, ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्हें नेशनल में फर्स्ट किया। और अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ, चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में गांव है डबरिया, उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं मैं करूं। और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं ये करो। जैसे

0: की आरती है, ये बगल पचराव गांव की रहने वाली है और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र यही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव हरहुआ ब्लॉक की है और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये छठवां स्थान प्राप्त किया। जो गांव की रहने वाली थी जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी। बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारे जगह मेडल और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का, उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी,
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है, लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का खास करके खेलों में वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे गाँव जाते दोनों बल्ले हमारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है, पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती, अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर के अपेक्षाकृत गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे इसको लीजिए, पोल वॉल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी कितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करे, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर। और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, निकल करके आए और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी में लिस्ट रहे हैं, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA MPA डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले अरे वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि वैसे पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया है।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी, ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
3: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
4: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनके बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं, वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा, तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
3: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कहते हैं एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
4: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है, और एक पिता सोचता है, समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घुड़सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से थपकी देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चों से पहले समझ जाए, ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनिंग में।
3: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
4: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉल्ट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
3: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, क्योंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों जय हिंद। सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
5: मैं अंकिता गवर्नर।
6: मैं अदिति राय गाजीपुर से।
7: मैं आरती सोनमत से।
8: मैं सेजल सिवापुरी से।
9: मैं मीनाक्षी टिकरी से।
10: मैं शिवानी यादव जो की जनपुर की रहने वाली।
11: मैं आर्य सिंह बाबतपुर से।
12: मेरी चायद बाबतपुर की।
13: मैं खुशी पटेल आयर से।
14: प्रशिष्टि मैं उन्नाव से।
15: गुंजन यादव जौनपुर से।
16: पलक यादव चंदौली।
17: अपूर्वा गुंजा फिरोज आवाज।
3: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
18: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का,
19: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहते तो पढ़ लेते, फिर उसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते हैं वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
20: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
3: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
9: 10 बजे तक।
3: तो बच्चों मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
9: मेरा नाम खुशी पटेल है, मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए। फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, एक साल दो साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है। फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बीएचयू का, फिर यहाँ पे आ गए, हॉस्टल में हो गया, दो साल से हॉस्टल में रहते हैं।
3: तो खुशी आप क्या खेलती हैं?
9: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
3: अच्छा, प्रशिष्टी आप क्या खेलती हैं?
11: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
3: आप कब से खेल रही हैं?
11: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ और सर के अंडर हमने बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं, हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं।
3: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए। इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
4: मुश्किल से नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन में बदल गया है, तो जितनी ज्यादा हम ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है, ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
3: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
4: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम, अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए, और उनका उपचार होता है।
3: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
4: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
3: खेल के दौरान।
4: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट्स कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है। जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना है, अगर सामान चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
3: अच्छा, श्रद्धा बातचीत के सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
4: थैंक यू मैडम।
3: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
4: मैडम, मैं बता दें कि एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल के बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
3: जी,
4: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
3: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
4: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो इस बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है, ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
3: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
4: जी हाँ बच्चे, मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है, नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास, 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं,
16: तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
17: बहुत बहुत धन्यवाद।
16: थैंक यू सो मच।
17: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
4: मैम, पोषण बहुत जरूरी है और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशियन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है। क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मीनू तैयार वही इनको दिया जाता है। उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मीनू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे, अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज़्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं। खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी। तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
17: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके, हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
4: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जंपर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
17: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
4: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
17: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं, एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जंपर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है?
4: मैम बहुत अच्छा है आगे। क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
17: एक अकेला ही काफी
4: है, और शुरुआत हो गई है। अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे। अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है और हर एक गांव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है। मैम अभी ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
17: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DHU कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से, साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
4: हाँ मैम बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आदि शक्ति है तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं और देश का प्रतिनिधित्व हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
17: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार।

सती सावित्री। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में। ये गीत सुनना चाहा था आप सभी ने। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज, रिजवान रही इमरान राजा आलम शेख शबाना आलम चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर मोहम्मद वकील रहे फिरोज आलम और नाज परवीन, अफजलपुर पट्टी तहसील सिदर सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम दिलीप सिंह विशाल चमनलाल रूमा मंजू प्रियंका शीतल पूजा बविता और अंश गौतम, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तेराह के पास से अख्तर हुसैन बहारू निशासलम हुसैन महमूद हसन बीवीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, बरोड़ो जौलका से महेंद्र सरकरे विजया सरकरे और मिलिंद सरकरे, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, अलीका डबवाली से बसंत सिंह छन राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी। गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में काला बाजार फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पुफाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर दिशांत कुमार वंदना धुले अर्पिता दम मित्र और समस्त सिंगड़कर परिवार, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम आयशा खान हदिया खान आसमा सालिया शोएब खान साइमा खान पोत्रा मुश्तबा खान पोत्री आफिया खान रऊफ भाई और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा और निवान शर्मा, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदारानी और हिना कौसर, बेड़ी से हुकुम करमरकर सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर, जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब बाड़ूदे मीनाक्षी चरपे रजनी कनीरे और कार्तिक साथ है युवराज, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद बजाज बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है काला बाजार।

काला बाजार, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मधुमती फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सभ्यसेरे। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी। मीरासराय बदायूं से अफरीन खान और जमीर खान। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। भाटापारा दंतरेगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर और अर्जुन। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। पुलिस चौकी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, देविका चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मधुमती।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गीतांजलि। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के

0: जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said, investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The apex court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July.